होए तिसका पूजन नानका विरला पाए कोई महला तीजा। अभ्यागत ए नाथियन जे पर कर पूजन करे उदरे कारण अपने बहले पेख करेन। अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन पाल लहन सो अपना निज कर रहन करेन। पौड़ी अंबर तरत विछोड़ियन विच सच्चा आसराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ। सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तखत सच्चा।

सच्चा सब समाए पौड़ी। आप अलिपत पदार हैं होर तंदै सब तावे, आप नेचल अचल है होर आवे जावे, सदा सदा हर त्याय गुरमुख सुख पावे, निज करवासा पाये सच समावे, सच्चा गैर गंभीर है गुर सब।

न कोए, सचो सच वखाने कोए, नानक अगे कुछ न होए पौड़ी। हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेहरी गुरमुख हर नाम पढ़। हर का मंदर शरीर अत सोना हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़। सबना साहिब एक है पूरे पाग पाया जाई, श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंप फिरे, ना सत मूंद मुंडाई केसी, ना सत पड़िया देश फिरे, ना सत

मिले वडाई, जिस कट पीतर शब्द रवे सब कट मेरे हो सबना अंदर, जिसे खुआई तिस कौन कहे, जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे पुलावे कौन, जिसे पुलाई पंग सिर तिसे दिखावे कौन। मेला पहला सो गिर ही जो निग्रह करे, जब तब संजम पीछा करे, पुण दान का करे शरीर, सो गिर ही गंगा का नीर, बोले ईश्वर सत स्वरूप, परम संत में रेखना रूप। मेला पहला सो अवधूती जो तू कह आप, पिख्या भोजन करे संताप, औहठ पट्टन में पीख्या करे, सो अवधूती शिवपुर चढ़े, बोले गोरख सत स्वरूप, परम संत में रेखना रूप। मेला पहला सो उदासी जे पाले उदास,

पछाता, बाहर मूल न खोजिए कर्माए विदाता, मन मुख हर मंदिर की साहब न जाननी, तिन्नी जन्म गवाता, सब में एक वरदा।

0: होशी आयतई आवन जान नस जई पीड़ी गली फई कूड़ निकुटे नानका ओढ़ सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है हर रव रहा सब आपे हर की कीमत ना पवे किस कह न जापे गुर प्रसादी सलाही है हर पगती रापे सब मन तन हरिया होया अंकार गवापे सब किच हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई।
1: श्लोक महला पहला। सहन सरदान दे इंद्र रो आया पर श्राम रोवे कर आया अजय सो रोवे पीछा खाए ऐसी दरगह मिले सजाए।

पूजा जप तप सब किछ मन्ने अवर कारा सब बाद नानक मन्या मन्निए बुझिया गुर प्रसाद पौड़ी काया हंस तुर मेल करते लिख पाया तब मैं गुप्त वर्त दा गुरमुख प्रगटाया गुण गावे गुण उच्चरे गुण माए समाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया सब किछ आपे आप है।

पौड़ी। नौ दरवाजे काया कोट है, दसवें गुप्त रखी जय। बजर कपाट ना खुलने, गुरु शब्द खुली जय। अनहद वाजे तुन वज दे, गुरु शब्द सुनी जय। तित कट अंतर चानना, कर भगत मिली जय। सब में एक वर्तदा, जिन आपे रचन रचाई। श्लोक महला दूजा, अंधे कह राह दसे, अंधा होए सुजाए।

कमर कटारा बंकुड़ा बंके का सवार, गर्भ न की जय नानका मत सिर आवे पार पौड़ी। सोत सत्संगत शब्द मिले जो गुरमुख चल, सच पिराइन से सच्चे जिन हर खर्च तन पल्ले। भगत सोन गुण गाउं दे गुरमत अचले, रतन विचार मन वस्या गुर कै शब्द पल्ले। आपे मेल मिले।

अवगुण वंजन गुण रवे हैं, मन सुख वसे आए पौड़ी, आपे आप वर्तदा आप ताड़ी लायन, आपे ही उपदेश दा गुरमुख पति लायन, एक आपे उज्जर पायन एक पगति लायन, जिस आप बुझाए सो बुझसी आपे नाय लायन, नानक नाम ते आई है सच्ची वड़ियाई सुध।

जन नानक हर प्रभु बुझिया गुर सत गुर कै प्रसाद पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साओ आपे ही खटिया आपे कृपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीम न पाए अलख ब्रह मटिया अगम अथा

मन तन हो निहाल बिंदक नगर चास नौ निज नाम निधान गुर के शब्द लाग तिसे मिले संत खाक मस्तक जिसे पाग। श्लोक महला पंजवा हरनाथी को सच वैन सुनाई जो तो

जिस दा करता मित्र सब का सवारिया, जिस तू आवे चित सो प्रवान जन, जिस तू आवे चित बहुता तिस्तान, जिस तू आवे चित सो वड परवारिया।

आप तरे आप तम सब तारे सबा सृष्ट छुड़ावे मैला पंजवा पंडित अखाए बहुती राही कोरड़ मोठ जिनेहा अंदर मोह

अवतारोहा व्याप्या दुर्मत को बुद्ध को मूड़ा मन लागा तुस्मोहा ठग ऐसे ठग रल आया साथ दे इको जेहा सतगुर सराफ।

सता पौड़ी, जिस कै मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा, जिस गुर मिल कमल पर गासिया सो अंदिन जागा, लगा रंग चरणार बिंद।

खतिए जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है। चुल्ले सो छप निरंजनी मल तकत बैठा गुरहट्टी है।

मुद्रा मदद सहज तुन लागी, सुखमन पोचन हारी रे। तीरथ बरत नेम सुच संजम, रव सस गहने दियो रे। सुरत प्याल सुधा रस अमृत, उहो महारस पियो रे। निजर धार चुए अत निर्मल, ए रस मनु आरा तोरे। कहे कबीर सब

पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया न जाए, तेरे द्वारे तुम सहज की माथे मेरे दगाई। दागे हुए सुरन में जूझे, बिन दागे पग

जे मुख वेद गायत्री निपसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर करे। जा कह पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कहे। काहे मेरे बामन हर ना कहे राम न बोले पांडे दोजक परे। रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हठ कर्म कर उदर परे। चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक ले कूप परे। तू ब्राह्मण मैं काशी दुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने। हमरे राम नाम कह उबरे

अंतर जोत राम परदासा, गुरमुख बिरले जानी राव। पावर एक पोप रस बीदा, बारे ले उर्धरिया। सोरे मजे पवन चकोरिया, आकाशे फरफरिया। सहज सुन एक बिरवा उपजिया, करती जलहर सोखिया। कह कबीर हो ताका सेवक, जिन इहो बिरवा।

कर बारी। कवन काज सीजे जग पीतर जन्म कवन फल पाया, पवन इद तरन तारन चिंता मन एक निमख ना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी।

आवागमन होत है फुन फुन एह प्रसंग न टूटे। जिहि कर कथा होत हर संतन एक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपत चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपै मोह माई। दया तरम अर गुर की सेवा ए सुपनंतर नाही। दीन दयाल कृपाल दमोदर भगत बचल पहारी। कहत कबीर पीर जन राखो हर सेवा करूं तुम्हारी। जे सिमरन होए मुक्त द्वार जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कह कर बजावे तूर अनहद बजे सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे बिन सिमरन मुकत कट नाहे। रहाओ जे सिमरन नाही ननकार मुक्त करे उतरे बहु

बेदार जागत मुसीहत हौरे पाई निगम हुशियार पहरुआ देखत जम ले जाई रहाओ नींब पयो आंब आंब भयो नींबा केला पाका झार नालियेर फल सेबर पाका मूरख मुग्ध गवार हर भयो खांड रेत में बिखरियो हस्ती चुनियो न जाई कह कमीर।

आकाश मदे परमियले पंच जना सो बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले मन राम नाम बेदियले जैसे कनक कला चित मांडियले राव आनीले कुंभ पराईले उदक राजकुआर पुरंदरिये

पुराण शास्त्र आनंद का गीत कवित ना गावोगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बीन बजाओगो। बैरागी रामे गावोगो शब्द अतीत अनाहद राता आकुल के कर जाओगो। रहाओ पीड़ा पिंगला और सुख मना पौने बंद रहाओगो। चंद सूरज दो सम कर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो। तीर्थ देख ना जल में पैसो जीव जंत ना सतावोगो।

राम तत है, सतगुरु होए लखाया, राम कली कर दूजा। बनारसी तप करे उल्ट तीरथ मरे, अगन दह काया कल्प की जय। अश्वमेध जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय, राम नाम सर तऊ न पूजे।

राम नाम सर कौ न पूजय। अफबान गज दान सेजा नारी पूम दान ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जो निर्माइल की जय आप बराबर कंचन दी जय। राम नाम सर कौ न

सुनिए अनपौ पाओ न दर्श है। लोहा कंचन हिरण होए कैसे, जो पारस ना परस। देव संशय गांठ न छूटे,

तह बाजे शब्द अनाहद वाणी, तह चंद ना सूरज पौन ना पानी, साथी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुर्मत चीजे, अमृत रस गगनंतर बीजे, इस कला जो जाने पे हो, ए तै पास परम गुरुदेव, दशम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाथ हाथ पर आला, आले पीतल थाती, जागत रहे सो कभू न सोवे, तीन त्रिलोक समाज पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन में गए, जागत रहे न अली।

मेरे मन जप अहमस नाम हरे, कोट कोट दोख बहु कीने, सब पर हर पास धरे। रहाओ हर हर नाम जपे आराधे, सेवक पाए खरे, किल बिखे दोख गए सब नीकर, जो पानी मैल हरे। किन किन नर नारायण गावे, मुख बोले नर नर हरे, पंच दोख असाध नगर में, एक किन पल दूर करे। वड पागी हर नाम ते आवे, हर के भगत हरे, इनकी संगत देह प्रभ जाचो, मैं मूड मुगद निस्तरे। कृपा कृपा तार जग जीवन, रख ले वो शरण परे, नानक जन तुमरी सरनाई, हर राखो लाज हरे। नक्त महला चौथा, राम जप जन रामे नाम रले, राम नाम जप्यो गुर बचनी, हर तारी हर कृपले। रहाओ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन, जप मिल सलल सलले, हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन के बल बलले। पुरुषोत्तम हर नाम जन गायो, सब दालद दुख दलले, विच देही दोख असाध पंच धातु, हर किए खिन परले। हर के संत मन प्रीत लगाई, जो देखे सस कमले, उनवे कन कन कन हर गर्जे, मन बिरसे मोर मुरले। हमरे स्वामी लोच हम लाई, हम जीवे देख हर मिले, जन नानक हर अमल हर लाए, हर मेलो आनंद भले। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सके, गुर प्रसादी हर नाम दियायो, हम सतगुर चरण पखे। रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीशर, हम पापी शरण रखे, तुम वड पुरख दीन दुख पंजन, हर दियो नाम मुखे। हर गुण ऊंच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग सके, जो चंदन संग बसे निम

मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभु शरण गे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हर राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को नाम।

तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवे तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुरु सुने किलबिख पाप नाम हर काटे जीव खेत किसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने।

पावे जन नानक के प्रभु वदने नट महला चौथा मेरे मन कल कीरत हर प्रवने हर हर दयाल दया प्रभधारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावे हर

हर गहने हम बारिक को रिद उस्तत तारो हम करें प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांचे हर

हर हो नगर निहाल राव हर का गृह हर आप सवारे हो हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप गृह आयो हम हर की गुर की है बसी थी हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आपते की खबर गुर पाई मन तन अन दो अन

नट महला चौथा। मन मिल संत संगत शुभवंती, सुन अकथ कथा सुखवंती, सब किलबिख पाप लहंती, हर हो लिखत लिखंती रहाओ, हर कीरत कल

हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब पूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ते जप हर हर हर होवंती। नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाओ हर का मार्ग गुर संत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सुखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नक नारायण महला पंजवा इको ओंकार सतगुर प्रसाद राम हो क्या जाना क्या भाव है मन प्यास बहुत दर्शावे रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करो जिस पुरख विदाते सो सदा सदा तू प्यावे कवन जोग कवन

जित निमख ना प्रभ बिसरावे, संत संग लग एहो सुख पायो, हर गुण सद ही गावे, देखियो अचरज महा मंगल रूप, किछ आन नहीं दिस

पीर मात पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विष्णु पय नाम।

किछ पेखियो दास का कुल ना बिचारे हो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवारे हो महाविखम अग्नि का सागर तिस्ते पार उतारे हो पेख पेख नानक बिबसानो पुने पुने बलहारे हो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर ताका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो नट महला पंजवा।

पूरन पूर्वहे कृपा निज कट कट दुष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल ना लायन दो कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दास।

खिन पल रह न सकूं बिन सेवा, मैं गुरमत नाम समारे रहाओ। हर हर हर हर हर मन प्यावो, मैं हर हर नाम प्यारे। दीन दयाल पय प्रभु ठाकुर, गुर के सबद सवारे। मधुसूदन जग जीवन मादो, मेरे ठाकुर अगम

सहस मूरत एको प्रभ ठाकुर, प्रभ एको गुरमत तारे। गुरमत नाम दमोदर पाया, हर हर नाम उर्धारे। हर हर कथा बनी अत मीठी, जो गूंगा गटक समारे। रसना साध चखे पाए दूजे, हत पीके लोग विकारे। जो गुरमुख साध चखे राम नामा, सब अंग साध विसारे। गुरमत राम नाम तन

मैं गुरमत नाम समारे सास सास जाए ना मैं बिन सो बिरथा सास बिकारे कृपा कृपा कर दीन प्रभु सरनी मोको हर जन मेल प्यारे। नानक दासन दास कहत है हम दासन के पन...

कर सेवक पग लगवारे, जगन्नाथ सब जंत्र उपाए, नक्खीनी सब नथहारे, नानक प्रभ खिंचे तिग चलिए, जो पावे राम प्यारे। नट महला चौथा, राम हर अमृत सर नवारे, सतगुरु ज्ञान मजन है नीको, कीनो मिल कलमल पाप उतारे। रहाओ संगत का गुण बहुत अधिकाई, परसुआ गणक उधारे, परस न परस पै कुब जाको, ले बैकुंठ सिधारे, अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी, कर नारायण बुलारे, मेरे ठाकुर के मन पाए पावनी, जम शंकर मार बिदारे।

किछ ना समारे। जब कर मंदर आग लगानी कब कूप कदै पनिहारे। साकत सो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम विसारे। साकत बचन बिछुआ जो डसिए तब साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाए लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूरब जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लालन लाल गुलारे। जैसा रंग दे सो हो।

के मन सरदा कर हर तारे मेरे प्रभ सरदा भगत मन पावे जन की पै सवारे हर हर सेवक सेवा लागे सब देखे ब्रह्म पसारे एक पुरुष एक नदरी आवे सब एका नदर निहारे हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारे आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारे अंतर वास बहुत मुस्काए ब्रह्म फूला मृग सिंहारे बन बन टूट।

कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खावारे जो जन चंद्र हास दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लूकी जा रे प्रभ को जन अंतर हृद लोचे प्रभ जन के सास निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे आपन आप आप प्रभ ठाकुर प्रभ आपे शिष्ट सवारे जन नानक आपे आप सब वरते कर कृपा आप निस्तारे नट महला चौथा राम कर कृपा लेहु उबारे।

सत्संगत परम पद पाया पदमा सुन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल देह सवारे। मेरे सतगुरु के मन बचन न पाए सब सो कट चार सिवारे। मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे। गुरुमुख सेवा मेरे प्रभ पाई मैं सतगुर अलख लखारे। नारी पुरुख पुरुख सब नारी सब एको पुरुख मुरारे। संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे। ग्राम ग्राम नगर सब फिरया हृदय अंतर हर जन

सबद विचारे निज फल जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे। तो गुण ईश बरन नहीं साको तुम मंद हम निकतीरे नाम के कृपा करो गुर मिलो मैं राम जपत मन तीरे। नट महला चौथा मेरे मन पद ठाकुर अगम अपार।

अनित जतन कर रहे हर अंत नाहीं पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम रात रात दीन तेरे हर शरण हर प्रभु आया। शरणागति प्रभु पालते हर भगत वचन आया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़िया हर राख लियो तरा।

आया हर हार हर उधारियो जन नानक नाम समाया माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुख दाता सत्संगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पचाता रहाओ वड पागी गुरु दर्शन पाया गुरु मिले हर प्रभ जाता दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर शरणाता तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया तिन पूछो हर की बात।

हर प्रभु आए मिले सुख पाया, सब तुल पाप गवाता। राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाई है वड पागी, जन नानक चरण पराता। माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन पावनी हर त्यायो, अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो। रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतो हर रायो, हर आन मेलो सतगुरु खिन बंद मुक्त करायो। प्रभु मस्तके तुरली खिया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगन बाजया, हर मिलियो मंगल गायो। पतित पावन नाम नर हर मंद पागिया, नहीं पायो ते गर्भ जोनी गालियें, जो लोन जलें गलायो। मत दे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन में लायो, हर राम नामे रहो लागो, जन नानक नाम समायो। माली गौड़ा महला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगाश कया गुरु पाया, हर जप्यो क्रम तो पागा। रहो कह पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किलबित खीन पै शांत आई, हर उर्धारियो वड पागा। मन मुख रंग कसुंभ है कछुआ, जो कुसुम चार दिन चागा, खिन में बिनस जाए पर कापे, दंड धर्म राय का लागा। सत संगत प्रीत साध अत गूरी, जो रंग मजीठ बहु लागा, काया का पर चीर बहु फारे, हर रंग ना लहे सवागा, हर चारे ओ रंग मिले गुर सोबा।

अध काट बिन हर नाम को मुक्त न पावे बहु कंचन दी जय कट काट हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट त्रिकुटी फोर परम पव पागा लज पानी मटकी माट कल युग गुर पूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे लिलाट जन नानक रस अमृत पिया सब लाथी पू

अवर टहला चूठियां नित करे जम सिर मार रहाओ जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह विकार सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक परम पूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होव ना सो होया को ना मेटनहार अगम रूप गोविंद का अनेक नाम अपार।

नमस्कार। जास जपत होवत उधार रहाओ, जा कै सिमरन मिटे तंद, जा कै सिमरन छूटे बंद, जा कै सिमरन मूरख चतुर, जा कै सिमरन कुल्हे उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरे, जा कै सिमरन अपदा टरे, जा कै सिमरन मुच्चत पाप, जा कै सिमरन नहीं।

साध संगत पज पूरन काम रहाओ बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत।

जैसे पालन सरन सेंग गरुड़ मुख नहीं सर्प त्रास सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास जैसो आंडो हृदय माहे जैसो दानो चक्की दराहे बहुत उपमा थोर कहे हर अगम अगम अगाध तुहे ऊंच मूचो बहु अपार सिमरत नानक परे।

नैन दर्श पेखो निस्पोर, हस्त हमरे संत टहल, प्राण मन तन संत बहल, संत संग मेरे मन की प्रीत, संत गुण बसे मेरे चीत, संत आज्ञा मने मीठ, मेरा कमल बिगसे संत डीठ, संत संग मेरा होए निवास, संतन की मोहे बहुत प्यास, संत बचन मेरे मने मंत, संत प्रसाद मेरे

करन करावन हाजरा हजूर रहाओ। सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। सगल निद हर हर हरे, मुन जनता की सेव करे। जा कै कर सगले समाहे, जिसते बिरथा कोए नाहे। जी जंत्र करे तत्पाल, सदा सदा सेवो कृपाल। सदा धर्म जा कै दीबान, बे मोहताज नहीं किछ कान। सब किछ करना अपन आप, रे मन मेरे तू ताको जाप। साध संगत को हों बलिहार, जास मिल हो वै उधार। नाम संग मन तन्हे रात, नानक को प्रभ करी दात। माली गौड़ा मैला पंजवा, दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर समरथ की सरना, जियो पिंड तान रास मेरी। प्रभ एक कारण करना रहाओ। सिमर सिमर सदा सुख पाये, जीवने का मूल। रव रया सर्वत ठाए, सुख मोह स्थूल। आल जाल विकार तज सब, हर गुना नित गाओ। कर जोड़ नानक दान मांगे, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा महला पंजवा, प्रभ समरथ देव अपार। कौन जाने चलत तेरे, किछ अंत नाही पार रहाओ। इक खिने थाप उथापदा, कर पन करने हार। जेत कीन उपार जना, प्रभ दान दे दातार। हर शरण आयो दास तेरा, प्रभ ऊंच अगम मुरार। कड ले हो पौजल बिखमते, जन नानक सद बलिहार। माली गौड़ा महला पंजवा, मन तन बस रहे गोपाल। दीन बांधव भगत वचल, सदा सदा कृपाल रहाओ। आद अंते मद तू है, प्रभ बिना नाही कोए। पूर रहा सगल मंडल, एक स्वामी सोए। करन हर जस नेत्र दर्शन, रसन हर गुण गाओ। बलिहार जाए सदा नानक, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा।

तन तन बन खंड बिंद्रावना, जह खेले श्री नारायणा, बेन बजावे गोदन चरे, नामे का स्वामी अनद करे। मेरो बाप मा दो तू तन के सो सांवलियो बीठ लाए, रहाओ कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए, गज हस्ती के प्राण उधारियले, दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारियले, गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारियले, ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणागत।

अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आशा रे। प्रणवे नामा पैने कामा को ठाकुर को दासा रे। राग मारू मैला पहला कर पहला चौप दे।

विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू मैला पैला। मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करते लेख लिखाया लिख दात जोत वड्याई मिल माया सुरत गवाई। मूरख मन काहे करसे माना उठ चलना खसमे पाना रहाओ तज साध सहज सुख होई कर छड़ने रहे न कोई किछ खा जाय किछ तर जाये जे बाहुर दुनिया आये सज काया पट हडाए फुरमाइश बहुत चलाए कर सेज सुखाली सोवे हाथ पौंदी काहे रोवे कर कुमन वाणी पाई पाप पत्थर तरन।

कागद मन मसवाणी बुरा पला दोए लेख पए। ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए तो गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगै नित फासे छूटस मूड़े कहन गुणी। काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई। पया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तने हा। एक नाम अमृत उह देवे तो नानक त्रिष्टस देहा। मारू महला पहला बिमल मझार बस निर्मल जल पद्मन जावल रे। पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कब है ना जान सरे पक्ष सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे। रहाओ बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुन रे। चंद कुमदनी दूरों निवसस अनपौ कारण रे। अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे। अपना आप तू कब हो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यों रे। पंडित संग वसे जन मूर्ख आगम सास सुने। अपना आप तू कब हो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे। एक पाखंडी नाम ना राचे एक हर हर चरणी रे। पूरब लिखिया पावस नानक रसना नाम जप रे। मारू महला पहला श्लोक। पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग। अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक पाग। शब्द

तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पंत नानक अंदेसा एही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू मैला पैला मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाऊ सुभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना कर।

हवर पला संसार मारू महला पहला एहो तन सर्व रहा भरपूर मन मुख फिर ऐसे जाने दूर सो तन वखर नाम हृदय हमारे जिस तू दे तिसे निस्तारे रहाओ ना एहो तन जले।

इस तन बिन कहो किने परमगत पाए, पणत नानक अकथ की कथा सुनाए। सतगुर मिले ता यो तन पाए, मारू मैला पहला सूर सर सोस ले, सोम सर पोख ले, जुगत कर मरत सो संबंध की जय। मन की चपल स्यों जुगत मन राखी है, उड़े ने हंस ने कंद चीज है। मूड़े काय चे परम पुला, ने चीनिया परमानंद बैरागी रहाओ। अजर गहो जार ले, अमर गहो मार ले, प्रात तज छोड़ तो अप्यो पी जय। मीन की चपल स्यों जुगत मन राखी है, उड़े ने हंस ने कंद चीज है। पणत नानक जनो रवे, जे हर मनो मन पवन स्यों अमृत पी जय। मीन की चपल स्यों जुगत मन राखी है, उड़े ने हंस ने कंद चीज है। मारू मैला पहला माया मोई ना मन मुआ, सर लहरी मैं मत बोयत जल सिर तर टिके, साचा वखर जित। मानक मन में मन मारसी, सच ना लागे कत, राजा तख्त टिके गुणी पै पंचायन रत। बाबा साचा साहेब दूर ना देख, सर्व ज्योत जग जीवना सिर सिर साचा लेख। रहाओ ब्रह्मा विष्णु रिखी मुनि, शंकर इंद तपे पे खारी। माने हुक्म सोहे दर साचे, आकी मरे अफारी। जंगम जोत जति सन्यासी, गुरपुरे विचारी। बिन सेवा फल कभू न पावस, सेवा करनी सारी। नितनिया तन निगुरिया, गुर निमानिया तू मान। अंदुले मानक गुर पकड़िया।

ज्ञान रतन मन मांझी है, बहुड़ना मैला होए, जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए, नानक सिर दे छुट्टी है, मन तन साचा सोए, मारू मैला पहला, जोगी जुगत नाम निर्माइल, ता कै मैल न राती, प्रीतम नाथ सदा सच संगे, जन्म मरण गत बीती।

ब्रह्मण ब्रह्म ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति जिहवा डंडी एव कट छाबा तोलो नाम अजाची एको हाथ साओ सबना सिर वनजारे एक पाती दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूजे जिस एक लिव लागी जियो रह निबराती शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी गुरु बचनी बाहर।

जियो जिसनु साचा सिखती लाए गुरमुख विरले किसे बुझाए अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो रहाओ फिर सेती तन प्रेम रचाए गुर कै शब्द तथा चित लाए सहज सेती तन खरी सुहेली तृष्णा तिखा निवारी जियो सहसा तोड़े परम चुकाए सहजे सिफती तनख चढ़ाए गुर कै शब्द मरे मन मारे सुंदर जोगा तारी जियो हौ मैं जलिया मनो विसारे।

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र हैं थावा बाबा देहे बसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहो बुरा पला किछ आपस ते जानिया ए सगल विकारा ए फुरमाया खसम का होआ वरते एहो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किस्ते होई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे विनाशी जो तिस पाना सो सतकर मानिया काटी जम की फांसी पणत नानक लेखा मांगे कवना जाचू का मन अभिमाना तास तास धर्म राय जप्त है तय सच्चे की सरना मारू मैला तीजा आवन जाना नाथी है निज करवासा होए सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए ए मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार गुर कै शब्द ते आए तू सच लगी प्यार रहाओ एथे नावो पुल्या फिर हाथ किताऊ ना पाए जोनी सब पुआयन बिष्टा माए समाए वड पागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए आंदिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मिलाए आपे सृष्ट सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वडे आया जय पावे तें दे मारू मैला तीजा पिछले गुने बख्साए जियो अब तू मार्ग पाए हर की चरणी लाग रहा विच्चों आप गवाए मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए।

प्रम कटिया गुरु नाम दिया समझाए, इहो मन लालच करदा फिरे लालच लागा जाए, तंदे पूर्व आपिया जमपुर चोटा खाए, नानक सब किछ आपे आप है दूजा नाही कोए, भगत खजाना बख्शियों गुरमुखा सुख होए, मारू मैला तीजा सच रते से टोल लो से विरले संसार, तिन मिलिया मुख उजला जप नाम मुरार, बाबा साचा साहिब हृदय समाल, सतगुर अपना

जम पुरबत दे मारिए बहुती मिले सजाए। मेरा प्रभु वे प्रभाव है ना तिस तिल ना तमाए, नानक तिस शरणाई पज पो आपे बख्श मिलाए। मारू मेला चौथा हर दूजा इको अंकार, सतगुर प्रसाद जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर शरण परे, दालद पंच सुदामे मिलियो भगति पाए तरे, भगत वचल हर नाम किरतारत गुरमुख कृपा करे, मेरे मन नाम जपत उदे त्रू प्रहलाद बिदर दासी सुत गुरमुख नाम तरे रहाओ। कल युग नाम प्रदान पदार्थ भगत जना उदरे, नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दोख गए चमरे, गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किलबिक पाप तरे, जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे, बेस्वारवत अजामल उदर्यो मुख बोले नारायण नर हरे, नाम जपत उग्रसेन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे, जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे, सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उदरे, जन नानक हर कृपा धारी उर्धर्यो नाम हरे। मारू महला चौथा सिद्ध समाज जप्यो लिव लाई, साधक मुन जपिया जति सती संतोखी त्याया, मुख इंद्रादिक रविया शरण परे जप्यो ते भाए, गुरमुख पार पया मेरे मन नाम जपत करया, तन्ना जट बाल्मीक बटवारा गुरमुख पार पया रहाओ। सुर नर गण गंधर्वे जप्यो रिख बपुरे हर गाया, शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो मुख हर हर नाम जपया, हर हर नाम जिना मन पीना ते गुरमुख पार पया, कोट कोट ते तीस्त्यायो हर जपत्या अंत न पाया, वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडत हर गाया, नाम रसाल जिना मन वस्या ते गुरमुख पार पया, अनतरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया, गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया, गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो जन नानक नाम लया।

कर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा। हर पाओ लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख, मिल संगत सरदा उपजे गुर शब्दी हर रस चाख, सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख। मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख, गुरपुरे हर पाया हलत पलत पत राख रहाओ। हर हर नाम त्याये हर कीरत गुरमुख चाख, तन धरती हर बीजिए विच संगत हर प्रभ राख। अमृत हर हर नाम है गुरपुरे हर रस चाख, मन मुख तृष्णा पर रहे मन आशा दह दिस बहुलाख। बिन नामे त्रिग जीव दे

हर हृदय सदा सदा संभाली। हर हर नाम जपो मेरे जीड़े, जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर दिलो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवे अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सतगुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंगावे जियो। तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे। सब किलविक काटे हर तेरे, हर तन राखो हर तन संचो। हर चलदिया नाल सखाई जियो, जिसनो कृपा करे सो त्यावे। नित हर जप जापे, जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर रस पावे, जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ। निर्भव निरंकार सतनाम, जग में श्रेष्ठ उत्तम काम। दुश्मन दूत जम काल ठे मारो, हर सेवक नेर ना जाई जियो। जिस ऊपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया। जे उसका बुरा कहे कोई पापी, तिस जम कंकर खाई जियो। सब में एक निरंजन करता, सब कर कर वेखे अपने चलता। जिस हर राखे तिस कौन मारे, जिस करता आप छड़ाई जियो। हौ अंदिन नाम लई करतारे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे। दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छड़ाई जियो। मारू मैला पंजवा, कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद, डर पे तरत आकाश नखत्रा, सिर ऊपर अमर करारा। पौन पानी बैसंतर डर पे इंद्र विचारा। एका निरपव बात सुनी, सो सुखिया सो सदा सुहेला। जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ, दे तार अर देवा डर पे। सिद्ध साधक डर मोया, लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया। राजस सातक तामस डर पे, केते रूप उपाया। छल बपुरी ए कौला डर पे, अत डर पे धर्म राया। सगल समग्री डरे व्यापी, बिन डर करने हारा। कहो नानक भगतन का संगी, भगत सोहे दरबारा। मारू महला पंजवा, पांच बरख को अनाथ त्रू बारिक। हर सिमरत अमर अटारे, पुत्र हेत नारायण कहो। जम कंकर मार बिदारे, मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे। मोहे दीन अल्प मत निर्गुण, परयो शरण द्वारे रहाओ। बाल्मीक सुपचारो तरयो, बद्धिक तरे बिचारे। एक निमख मन माहे अराद्यो, गजपत पार उतारे। कीनी रखिया भगत प्रहलादे, हर नाखस नखे बिदारे। विदरदासी सुत पयो पुनीता, सगले कुल उजारे। कवन पराध बतावो अपने, मिथ्या मोह मगनारे। आयो साम नानक ओट हर की, लीजे पूजा पसारे। मारू महला पंजवा, वित्न वित प्रम्यो बहु पांते। अनक जतन

ए विद खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए। तुम दातार वडे प्रभ समरथ मांगन को दान आए। त्याग्यो सगला मान मैता दास रेण शरणाए। कहो नानक हर मिल पए कै महा आनंद सुख पाए। मारू मैला पंजवा कवन थान तीरो है नामा कवन बस्त अंकारा कवन चेहन सुन ऊपर छोयो।

को दौरेओ। आज्ञा में पूख सोई कर सूखा सोग हरख नहीं जानेओ। जो जो हुकुम पयो साहिब का सो माथे ले मानेओ। पयो किरपाल ठाकुर सेवक को सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल उह आया। जिन नानक खसम पछाता मारू मैला पंजवा खुलिया कर्म किरपा पई ठाकुर कीर्तन हर हर गाई। श्रम था का पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई। अब मोहे जीवन पदवी पाई चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बैराई। सद हजूर हाजर है नाजर कते न पयो दुराई। सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाय। पावन पतत किए खिन पीतर मैं मा कथन न जाई। निरपो पय सगल पै खोए गोविंद चरण उठाई। नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिनस लिवलाई। मारू मैला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबू न गाव सिरे। छोड़ जाए खिन पीतर ताको हुआ को फिर फिर तावसरे। अपने प्रभु को क्यों ना समार सने बैरी संग रंग रस रचे।

दुलारियो हस्त पाव चरे खिन पीतर अगन संग ले जा रहे हो मुड़े ते मन ते राम बिसारे हो लून खाए करे हराम खोरी पेखत नैन बिदारे हो रहाओ असाद रोग उपजो तन पीतर तरत न काहू तारे हो प्रभ विसरत महा दुख पायो एहु नानक तत विचारे हो मारू मैला पंजवा चरण कमल प्रभ राखे चीत हर गुण गावे नीता नीत तिस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ जा के वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गयो

प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसार्यो अज्ञानथ। होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म अकारथ। रे नर ऐसी करें इयानथ तज सारंग तर परम तू पूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ। रहाओ तरणी तर त्याग नीच कुल सेवें हों हों करत बिहावथ। फोकट कर्म करें अज्ञानी मनमुख अंध कहावथ। सत होता असत कर मान्या जो बिन सत सोने चल जानथ। पर की को अपनी कर पकरी ऐसे पूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वैस सब एक नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ। मारू मैला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। बिसार हर जियो बिखे पोगे तपत थम गल लाए। रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दव तुम नहीं सुनियो तर्म राय। रहाओ विकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए। महासागर समुद्र लंगना पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो नेत्र रखे विराए। शीस उठावन न कबहू मिले महादुत्तर माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए। स्वभावत जैसे बैसंतर अल्पत सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा जिन गुर पै मनिया सुभाए। गुर मंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोन न पाए। रे नर इन विद पार पराए त्याए हर जियो होए मिल।

आया था। अनुपव अचरज रूप प्रभ देखिया, मेरा मन छोड़ न कतहु जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था, मोल अमोल न पाया जाई। कर कृपा गुरु दिवाया था रहाओ, अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो, तै अमृत नाम चो आया था। तोट नाही मंत्रिष्णा बूजी, अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे, अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खेलाया था। कहो नानक परम।

ताऊ लागा गोविंद स्यों काल पाई खाए, खेत मेरे जमिया निखुट ना कब हो जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ ना कतू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आघाए, मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने तयो प्रगा।

रूप रंग खुशियाँ मन भोगण केते छिद्र विकारा हर का नाम निधान कल्याणा सुख सहज इहो सारा माया रंग बिरंग किने में जो बादल की छाया से लाल पे गूरे रंग राते जिन गुरु मिल हर हर गाया ऊंच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वडियाई सोबा नानक खसम त्या।

जिस होवे भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंक न पारा वारा जन नानक सद बलिहारा।

मात गर्भ में जिन प्रत पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया। कोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब टकिए। चरण कमल और अंतर तारो, दिखिया बनते जी।

नानक ताके बल बल जाए, राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरै तिसका निस्तारा रहाओ, मिथ्या वस्त सत पर मानी, हित लायो सठ मूर अज्ञानी, काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता, अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता, कृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला, आवत इकेला जात इकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला, पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक कीर्तन।

मन तन बासना बहुत विस्तारा अंगमेव मूठो बेचारा अनेक दोख और बहुत सजाई ताकि कीमत कह न जाए प्रभु विसरत नरक में पाया तह मात न बंद न मीत न जाया जिसको होत कृपाल स्वामी सोजन नानक पार ग्रामी प्रमत प्रमत प्रभु सरनी आया दीना नाथ जगत

प्रेम भगत होवत निस्तारा, साध रूप अपना पन तारिया, मां अगन ते आप उबारिया, जप तप संजम इस्ते किछ नाही, आद अंत प्रभ अगम अगाही, नाम दे मांगे दास तेरा, हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा, मारू महला पंजवा, कत कौ डह का

का आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई अपने को कृपा करियो इस नाम से आई नानक दीन नाम मांगे दुखिया परम चुकाई मारू मैला पंजवा मेरा ठाकुर अपारा।

तारन बल बल बले बल जाय। ऐसा कोई पेट है संत जित हर हरे हर प्याय। मोको कोई न जानत कयत दास तुम्हारा, यह ओट आधारा।

अटल अछयो देवा मोहन अलख अपारा, दान पावो संता संग नानक रेन दसारा। मारू मैला पंजवा तृप्त अघाए संता, गुरजाने जिन मंता ताकि किछ कह न जाई, जा को नाम बढ़ाई।

छोड सगल सियान पा मिल साध त्याग कुमान और सब किस मिथ्या रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिटे अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम रहाओ दुख दीन ना पाओ बिना पै मिले सुख विश्राम गुर प्रसाद नानक बखाने हर भजन तक ज्ञान मारू मैला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे से पुत्र मित्र विलास बनता टूटते इहने मेरे मन नाम नित नित लेहे जलत नाही अगन सागर सुख मन तन देहे राव देख छाया जैसे बिन सत पवन चूलत में हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरे काम आवत एहे मारू मैला पंजवा पुरख पूरन सुखे दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिन सह व्यापत उसन न सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना ए निर्मल रीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिसीद नवल नवतन चतुर सुंदर मन नानक तिस संग बीद मारू मेला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण शरण पद संग साधु पव सागर उतरे पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर्षो अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू आपन आप निवार गोविंद पज सब स्वार्थ पूरे नानक कभू नहार मारू मेला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेन साधु थियो तिसे प्राप्त नाम तेरा।

नाम इक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू मैला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखे लगन देत न

हुआ। पंच तात कर पुतला किया, साहे कै फुरमायड़े जी, देही विच जियो आए पया। जिथे अग्न पखे परहारे, उरद मुख महा गुबारे, सास सास समाले सोई, उठे खत्म छड़ाए लया। विचों गर्भे निकल आया, खत्म विसार दुनी चितलाया, आवे जाए पुवाये जोनी, रहन न किती थाए बया। मेरवा रख लयन आपे, जी जंग सब तिसके थापे, जन्म पदार्थ जिन चलिया, नानक आया सो परवान थिया।

दान है। कटकटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थान है। आवे न जावे संगे समावे पूरन जाता काम है। भगत जना का राखना आरा संत जीवे जप।

हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उद्रियो, गनकाहु गत पाई रहाओ। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधियाई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जे नर जस कृपा निध गायो, ताको पयो सहाई। कहो नानक में यही परोस है, गही आम शरणाई।

काल फास जब घर में मेली ते सुद सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब हो सहाई जो संपत अपनी कर मानी छिन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जग सब न गाई मारू मैला नावा माई में मन को मान न त्यागो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लागो राव जम को दंड पड़ो सिर ऊपर तब सोवत तै जागो कहा होत अब कै पछताए छूटत ना इन भाग्यो ए चिंता उपजी कट में जब गुर चरणन अनुरागियो सुफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभु जस में पागियो मारू अच्छा।

हर सच्ची रख बहु कहा प्रम था के देखा साचो साहिब निर्मलो मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख पारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए गुरमति नाम उधारा गुरपूरे पूरी मत है पूरे शब्द विचारा अठहठ तीर्थ हर नाम है किल विस्का तनहारा जल बिलोवे जल मत है तत लोड़े अंध ज्ञाना गुरमति जद मथी है अमृत पाए नाम निदाना मन मुख तत न जाननी पशु माए समाना हौ मैं मेरा मरी मर मर जम मैं वारो वार गुर कै शब्दे जे मरे फिर मरे न दूजी वार गुरमति जग जीवन मन वसे सब कुल उदाहरण हार सच्चा वखर नाम है सच्चा वापारा लाहा नाम संसार है गुरमति विचारा दूजे पाए कार कमावनी नित तोता है सारा साची संगत थान सचे सच्चे करवारा सच्चा पोजन पाओ सच सच नाम अधारा सच्ची बाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा रस भोगन पाप साइया दुख सुख संगारा मोटा नाव तराई है गल औगुण पारा मानस दात न हो वही तू दाता सारा अगम अगोचर तू तनी अवगत अपारा गुर शब्दी दर जोई है मुक्ते पंडारा नानक मेल न चूकई साके वापारा मारू मैला पहला बिख बोयथा ला दिया दिया समुंद मंझार कंदी दिस ना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना केवटू जल सागर सराल बाबा जग पाथा मां जाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल रहाओ सतगुरु है बोए था शब्द लंगावन हार तिथे पवन ना पाव को ना जल ना आकार तिथे सच्चा सच नाए पव जल तारण हार गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सों लिवलाए आवागौन निवारया ज्योति ज्योत मिलाए गुरमति सहज उपजय सच्चे रह समाए सप पिड़ाई पाए दिख अंतर मन रोस पूरब लिखिया पाई है किसनो दी जय दोस गुरमुख गारड जे सुने मन्ने नाव संतोख मागर मच्छ पाई है कुंडी जाल बताए गुरमत फाखा पाई है फिर पछोताए जम्मन मरण न सुजई कीर्तना में क्या जाए हों मैं बिख पाए जगत उपाया शब्द वसे बिख जाए जरा जोई ना सकई सच रहे लिवलाए जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हो मैं जाए तंदे तावत जग बांधिया ना बूझे विचार जम्मन मरण विसारिया मन मुख मुग्द गवार गुर राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार सुहट पिंजर प्रेम के बोले बोलन हार सच चुगे अमृत पिए उडे ताए का वार गुर मिले खसम पछाणिए कहो नानक मोख द्वार मारू मैला पहला शब्द मरे ता मार मरे पागो किस तह जाओ जिस तह डर तह पागी है अमृत ता को नाओ मारे राखे एक तू बीजो ना ही खाओ बाबा मैं कुचील काचो मत हीन नाम बिना को कछ नहीं गुरपूर है पूरी मत कीन रहाओ अवगण सुगर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ सहज शब्द सुख उपजे बिन पागा तन ना है जिनके नाम ना मनवस है से बांधे दुख सहाय जिन्नी नाम विसारिया से कित आए संसार आगे पाछे सुख नहीं गाडे ला दे चार विछड़िया मेला नहीं दुख करो जम द्वार अगे क्या जाना नाहे मैं पूले तू समझाए पूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए
गुरु बिन दाता को नहीं कीमत कह न जाए। साजन देखा ता गल मिला साज पठायो लेख, मुख तिमाने तन खड़ी गुरमुख आखी देख। खुद पावे तू मन वसे नगरी कर्म विशेख, भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे। बीजे सूजे को नहीं मन तन पूरन दे, जिनकी आतिन देखिया आप वडाई दे। नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप, नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतर स्वरूप। जो तिस पावे सोचिए तू दीपक तू तूप, गीत साध

नानक नाम ना विसरे, जो तिस पावे सो होग, मारू मैला पैला। साची कार कमावनी होर लालच बाद, एह मन साचे मोहया जेवा सत्साद। बिन नामे को रस नहीं होर चले दिखलाद, ऐसा लाला मेरे लाल को सुन खत्म हमारे। ज्यों फुरमावे त्यों चला सच लाल प्यारे राव। हम दिन लाले चाकरी गोले सिर मीरा, गुरबचनी मन वेचिया शब्द मन तीरा। गुरपूरे साबास है काटे मन पीरा, लाला गोला तनी तो क्या कहो वड्याई है। पाने बक्से पूरा तनी सत्कार कमाई है, विछुड़िया को मेल ले गुर को बल जाई है। लाले गोले मत खरी गुर की मतनी की, साची सुरत सुहावनी मनमुख मत की। मन तन तेरा तू प्रभु सच तीरथ तुर की। साचे बैसन उठना सच भोजन पाख्या, चित सच्चे वित्तो सच्चा साचा रस चाख्या। साचे कर साचे रखे गुर वचन सुवाख्या, मन मुख को आलस करो साचे उजाड़ी। साथा चुगे नित चोगड़ी लग बंद निगाड़ी, गुर प्रसादी मुक्त होए साचे निज तारी। अनहत लाला बेदिया प्रभ हेत प्यारी, बिन साचे जियो जल बलों झूठे वेकारी। बाद कारा सब छोड़िया साची।

तेरा हुक्म लाला मने ए करनी सार गुर सागर अमृत सर जो इच्छे सो फल पाए नाम पदार्थ अमर है हृदय मन वसाए गुर सेवा सदा सुख है जिसनो हुक्म मनाए सोना रूपा सब तात है माटी रल जाई बिन नावे नाल न चले सतगुर बूझ बुझाई नानक नाम रते से निर्मले साचे रहे समाई मारू मैला पहला हुक्म पया रहना नहीं तुर फाटे की रह तेहो मन अवगुण बांधिया सो दे शरीर है पूरे गुर बख्शाइए सब गुने फकीर है क्यों रही है उच्चलना बुद्ध शब्द विचारा जिस तू मेले सो मिले तुर हुक्मा पारा रहाओ जो तू राखे त्यों रहा जो दे सो खाओ जो तू चलावे त्यों चला मुख अमृत नाओ मेरे ठाकुर हथ वड्याईया मेले मन चाओ कीता क्या सालाये कर देखे सोई जिनकी आसो मन वसे मैं अवर न कोई सो साचा सालाये साची पत होई पंडित पढ़ न पहुंचे बहु आल जंजाला पाप पुन दे संग में खुद

तेरे प्रभु पावन से उजले सब मैल परी जय मैला उजर ताकिए पारस संग पी जय वन्नी साचे लाल की किन कीमत की जय पेठी हाथ न लबई तीरथ नहीं दाने पूछो वेद पढ़न से आमूठी विन माने नानक कीमत तो करे पूरा गुर ज्ञाने मारू महला पहला मन मुख लहर कर तज विगूचे अवरा के कर हेरे गृह धर्म गवाए सत गुरु ना पेटे दुर्मत कूमन के रे दिसंतर पवे पाठ पढ़ थाका तृष्णा होए वधेरे काकी पिंडी शब्द नाचीने उधर परे जैसे टोरे बाबा ऐसी रवत रवे सन्यासी गुर के शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते तृप्तासी राव कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेट पे खारी कापड़ तार बनाई खिंसा चोली माया तारी कर कर मांगे जग पर बोधे मन अंधे पतहारी परम पुलाना शब्द नाचीने जुए बाजी हारी अंतर अग्न ना गुर बिन बूझे बाहर कुवर तापे गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीनस आपे निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापे अथक तीरथ परम विगूचे क्यों मल तो कह पापे छानी खाक विपूत चढ़ाई माया का मग जो है अंतर बाहर एक ना जाने साच कहे ते छो है पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत ओ है नाम न जपे क्यों सुख पावे बिन नावे क्यों सो है मूंड मुंडाए जटा सिख बांधी मोन रहे अभिमाना मनुआ डोले जय दिस्तावे बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महा बिक पीरे माया का देवाना कीर्तना मिटे हुक्म न बूझे पतुआ माए समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन कृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्यापिया चितलाया पर नारी सिख करे कर शब्द न चीने लंपट है बाजारी अंतर दिख बाहर निबराती ता जम करे खुआरी सो सन्यासी जो सतगुर सेवे विच्चों आप गवाए साधन पोजन की आस न करे अचिंत मिले सो पाए बके ना बोले खिमा तन संग रह तामस नाम जलाए तन गिर ही सन्यासी जोगी जे हर चरणी चितलाए आस निराश रहे सन्यासी एक क्यों लिवलाए हर रस्ती वे ता सांत आवे निज कर ताड़ी लाए मनवा ना डोले गुरमुख बूझे तावत वर्ज रहाए गृह शरीर गुरमति खोजे नाम पदार्थ पाए ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नाम रते विचारी खानी बाणी गगन पताली जनता जो तुम्हारी सब

दोहागनी सावर ने क्यों जाओ मैं गल औगण मुठड़ी बिन फिर चूर मराओ तेरे फिर समला सावर ले करवास सुख संबंध सुहागनी फिर पाया गुणतास लेप निहाली पटकी कापुर अंग बनाए फिर मुट्टी दोहागनी तिन दुखी रहन विहाए।

तो सौ रंग रवंत सबे रुति चंगिया जित सच्चे सुने हो सात अनकंत पछाणिया सुख सुची निस देहो पत्तन कूके पातनी वंजो तुक विलाड़ पार पवंदड़े डिठ में सतगुर बोहित चाड़ हिकमी लद्या हिक लद गए हिक पारे पर नाल जिन्नी सच वनंजिया से सच्चे प्रवनाल ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसै कोए नानक हो।

एक जोत दो नाओ। मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ। गुरुद्वारे नाओ पाए बिन सतगुर पल्ले ना पाए। सतगुर कह पाने मन

जाने जिसनो नदर तुम्हारी जियो रहाओ। दिव्य दृष्ट जागे परम सुखाए, गुरु प्रसाद परम पद पाए। सो जोगी ए जुगत पछाने, गुरु के शब्द विचारी जियो। संजोगी तन फिर मेला होवे, गुरमत विच्चों दुर्म

पियो एहो शब्द सार जिस नो लाए गुरमुख तृष्णा कुख गवाए आपन लिया किछु न पाये कर कृपा कल तारी जियो अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने कर आया अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नजर तुम्हारी जियो गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचों गवाए सतगुर बाजो सब तंग कमावे देखो मन विचारी जियो एक परम पूले फिरे अंकारी इकना गुरमुख हो मैं मारी सच्चे शब्द रते बैरागी और परम पुले गावारी जियो गुरमुख जिन्नी नाम न पाया मनमुख बिरसा जन्म गवाया अगे बिन नामे को बेली नाही बूझे गुर विचारी जियो अमृत ना

कार्तिजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद लख चौरासी परमते परमते दुर्लभ जन्म अब पायो रे मूड़े तू हो छह रस लपतायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या क्यों उर्जायो राव रतन जवे हर बंजन आयो कालर लाद चलायो जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर चीतना आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान विसार्यो एक निमख नहीं मन लायो पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर्जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारू महला पंजवा कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग हर नाम रस रसनाओ।

ना कही। मोख मुक्त द्वार जा कै संत रिदा भंडार, जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखन हार। दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसे मन माहे, मृत नरक स्थान बिखड़े बिख न पोहे ताहे। रिद्ध सिद्ध नवनिद जाके अमृता प्रवाह, आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह। सिद्ध साधिक देव मुन जन वेद करें उचार, सिमर स्वामी सुख सहज पुंचे नहीं अंत पारावार। अनिक प्राचत मिटे खिन में हृदय जप भगवान, पावना ते महापावन कोट दान स्नान। बल बुद्ध शुद्ध प्राण सर्व सु संतना की रास, बिसर नाही निमक मन ते नानक की अरदास। मारू मेला पंजवा शस्त्र तीखन काट डार्यो मन न की नो रोस, काज ओआ को ले सवार्यो तिल न दी नो दोस। मन मेरे राम रो नित नीत, दयाल देव कृपाल गोविंद सुन संतना की रीत। रहाओ चरण तले उगाहे बैस्यो श्रम न रहो शरीर, महासागर नह व्यापै खिने उतर्यो तीर। चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत, विष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन न मनी विपरीत। ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र, मित्र सत्र ना कछु जाने सर्व जी समत। कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन न पयो विखाद। शीत मंद सुगंध चल्यो सर्व थान समान, जहां सा किछ ता लागयो तिल न शंका मान। सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए, आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुभाए। चरण शरण सनाथ एहो मन रंग राते लाल, गोपाल गुण नित गाओ नानक पै प्रभ कृपाल। मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदियां इको अंकार सतगुर प्रसाद। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर।

जागत सूता परम विगूता, बिन गुरु मुक्त ना होई है मीता। साध संग टूटे हो बंधन एको एक निहालिए, कर्म करे ता बंदा ने करे ता निंदा, मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख समझाने, कट कट राम हियालिए। संसार में सहसा व्यापे, अकत कथा अगोचर नहीं जापे, जिसे बुझाए सोई बूझे, वो बालक वांगी पालिए। छोड़ बहे तो छूटे नाही, जो संचय तो पौ मन माही, इस ही में जिसकी पत राखे, तिस साधु चोर टालिए। जो सूरा तिस ही होई मरना, जो पागे तिस जोनी फिरना, जो वरताए सोई पल माने, बुझ हुक्मे दुर्मत जालिए। जित जित लावे तित तित लगना, कर कर वेखे अपने जचना, नानक के पूरन सुख दाते, तू देता नाम समालिए। मारू महला पंजवा, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त उदोत पया उठ चले, ज्यो ज्यो औध विहानिया। पाप करेंदर सर पर मुठे, अजराइल फड़े फड़ कुठे, दो जग पाए सिरजन हारे, लेखा मंगे बाणिया। संग न कोई पया बेबा, माल जोबन तन छोड़ वजे सा, करण करीम ना जातो करता, तिल पीड़े ज्यो कानिया। खुश खुश लेंदा वस्त पराई, वेखे सुने तेरे नाल खुदाई, दुनिया लब पया खात अंदर, अगली गल ना जानिया। जम जम मरे मरे।

अमृत नाम दान नानक को गुण गीता नित वखाणिया मारू सोलहे महला पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद साचा सच सोई अवर न कोई जिन सिर जी तिन ही फुन गोई ज्यों पावे त्यों राखो रहना तुम स्यों क्या मुकराई है आप उपाए आप खपाए आपे सिर सिर तंदे लाए आपे विचारी गुणकारी आपे मार्ग लाई है आपे दाना आपे बीना आपे आप उपाय पतीना आपे पौन पानी बैसंतर आपे मेल मिलाई है आपे सतसूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा काल जाल जम जोहे न साके साचे स्यों लिवलाए।

आपे पवर फुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच कच करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक्से, आपे दे ले पाई है। आपे तनख आपे सरबाना, आपे सुगड़ स्वरूप से आना, कहता बकता सुनता सोई, आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उधर संजोगी धरती माता, रैन दिनस दोयदाई दाया, जग खेल खेलाई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला, सर्व जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी, आपे रसिया परम।

रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना, जोदी सह तुझ माहे समाना, नानक नीच पिखिया दर जाते है, मैं दीजै नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला, आपे तरती तौल आकाशं, आपे साचे गुण प्रगासं, जति सती संतोखी आपे, आपे कार कमाई है।

पंच चोर चंचल चित चाले, पर कर जो है कर नहीं पाले। काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूजे त्रिभुवन सूजे, मनसा मार मने क्यों लूजे। जो तुझ सेवे से तुझ ही जे, निरपव बाल सिखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला, आपे ज्योत स्वरूपी बाला। जटा विकट विकराल स्वरूपी, रूप न रेख्या काई है। वेद कटे भी पेद न जाता, ना किस मात पिता।

कोई न काटे अवगुण मेरे, सुर नर नाथ साहिब सबना सिर, पाए मिले पहु जाई हे, पूले चूके मार्ग पावे, आप पुलाए तू है समझावे, बिन नावे मैं अवर न दिसे, नामो गत मित पाई है, गंगा जमुना केल किदारा, काशी कांती पुरी द्वारा, गंगा सागर बेणी संगम, अठसठ अंक समाई है, आपे सिद्ध साधिक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अगली प्रभ आपे, परम पेर पौ जाई है, आपे काजी आपे मुल्ला, आप अपुल ना कबहू पुल्ला, आपे मेहर दया पत दाता, ना किसे को बैराई है, जिस बख्शे तिस देव डियाई, सबसे दाता तिल ना तमाई, पर पुरतार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है, क्या साला ही अगम अपार है, साचे सिर जनहार मुरार है, जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिले मेल आई है, ब्रह्मा विष्ण महेश द्वार है, उबे सेवे अलख अपार है, होर के ती दर्दी से बिललांदी, मैं गणत ना वै काई है, साची कीरत साची बाणी, होर नदी से वेद पुराणी, पूंजी साच सच्चे गुण गावा, मैं तर होर न काई है, जुग जुग साचा है भी होसी, कौन न मुआ कौन न मरसी, नानक नीच कहे बेनंती, दर देखूं लिवलाई है, मारू महला पहला, दूजी दुर्मत अन्नी बोली, काम क्रोध की कच्ची चोली, कारवार सहज न जाने छोहर, दिन फिर नींद न पाई है, अंतर अगन जले पड़कारे, मन मुख तक के कुंडाचारे, बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाये, साचे हाथ बढ़ाई है, काम क्रोध अंकार निवारे, सत्तर पंच शब्द संगारे, ज्ञान खड़ग ले मन स्यों लूजे, मन सामन है समाई है, माँ की रकत पिता बिंद तारा, मूरत सूरत कर अपारा, जोत दात जेती सब तेरी, तू करता सब ठाई है, तुझ ही किया जमन मरना, गुर ते समझ पड़ी क्या डरना, तू दयाल दया कर देखे, दुख दर्द शरीरों जाई है, निज कर बैस रहे पौ खाया, तावत राखे ठाक रहाया, कमल विगास हरे सर सुबर, आत्म राम सखाई है, मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना पर थाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है, आप उपाया जगत सवाया, जिन सिरिया तिन संदे लाया, सच्चे ऊपर

सच नाम सच्ची वड्याई सच है तखत वड़ाई है। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वरते गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परख है सच है हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुरपूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगे साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत युग साच कहे सब कोई सच वरते साचा सोई मन मुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेतह धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाणे मनमुख पचै अवाई है। मनमुख कदे न दरगे सीजे बिन शब्द क्यों अंतर रीजे बांदे आवे बांदे जावे सो

करम तरम कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न होई, परपंच कर परमाई है। माया ममता चोदी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, एनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावे, जो तुद पावे तिवे चलावे, हठ निग्रह अब तीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में इक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी, मन मुख कूड़ वरते वरतारा, बिन सतगुर परम न जाई है। सतगुर वे परवाह सिरंदा, ना जमकान ना छंदा बंदा, ज्योतिष सेवे सो अविनाशी।

गुरुमुख कोट असंख उधारे, सर्व जिया जग जीवन दाता, निरपव मैल न काई है, सगले जाते गुरु पंडारी, आप निरंजन अलखा पारी, नानक साच कहे प्रभ जाते, मैं दीजे साच रजाई है, मारू महला पहला, साचे मेले शब्द मिलाए, जात पाना सहज समाए, त्रिभुवन ज्योत तरी परमेश्वर, अवर न दूजा

परब न जाए। पच पच मुए अचेत न चेते, अजगर पार लदाई है, बिन बाद विरोध है कोई नाही। मैं दिखा लियो तिस्ता लाही, मन तन अर्प मिले जग जीवन, हर स्यों बनत बनाई है। प्रभ की गत मित कोई न पावे, जे को वड्डा कहाए वडाई खावे। साचे साहिब तोट न दाती, सगली तिन्हे उपाई है। वड्डी वड्याई वे परवाहे, आप उपाए दान समाहे। आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलिया सहज रजाए है। एक सोगी एक रोग व्यापे, जो किछ करे सो आपे आपे। भगत पाओ गुर की मत पूरी, अनहद शब्द लखाई है। एक नांगे भूखे पवे पवाए, एक हट कर मरे ना कीमत पाए। गत अवगत की सार न जाने, बूझे शब्द कमाई है। एक तीरथ नावे अन न खावे, एक अगन जलावे देह खपावे। राम नाम बिन मुक्त न होई, किन विद पार लंगाई है। गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मन मुख राम न जपे आवाई। पच पच बूढ़े कूर कमावे, कूर काल बैराई है। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सो साच कमावे। नानक साच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है। मारू मैला पहला, आपे करता पुरख विदाता। जिन आपे आप उपाय पछाता, आपे सतगुर आपे सेवक। आपे श्रेष्ठ उपाई है, आपे नेड़े नाही दूरे। बूझे गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत एहन सलाहा। गुर संगत ए वडाई है, जुग जुग संत पले प्रभ तेरे। हर गुण गावे रसन रसेरे, पुस्तक करें पर हर दुख दालद। जिन नाही चिंत पराई है, ओए जागत रहे न सूते दिसे। संगत कुल तारे साथ परिसे, कलमल मैल नाही ते निर्मल। ओए रहे भगत लिवलाई है, बूझो हर जन सतगुर बाणी। इह जो बन साथ है देह पुराणी, आज काल मर जाइए प्राणी। हर जप जप हृदय ते आई है, छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा। कूड़ मारे काल उछाहारा, साकत कूड़ पचे मन हो मैं।

सुनाई, मिल सत्संगत नाम सलाहो आत्म राम सखाई है। छोड़ो काम क्रोध बुरे आई, हों मैं तंद छोड़ो लंपटाई। सतगुरु शरण परो ता उबरो, क्यों तरिये पव जल पाई है। आगे बिमल नदी अगन बिखेला, तिथे अवर न कोई जियो इकेला। पड़ पड़ अगन सागर दे लहरी, पड़ दज्जे मनमुख ताई है। गुर पै मुक्त दान दे पाने, जिन पाया सोई बिद जाने।

संगत मुक्त सो पार उतारे, नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिव लाई है, मारू मैला पहला, केते जुग वरते गुबारे, तारी लाई अपर अपारे, तुंदू कार निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा है, जुग छत्ती तिने वरताए, ज्यो तिस पाना तिवे चलाए, तिसे शरीक न दिसे कोई, आपे अपर अपारा है, गुप्ते बूजो जुग तत्वारे, कट कट वरते उदर मजारे, जुग जुग एका एकी वरते, कोई बूजे गुर विचारा है, बिंद रक्त मिल पिंड सरिया, कौन पानी अग्नि मिल गिया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है, गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी, आपे जाने अंतर जामी, सास सास सच नाम समाले, अंतर उदर मजारा है, चार पदार्थ ले जग आया, शिव शक्ति करवा

पर जो बन मर जाए के की जाए, मेरा मेरा कर रोवी जाए, माया कारण रोए विगुचे, त्रिग जीवन संसार आहे, काली हुफुन तोले आए, विणना में गत गया गवाए, दुर्मत अंधला बिनस बिनासे, मुठे रोए पुकारा है, आप विचार न रोवे कोई, सतगुर मिले ता सोजी होई, बिन गुर बजर कपाट न कूले, शब्द मिले निस्तारा है, बिर्द पया तन सीजे देही, राम न जपई अंत स्नेही, नाम विसार चले मुँह काले, दरगे झूठ खुआरा है, नाम विसार चले कूड़ियारो, आवत जात पड़े सिर छारो, सौरड़े कर वास न पाए, पेयड़े सिर मारा है, खाजे पैजे रली करीजे।

पछाने गुर के संग शब्द कर जाने किसी मंदा आँख न चले सच खरा सच आरा है साच बिना दर्श जय न कोई हाथ शब्द कह जय पत होई आपे बख्श ले तिस पावे हों मैं गर्भ निवारा है गुर कृपा ते हुकम पछाने जुगे जुगंतर की विद जाने नानक नाम जपो तर तारी सच तारे तारण हारा है मारू मैला पहला हरसा मीत नाही मैं कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल समाले सो अंतरदाना बीना है गुर सर्वर हम हंस प्यारे सागर में रतन लाल बहु सारे मोती मानक हीरा हर जस गावत मन तन पीना है हर अगम अगाओ अगाध निराला हर अंत न पाये गुर गोपाला सतगुर मत तारे तारण हारा मेल ले रंग लीना है सतगुर बाजो मुक्त किनेही ओ आद जुगादी राम स्नेही दरगे मुक्त करे कर कृपा बक्से अवगुण की नाहे सतगुर दाता मुक्त कराए सब रोग गवाए अमृत रख पाए जम जागात नाही कर लागे।

नाम विसार दोख दुख सही है, हुकुम पया चलना क्यों रही है, नरक कूप में गोते खावे, ज्यो जलते बाहर मीना है, चौरासी नरक साकत पोगाये, जैसा की तै तैसो पाये, सतगुर बाजो मुक्त न होई, केत बांदा ग्रस दीना है, खंडे तार गली अथ पीड़ी, लेखा ली जय तिल जो पीड़ी, मात पिता कलत्र फुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त न कीना है, मीत सके केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त

हर हर नाम वखर ले चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की नाहे। प्रभ बेअंत गुरमुख को पावे, गुर कै शब्द मन को समझावे। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

असुर संहारण राम हमारा, कट कट रमैया राम प्यारा, नाले अलख ना लखिए मूले, गुरुमुख लिख विचारा है। गुरुमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा सब पार उतारी, अगन पानी सागर अत गहरा, गुरु सतगुरु पार उतारा है। मन मुख अंगले सो जी नाही, आवे जाए मरे मर जाही, पूरब लिखिया लेख ना मिटे, जमदर अंध खुआ।

भूख कनेरे नरक पचे अज्ञान अंधेरे कर्म राय की बाकी ली जय दिन हर का नाम विसारा है सूरज तपे अगन बिख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आशा मनसा कूर कमावे रोग बुरा बुरे आ रहा है मस्तक पार कलर सिर पारा क्यों कर पव जल लंगस पारा सतगुरु बोहित आप जुगादी राम नाम निस्तारा है पुत्र कलत्र जग हेत प्यारा माया मोह पसरिया पाफारा जम के फाहे सतगुर तोड़े गुरमुख तत् विचारा है कूड़ मुठी चाले बहुराही मन मुख दाजे पड़ पड़ पाही अमृत नाम गुरु वरदाना नाम जपो सुख सारा है सत गुर तुठा थच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए कंडा पाए ना गडई मूले जिस सतगुर राखन हारा है खेहू खेर ले तन छीजे मन मुख पाखर सैल न पीजे करण पलाव करे बहु तेरे नरक सुर्ग अवतार।

सूकर कई है कूड़ियारा, पौ के मरे पौ पौ पौ हारा, मन तन चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है। सतगुरु मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे, हर जप दरगे प्यारा है।

राम जपो अंतर्गत प्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मुक्त द्वारा है। जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखा फुन आगे। राम नाम जप गुरमुख जीड़े, एहो परम तत्व विचारा है। हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा। एनस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संजम सारा है। राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ए रस कोलो। गुरमत खोज लहो कर अपना, बौड़ना गर्व मजारा है। हच तीरथ नावो हर गुण गावो, तत विचारो हर लिवलावो। अंत काल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है। सत गुरु पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना। जिसको सत गुरु मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है। पंच तत मिल काया कीनी, किस में राम रतन लैचीनी। आत्म राम राम है आत्म, हर पाये शब्द विचारा है। सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सत गुरु शरणाई। आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुरु संगत के हो निस्तारा है। साकत पूर कपट महते का, हैनस निंदा करे अनेका। बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्व जोनी नरक मजारा है। साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबू मुके। बाकी तर्म राय की लीजे, फिर अफरियो पार अफारा है। बिन गुर साकत कहो को तरिया, हो मैं करता पव जल परया। बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिए पार उतारा है। गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई। जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है। गुर ते फूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो। साकत मूड अचेत न चेते, दुख लागे ता राम पुकारा है। सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए। किसको दोष दे तू प्राणी, सो अपना किया करारा है। हों मैं ममता करदा आया, आशा मनसा बंद चलाया। मेरी मेरी कर्क क्या ले चाले, बिखला दे छार बिकारा है। हर की भगत करो जन पाई, अकथ कथो मन मने समाई। उठ चलता ठाक रखो कर अपने, दुख काटे काटन हारा है। हर गुरु पूरे की ओट पराती, गुरमुख हर लिव गुरमुख जाती।

तू समरथ दयाल मुरारी, तेरे चोज न जाने कोई, तू पूरा पुरख विदाता है, तू आद जुगाद करे प्रतपाला, कट कट रूप अनूप दयाला, ज्यों तुद पावे तिवे चलावे, सब तेरो किया कमाता है, अंतर ज्योत पली जग जीवन, सब कट पो गए हर रस पीवन, आपे ले वे आपे दे वे, तिहो लोई जगत पित दाता है, जगत उपाय खेल।

आला कोई गुरमुख बूझे शब्द निराला साकत दुर्मत डूबे दाजे गुर राखे हर लिवराता है अब तेज वाये पृथ्वी आकाशा तिन में पंच तत्व करवासा सतगुर शब्द रहे रंग राता।

मु है कर्म अंदर, इन साकत दूत ना जाता है। दुंदर दूत पूत पी हाले, किंचो तान करें बेताले, शब्द सुरत बिन आ

मन मनसा मार समाता है। सतगुर सेवे से प्रधाना, तिन कट कट अंतर ब्रह्म पचाना। नानक हर जस हर जन की संगत दीजे, जिन सतगुर हर प्रभ जाता है। मारू महला पहला, साचे साहिब सृजन हारे। जिन कर चक्र करे विचारे, आपे करता कर

पखर जिस तन पल्ले शब्द सचे ओ महा है। काची सौदी तोता आवे गुरमुख वणज करे प्रभु पावे पूंजी साबत रात सलामत चूका जम का फाहा है। सबको बोले आपन पाने मन मुख दूजे बोल न जाने अंधले की मत अंधली बोली आए गया दुख ताहा है। दुख में जन्मे दुख में मरना।

डाल छोड़ तत्मूल पराता मनसाचा ओ माहा है। हर के लोग नहीं जम मारे ना दुख देखे पंथ करारे, राम नाम कथ अंतर पूजा और न दूजा कहा है, ओढ़ न कथने सिफ सजा।

नानक साथ मिले पत राखो तू सिर साहा पातशाह है मारू मैला पहला दखनी काया नगर नगर गर अंदर साचा वासा पुर गगन अंदर अस्थिर थान सदा निर्माइल आपे आप उपाएंदा अंदर कोट छजे हट नाले आपे ले वे वस समाले बजर कपाट जड़े जल जाने गुर सब्दी खोलाएंदा पीतर कोट गुफा कर जाई नौ कर खापे हुक्म रजाई दसने पुरख अलेख अपारी आपे अलख लखाएंदा पौन पानी अग्नि इक वासा आपे की तो खेल तमाशा बल्दी जल निवरै कृपा ते आपे जल निद पाएंदा तर्क उपाय तरी धर्मशाला उत्पत पर लो आप निराला पवने खेल किया सब खाई कला खिंच टहाएंदा तार अठारह मालन तेरी चौर तुले पवने ले फेरी चंद सूरज दो दीपक राखे सत कर सूर समाएंदा पंखी पंच उडर नहीं तावे सफल्यो बिरख अमृत फल पावे गुरमुख सहज रवे गुण गावे हर रस चोग चुगाएंदा तिल मिल तिल के चंद न तारा सूरज किरण न बिजल गैनारा अकथी कथो चेन नहीं कोई पूर रहा मन पाएंदा पसरी किरण जोत उजियाला कर कर देखे आप दयाला अनहद रुण चुनकार सदा सुन निरपो के करवाएदा अनहद वाजे परम पौ पाजे सगल व्याप रहा प्रभ छाजे सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएदा आप निरंजन निर्मल सोई अवर न जाना दूजा कोई एक अंकार वसे मन पावे।

कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे, रे परवाह अखुट पंडार है, तू दयाल कृपाल सदा प्रभ, आपे मेल मिलाएंदा, आपे देख दिखावे आपे, आपे थाप उठापे आपे, आपे जोर विछोड़े करता, आपे मार जीवाएंदा, जेती है तेती तुद अंदर, देखे आप बैठ बिज मंदर, नानक साच कह बेनंती, हर दर्शन सुख पाएंदा, मारू महला पहला दर्शन।

जो किस करे सो आपन पाने, लख चौरासी जी उपाय पाने सहलवाएंदा, जो तिस पावे सो नेचो होवे, मन मुख आप गनाए रोवे, नामो पुल्ला ठौर न पाए, आए जाए दुख पाएंदा, निर्मल काया उजल हंसा, तिस विच नाम निरंजन अंसा, सगले दुख अमृत कर पीवे, बहुर दुख न पाएंदा, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, ओगो रोग सो अंत विगोवे, हरखो सोग न मिटई कभू, बिन पाने परमाएंदा, ज्ञान विहूनी पवे सभाई, साचा रव रहा लिव लाई, निरपौ शब्द गुरु सच जाता, ज्योति ज्योत मिलाएंदा, अटल अडोल अतोल मुरारे, किन में चाहे फिर उसारे, रूप न रेखिया मृत नहीं कीमत, शब्द पेद पति आएंदा, हम दासन के दास प्यारे, साधक साच पले विचारे, मन्ने नाओ सोई जिन जासी, आपके साथ बिड़ाएंदा, पल्ले साच सचे सच्यारा, साचे पावे शब्द प्यारा, त्रिभवन साच कला तर थापी, साचे ही पति आएंदा, वड्डा वड्डा आखे सब कोई, गुरु बिन सो जी किने न होई, साच मिले सो साचे पाए, ना विछड़ दुख पाएंदा, कुरों विचुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन में मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस दे वड्याई, मेल न पछोताएंदा, आपे करता आपे पुगता, आपे तृप्ता आपे मुक्ता, आपे मुक्त दान मुक्ति सर।

नानक साच कह बेनंती, मिल साचे सुख पाएंदा मारू महला पहला, अरबद नरबद तुंदू कारा, तरन ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी, ओ पत खपत ना आवन जानी, खंड पताल सपत नहीं सागर, नदी ना नीर वहाएंदा ना तद सुरग मच पयाला, दोजक पेत नहीं।

नहीं जात ना जन्मा ना सो दुख सुख पाएगा ना तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम पेख ना कोई ना को नाथ कहाएगा जप तप संयम ना व्रत पूजा ना को आख वखाने दूजा आपे आप उपाय विगसे आपे कीमत पाएगा ना सुच संजम तुलसी माला गोपी कान न गौ गुआला संत मंत पखंड न कोई ना को वंश बजाएदा कर्म तर्म नहीं माया माखी जात जन्म नहीं दिसे आखी ममता जाल काल नहीं माथे ना को किसे त्याएदा निंद बिंद नहीं जियो न जिंदो ना तद गोरख ना माचिंदो ना तद ज्ञान ध्यान कुल ओपत ना को गणत गणाएदा वरन पेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव ना देहोरा।

ना को शेख मसाए कहा जी रैयत राव ना हो मैं दुनिया ना को कहन कहाएंदा पाओ ना पगती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती आपे साओ आपे वनजारा साचे एवो पाएंदा वेद कतेब ना सिमरत शास्त्र पाठ पुराण उदय नहीं आस्त कहता बक्ता आप अगोचर आपे अलख लखाएंदा जात पाना ता जगत उपाया बाज कला आदान रहाया ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए माया मोह वधाएंदा विरले को गुर शब्द सुनाया कर कर देखे हुक्म सवाया खंड ब्रह्मा

नानक साच रते बिस्मादी। बिस्म पए गुण गाएंदा मारू मैला पहला, आपे आप उपाय निराला, साचा थान कियो दयाला। कौन पानी अग्नि का बंधन काया, कोट रचाएंदा नौ कर खापे खापन हारे, दसवें वासा अलख अपार है। सायर सप्त परे जल निर्मल, गुरमुख मैल न लाएंदा। रव सच दीपक जोत सबाई, आपे कर वेखे वड्याई। जोत स्वरूप सदा सुखदाता, सच्चे शोभा पाएंदा। गर मह हाट पटन वापा।

पूरे पंडार है, सर्व कला ले आपे रहया गुरमुख किसे बुझाएंदा। नदर करे पूरा गुर पेटे, जम जम धार न मारे फेटे, जो जल अंतर कमल बिगासी आपे बिरसते आएंदा। आपे वर्ख है अमृत तारा, रतन जवे हर लाल अपारा, सतगुर मिले ता पूरा पाये, प्रेम पदार्थ पाएंदा। प्रेम पदार्थ ले अमोलो, कभी न काटस पूरा तोलो, सच्चे का व्यापारी होवे सच्चो सौदा पाएंदा। सच्चा सौदा बिरला को पाए, पूरा सतगुरु हृदय मिलाए। गुरमुख होए सो हुकम पछाने, माने हुकम समाएदा। हुक्मे आया हुक्म समाया, हुक्मे दीसे जगत उपाया, हुक्मे सुर्ग मच पयाला, हुक्मे कला रहाएदा। हुक्मे तरती तौल सिर पारंग, हुक्मे पौन पानी गैनारंग, हुक्मे शिव शक्ति करवासा, हुक्मे खेल खिलाएदा। हुक्मे आडाने आगासी, हुक्मे जल फल त्रिभुवनवासी, हुक्मे सास गिरा सदा फुन, हुक्मे देख दिखाएदा। हुक्म उपाय दस अवतारा, देव दानव अगणत अपारा, माने हुक्म सो दरगह पै जाए, साथ मिलाए समाएदा। हुक्मे जुग शक्ति गुदारे, हुक्मे सिद्ध साधक विचारे, आप नाथ नथी सब जाकी, बख्शे मुक्त कराएदा। काया कोट करे महराजा, नेब खवास पला दरवाजा, मिथ्या लोभ नाही करवासा, लब पाप पछताएदा। सत संतोख नगर में कारी, जत तत संयम शरण मुरारी, नानक सहज मिले जग जीवन, गुर सबदी पत पाएदा। मारू महला पहला, सुन कला अपरंपर तारी, आप निरालम अपर अपारी, आपे कुदरत कर कर देखे, सुनो सुन उपाएदा। कौन पानी सुने के साजे, श्रेष्ठ उपाय काया गढ़ राजे, अग्न पानी जियो ज्योत कुमारी, सुनने कला रहाएदा। सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय, सुनने वर्ते जुग सवाए, इस पद विचारे सो जन पूरा, इस मिलिए परम चुकाएदा। सुनो सपत सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे, तित सत्सर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बहुड़ जोन ना पाएदा। सुनो चंद सूरज गैनारे, किसकी ज्योत त्रिभुवन सारे, सुनने अलख अपार निरालम, सुनने ताड़ी लाएदा। सुनो तरत आकाश उपाए, बिन थम्मा राखे सच काल पाए, त्रिभुवन साज में खुली माया, आप उपाय खपाएदा। सुनो खाणी सुनो बाणी, सुनो उपजी सुन समाणी, कुछ कुछ चलत किया सिर करते, विस्माद शब्द देखाएदा। सुनो रात दिन सदोय किए, ओ पत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर अतीता, गुरमुख निज कर पाएदा। साम वेद ऋग जुजर असर बन, ब्रह्मे मुख माया है त्रै गुण, ताकी कीमत कह न सके को, त्यों बोले ज्यों बोलाएंदा। सुनो सपत पताल उपाय, सुनो पवन रखे लिवलाए, आपे कारण किया परंपर, सब तेरो किया कमाएंदा। राज्य तम सत कल तेरी छाया, जन्म मरण हो मैं दुख पाया, जिसनो कृपा करे हर गुरमुख, गुण चौथे मुक्त कराएंदा। सुनो उपजे दस अवतारा, श्रेष्ठ उपाय किया पासारा, देव दानव गण गंधर्व साजे, सब लिखिया कर्म कमाएदा। गुरमुख समझे रोग न होई, हे गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुग है जुगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त पया पत पाएदा। पंच तत् सुनो परिगासा, दे संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा पला दोई मस्तक लीके, पाप पुन भी जाएदा। उत्तम सतगुर पुरख निराले, शब्द रते हर रसमत वाले, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये, पूरे पाग मिलाएंदा। इस मन माया को न्यो कनेरा, कोई बूझो ज्ञानी करो निवेरा, आशा मनसा हो।

अंदर जुगत समाई रहो निरालम राया जग तिस की छाया जिस बाप न माया ना तिस पैन ना प्राव कमाया ना तिस ओपत खपत कुल जाती ओ अजरावर मन पाया तू अकाल पुरख नाही सिर काला तू पुरख अलेख अगम निराला सत संतोख शब्द अतीतल सहज पाए लिवलाया त्रैवरताए चौथे करवासा काल विकाल किए इक ग्रासा निर्मल ज्योत सब जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत पले हर प्यारे हर रस माते पार उतारे नानक रेण संत जन संगत हर गुर प्रसादी पाया तू अंतर जामी जी सब तेरे।

पाया, पंच तत् मिल ए तनसिया, आत्म राम पाए सुखतिया, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया, ना तिस भूख प्यास मन मान्या, सर्व निरंजन कट कट जान्या, अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुवाया, अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती, सब दिर साल रसन रस रसना, बेन रसाल बजाया, बेन रसाल बजावे सोई, जाकी त्रिभुवन सोजी होई, नानक बूजो ए विद गुरमत, हर राम नाम लिवलाया, ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारे रहे निरारे, आप तरह संगत कुल तारे, तिन सफल जन्म जंग

कथ में पुरख अतीत निराला आपे अलख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुकुम चलाए सच निशाना नानक खोज लहो कर अपना हर आत्म राम नाम पाया। सर्व निरंजन पुरुष सुजाना अगल करे गुरु ज्ञान समाना काम क्रोध ले गर्दन मारे हों मैं लोभ चुकाया सच्चे थान वसै निरंकारा आप पछाने सब विचारा सच्चे महल निवास निरंतर आवन जान चुकाया ना मन चले न पौन उड़ावे योगी शब्द अनाहद वावे पंच शब्द चुनकार निरालम प्रभ आपे वाय सुनाया सौ बैरागा सहज समाता हो मैं त्यागी अनहद राता अंजन सार निरंजन जाने सर्व निरंजन राया दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी रोग कटे साथी जम फासी नानक हर प्रभ सो पौ पंजन गुर मिले हर प्रभ पाया काले कवल निरंजन जाने बूझे कर्म सो शब्द पछाने आपे जाने आप पछाने सब किसका चोट सवाया आपे साव आपे वनजारा आपे परखे परखनहारा आपे कस कसवटी लाए आपे कीमत पाया आप दयाल दया प्रवतारी कट कट रव रहा बनवारी पुरख अतीत वसै ने केवल गुरु पुरख है पुरख मिलाया सब दाना बीना गर्भ गवाए दूजा मेटे एक दिखाए आशा माए निरालम जोनी अकल निरंजन गाया हों मैं मेट शब्द सुख होई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत्संगत सच फल पाया मारू मैला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरो पव जल जग तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुल्हा मन हर जप पार लंगाया हों मैं ममता लोभ विनाशन नौ दर मुक्ते दसवें आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिन आपे आप उपाया गुरमत ले वो हर लिव करिए अकल गाए जमते क्या डरिए जत जत देखो तत तत तुम ही अवर ना दुतिया गाया सच हर नाम सच है सरना सच गुर शब्द जिते लग तरना अकत कठ है देख है अपरंपर सुन गर्व ना जो नी जाया सच बिन सत्संतोख ना पावे बिन गुरु मुक्त ना आवे जावे मूल मंत्र हर नाम रसायन कहो नानक पूरा पाया सच बिन पाव जल जाए न तरिया एहो समुद्र अथा मां बिक परिया रह अतीत गुरमत ले ऊपर हर निरपो कै कर पाया झूठी जग हित की चतराई बिलम न लागे आवे जाई नाम विसार चले अभिमानी उपजे बिन खपाया उपजे बिन से बंधन बंदे हो मैं माया के गल फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जमपुर बंद चलाया गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाये बिन गुरु राम नाम क्यों त्याये गुरमत लेहो तरो पग दुतर मुक्त पहे सुख पाया गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे गुरमत सायर पाहन तारे गुरमत लेहो परम पद पाये नानक गुर परम चुकाया गुरमत लेहो तरो सच तारी आत्म चीनो हृदय मुरारी जम के साए काटे हर जप अकल निरंजन पाया गुरमत पंच सखे गुर पाई गुरमत अगन निवार समाई मनमुख नाम जपो जग जीवन हृद अंतर अलख लखाया गुरमुख बूझे शब्द पति जय उस्तक निंदा किसकी की जय चीनो आप जपो जगदीशर हर जगन्नाथ मन पाया जो ब्रह्मंड खंड सो जानो गुरमुख बूझो शब्द पछाणो कट कट पोगे पोगन हारा रह अतीत सवाया गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा श्रवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंगाया मारू मेला पहला काम क्रोध पर हर पर निंदा लब लोभ तज हो निचिंदा क्रम का संगल तोड़ निराला हर अंतर हर रस पाया नित दामन जो चमक चंदायन देखे
कैनस ज्योत निरंतर पेख है, आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुरपुर देखाया। सतगुरु मिलो आपे प्रभ तारे, सत कर सूर दीपक गहनारे, देख अदिष्ट रहो लिव लागी, सब त्रिभवन ब्रह्म सबाया। अमृत रस पाए तृष्णा पौ जाए, अनपौ पद पावे आप गवाए, ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा। अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग हर जस दीजै, हर जपिए अंत न पाया, अंतर नाम प्राप्त हीरा, हर जपते मन मन से तीरा, दुकट कट पौ पंजन पाइए, बाहुर जन्म न जाया, भगत हेत गुर सब तरंगा, हर जप नाम पदार्थ मंगा, हर पावे गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सवाया, जिन जप जपियो सतगुर मत वाके, जम कंकर काल सेवक पगता के, उत्तम संगत गत मित उत्तम, जग पौजल पार कराया, ए पौजल जगत शब्द गुर तरिये, अंतर की दुबदा अंतर जरिये, पंच बाण ले जम को मारे, गगन अंतर तनख चढ़ाया, साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये, शब्द सुरत बिन आये जाये, नानक गुरमुख मुक्त परायण, हर पूरे पाग मिलाया, निरपौ सतगुर है रखवाला, भगत परापत गुरु गोपाला, तुन आनंद अनाहद वाजे, गुर शब्द निरंजन पाया, निरपौ सो सिर नाही लेखा, आप अलेख कुदरत है देखा, आप अतीत अजोनी संभो, नानक गुरमत सो पाया। अंतर की जब सतगुरु जाने, सो निरपौ गुर शब्द पछाने, अंतर देख निरंतर बूझे, अंत न मन डोलाया, निरपौ सो अब अंतर वसया, एनस नाम निरंजन रसया, नानक हर जब संगत पाये, हर सहजे सहज मिलाया। अंतर बार सो प्रभ जाने, रह अलिप्त चलते कर आने, ऊपर आद सर्ब तिहु लोई, सच नानक अमृत रस पाया, मारू मैला पहला, कुदरत करने हार अपारा, कीते का नाही क्यों चारा, जी उपाय रिजक दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहा पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे, गुप्त प्रगट हर कट कट देखो, वर्ते काक सबाया, जिसको मेले सुर समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाई चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मिलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेवो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर के, हर दर जय जस गाया, सत गुर मिले ता महल बुलाए, साची दर गए गत पत पाए, साकत ठोर नाई हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवो सतगुर समुंद अथाहा, पावो नाम रतन तन लाहा, विख्या मल जाए अमृत सरनावो, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेवो संत न की जय, आशा माहे निराश रही जय, संसार दुख बिना सन सेवो, फिर बहुर रोग न लाया, साचे पावे तिस वडियाए, कौन सो दूजा तिस समझाए, हर गुर मूरत एका वर्ते, नानक हर गुर पाया, वाचे पुस्तक वेद पुराना, इक बह सुने सुनावे काना, अजदर कपट कहो क्यों खुले, बिन सतगुर तत न पाया, करे विपूत लगावे पस में, अंतर क्रोध चंडाल सोहो में, पखंड की ने जोग न पाये, बिन सतगुर अलख न पाया, तीरथ वर्त नेम करे उद्याना, जत सत संजम कथे ज्ञाना, राम नाम बिन क्यों सुख पाये, बिन सतगुर परम न जाया, न्योली करम प्रियंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मनहाठी, पखंड तरम प्रीत नहीं।

नानक दास कहे बेनंती, पीठिया नाम दर पाई है मारू महला तीजा, एको एक वर्त है सब सोई, गुरमुख गिरला बूझे कोई, एको रव रहा सब अंतर, तिस दिन अवर न कोई है, लख चौरासी जी उपाय, ज्ञानी चानी आज सुनाए, सबना रिजक समाए आते, कीमत होर न होई है, माया मोह अंध अंधारा, हौ मैं मेरा पसरिया पासारा, अंदिन जलत रहे दिन राती, गुर बिन शांत न होई है, आपे जोड़ विछोड़े आपे, आपे थाप उठापे आपे, सच्चा हुक्म सच्चा पासारा, होरन हुक्म ना होई है, आपे लाए ले सो लागे, गुर प्रसादी जम का पौ पागे, अंतर सबद सदा सुख दाता, गुरमुख बूझे कोई है, आपे मेले मेल मिलाए, पूर्व लिखिया को मेटना ना जाए, आम दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है, सतगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आए मिलिया सबना का।

पूजै अंग दिन नाम रवै दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है मन मुक्तात दूजै है लागा जन्मत की नाम वो अपागा आवत जात बिरसा जन्म गवाया बिन गुरु मुक्त ना होई है काया कुसुद हो मैं मल लाई।

संगारे मरमरजम में शब्द ना विचारे अंतर माया मोह गुबारा जो सुपने शुद्ध ना होई है। एक पंचा मार शब्द है लागे सतगुर आए मिलियावट पागे अंतर साथ रहे रंग राते सहज समावे सोई है। गुर की चाल गुरु ते जापे पूरा सेवक शब्द जापे सदा शब्द रवे कट अंतर रसना रस चाखे सच सोई है। हम मैं मारे शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे एक बिन हों होर ना जाना सहजे होए सो होई है। बिन सतगुरु सहज किने नहीं पाया गुरमुख बूझे सत समाया सच्चा सेव शब्द सच राते हों मैं शब्दे खोई है। आपे गुण

साचे ते पत होई हे। मारू मैला तीजा जग जीवन साचा एको दाता। गुर सेवा से शब्द पछाता एको अमर एका पत साही। जुग जुग सिरकार बनाई है सोजन निर्मल जिन आप पछाता। आपे आए मिलिया सुखदाता रसना शब्द रसी गुण गावे। दर्शा चै पत पाई है गुरमुख नाम मिले वड्याई। मन मुख निंदक पत

आचा मन पीवे पाए सुवाई है। पर पंडित अवरा समझाए पर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुरु से वे नाम न पाए, परखा के साथ न आई है। एक पसम लगाए फिरे पेक तारी, बिन शब्द हूँ मैं किन मारी, हम दिन जलत रहे दिन राती, परम पेक परमाई है। एक ग्रे कुटुम्ब में सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी, हम दिन सदा रहे रंग राते, तह पाए भगत चित लाई है। मन मुख निंदा कर कर विगुता, अंतर लोभ पहुँके जिस कुत्ता, जम काल तिस कदे न छोड़े, अंत गया पछताई है। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नाम है मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बंत बनाई है। एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी, एक एनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है। स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सो लूझे, साचे शब्द रते करंगी, साचे शब्द मिलाई है। आपे सिरजे दे वड्याई, आपे पाने दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभु क्यों फुरमाई है। सतगुरु सेवे से जन साचे, मन मुख सेव ना जानन काचे, आपे करता कर कर वेख है, जो पावे त्यों लाई है। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे पाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से विछड़े नाही, नदरी सहज मिलाई है। हूँ मैं माया मैल कमाया, मर मर जम मैं दूजा पाया, बिन सतगुरु सेवे मुक्त न होई, मन देखो लिव लाई है। जो तिस पावे सोई करसी, आपो हुआ ना किछ होसी।

मुझे छीने शब्द अविनाशी है। काम क्रोध परे हम अपराधी, क्या मुँह ले बोले ना हम गुण ना सेवा सादी। डूबदे पात्र मेल ले हो तुम, आपके साथ नाम अविनाशी है। ना कोई करे न करने जोगा, आपे करे करावे तो होएगा। आपे बख्श ले सुख पाए, सभी नाम निवासी है। कीर्तन तरती शब्द बीज अपारा, हर साचे सेती वन जब अपारा। सच तन जमया कोट न आवे, अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगणिया रे नो गुण की जय, आपे बख्श ले नाम दी जय। गुरमुख होवे सो पद पाए, इकत नाम निवासी है। अंतर हर तन समझ न होई, गुर प्रसादी बूझे कोई। गुरमुख होवे सो तन पाए, सभी नाम निवासी है। अनलवाओ परम फुलाई, माया मो शुद्ध न काई। मनमुख अंधे किछु न सूझे, गुरमत नाम प्रगासी है। मनमुख हो मैं माया सूते, अपना कर न संभाले अंत विगूते। पर निंदा करें बहु चिंता जाले, दुखे दुख निवासी है। आपे करते कार कराई, आपे गुरमुख देव बुझाई। नानक नाम रते।

गुर कै शब्द सदा जन सो है, नाम रसायन इव मन मोह है, माया मोह मैल पतंग ना लागे, गुरमति हर नाम पी जय है, सब नाम विच वरते एक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, हौ मैं मार सदा सुख पाया, नाय साचे अमृत पी जय है, किलविक दुख निवारण हारा, गुरमुख सेविया शब्द विचारा, सब किश आपे आप वरते, गुरमुख तन मन पी जय है, माया अगन जले संसारे, गुरमुख निवारे शब्द विचारे, अंतर सांत सदा सुख पाया, गुरमति नाम ली जय है, इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे, जमना छोड़े बहु कर्म कमावे, सतगुरु पेटे ता मुक्त पाये, हर हर रसना पी जय हे, मनमुख अंतर पगत न होई, गुरमुख पगत शांत सुख होई, पवित्र पावन सदा है बाणी, गुरमत अंतर पी जय हे, ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी, त्रैगुण बद्धक मुक्त निरारी, गुरमुख ज्ञान एको है जाता, अंदिन नाम रवि जय हे, वेद पढ़े हर नाम न बूझे, माया कारण पर पढ़ लूजे, अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर तरी जय हे, वेद बाद सब आँख वखाने, ना अंतर पीजे ना शब्द पछाने, पुन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरमुख अमृत पी जय हे, आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक नाम रते मन साचा, सच्चो सच रवि जय हे, मारू मैला तीजा, सच्चे सच्चा तख्त रचाया, निज कर वस्या तिथे मोह न माया, सद ही साच वस्या कट अंतर, गुरमुख करनी सारी है, सच्चा सौदा सच वापारा, ना तिथे परम ना दूजा पसारा, सच्चा तन खटिया कदे तोट न आवे, बूझे कोई चारी है, सच्चे लाए से जन लागे, अंतर शब्द मस्तक वड पागे, सच्चे शब्द सदा

गुरमत ऊंचो ऊंची पौड़ी ज्ञान रतन हूं मैं मारी है। माया मोह शब्द जलाया सच मन वस्या जा सुध पाया। सच्चे की सब सच्ची करनी हूं मैं सिखाने वारी है। माया मोह सब आपे कीना गुरमुख विरले किन्ही चीना। गुरमुख वो वै सो सच कमावे साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभु पाई हूं मैं तृष्णा शब्द बुझाई। गुरमत सद ही अंतर शीतल हूं मैं मार निवारी है। सच लगे तिन सब किस पावे सच्चे शब्दे सच सुहावे। ऐसे साचे से दर साचे नगरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सवाया। बिन गुर दुख सुख जाते नाही माया मोह दुख पारी है। साचा शब्द जिना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया। सच्चो सेवे सच त्यावे सच रते विचारी है। गुर की सेवा मीठी लागी अन दिन सुख सहज समाधि। हर हर करत्या मन निर्मल होवा गुर की सेव प्यारी है। से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए आपे पाने आप मिलाए। सतगुर राखे से जन उभरे होर माया मोह खुआरी है। गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कुटुंब ना तिस माता। एको एक रविया सब अंतर सब ना जिया का आधारी है। हूं मैं मेरा दूजा पाया किछ ना चले तुर खत्म लिख पाया।

तीजा आपे आप उपाय उपन्ना सब में वर्ते एक प्रछन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय फिर सिर संदे आपे लाए जिस पावे तिस आपे मेले जिन गुरुमुख एक हो जाता है आवा गौण है संसारा माया मोह बहुचित है विकारा फिर साचा साला ही सदही जिन गुरु का शब्द पछाता है एक मूल लगे ओनी सुख पाया डाली लागे तिन्नी जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को लागे जो बोले अमृत

गुण में एक को निर्मल साचा, गुर कह शब्द पछाता है, जह देखा तह एक को सोई, दूजी दुर्मत सब देखोई, एक प्रभ एक समाना, अपने रंग सदराता है।

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एक हो जाता है, मनमुख कार करे सब दुख सबाए, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाए, गुरमुख शब्द वसे मन साचा, सद से वे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी थाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम त्याय सदा सद, ए मन ना मेरा ता है, ना मेरा ता पवित्र शरीरा, बिन नामे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, इतना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुरु बूझ बुझाई, बिन नामे मुक्त किने ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साज सलाहे साज समावे, जिन गुरमुख एक

दर सात चै सात पछाता है मारू सो लेती जा। आपे करता सब जिस करना जी जंक सब तेरी सरना। आपे गुप्त वर्ते सब अंतर गुर कै शब्द पछाता है। हर के भगत परे पंडारा आपे

माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मति पछाता है, पाप पुनवर्ते संसारा, हर्ष सोग सब दुख है पारा, गुरुमुख हो वह सो सुख पाए, जिन गुरुमुख नाम पछाता है, कीर्तना कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मोख द्वारा, पूरब लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोह हर क्यों चितना लागे, दूजे पाए कणा दुख आगे, मनमुख परम पुले पेख सारी, अंत काल पछताता है, हर कै पाने हर गुण गाए, सब किलबिख काटे दुख सवाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर तेती मन गाता है, जिसनो नजर करे सो गुण निद गाए, हों मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण का एको दाता, गुरुमुख विरली जाता है, मेरा प्रभु निर्मल अत अपारा, आपे मेले गुर शब्द विचारा, आपे बक्से सच दृढ़ाए, मन तन साचे राता है, मन तन मेला विच जोत अपारा, गुरमत बूझे कर विचारा, हों मैं मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुख दाता है, गर काया अंदर बहु हट बजारा, तिस विच नाम है अत अपारा, गुर कै शब्द सदा दर्शो है, हों मैं मार पछाता है, रतन अमोलक अगम अपारा, कीमत कवन करे बेचारा, गुर कै शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता है, सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पथरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द न बूझे, गुरमुख विरले जाता है, आपे करता करे कराए, सच्ची बाणी सच दृढ़ाए, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाता है, मारू महला तीजा, हो सच सेवियो सृजन हारा, सबदे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, आपे अगम अथाहा है, आपे सच्चा सत वर्ताए, एक जन सच है आपे लाए, साचो सेवै साच कमावे, नामे सच समाहा है, तुर पगता मेले आप मिलाए, सच्ची पगती आपे लाए, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्मे का लाहा है, गुरमुख वणज करें पर आप पछाणे, एक बिन को अवर न जाने, सच्चा साव सच्चे वन जारे, पूंजी नाम विसाहा है, आपे साजे सृष्ट उपाए, विरले को गुर शब्द बुझाए, सतगुर सेवे से जन साचे, काटे जम का फाहा है, पन्ने करे सवारे साजे, माया मोह दूजे जंत पाजे, मन मुख फिरे सदा अंध कमावे, जम का जेवड़ा गल फाहा है, आपे बख्शे गुर सेवा लाए, गुरमती नाम मन वसाए, अंदिर नाम त्याए साचा, इस जग में नामो लाहा है, आपे सच्चा सच्ची नाई, गुरमुख देवे मन वसाई, जिन मन वस्या से जन सो है, तिन सिर चूका कहा है, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुर प्रसादी मन वसाई, सदा शब्द सलाही गुण दाता, लेखा कोई न मंगे ताहा है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा, अंत न पावे अलख वेवा, जिनको नजर करे तू अपनी, गुरमुख अलख लखाहा है, पूरे सतगुर सो जी पाई, एको नाम मन वसाई, नाम जपी तै नाम त्याई, महल पाए गुण गाहा है, सेवक सेवे मन हुक्म अपारा, मन मुख हुक्म न जाने सारा, हुक्मे मन्ने हुक्मे वड्याई, हुक्मे वे परवाहा है, गुर प्रसादी हुक्म पछाने, तावत राखे इक

सबद सलाह है से जन निर्मल निज करवा सा ताहा है। सदा भगत तेरी शरणाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे गुरुमुख।

सच देवो सच समाहा हे मारू मैला तीजा सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन सात नाम लिव लागी सदा सुख दाता रव्या कत अंतर शब्द सच्चा ओ माहा हे नदर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए हर मन वस्या सदा सुख दाता सबदे मन ओ माहा हे कृपा करे ता मेल मिलाए हो मैं ममता शब्द जलाए सदा मुक्त रह इक रंगी नाही किसे नाल कहा है बिन सतगुरु सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्द लाहा है दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वर्ताया गुरमुख होवे सो अलिप्तो वर्ते मन मुख का क्या बेसाहा है से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के तय की सार न जाने तै बिन क्यों निरपो सच पाये जम काड लेगा सहा है अप्रियो जम मारिया ना जाई गुर के शब्दे नेड़ ना आई शब्द सुने ता दूरों पागे मत मारे हर जियो वे परवाह है हर जियो की है सब फिरकारा एहो जम क्या करे विचारा हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कटदा सहा है गुरमुख साचे किया आकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा गुरमुख होवे सो सच बूझे शब्द सच्चे सुख ताहा है गुरमुख जाता कर्म विधाता जुगचारे गुर शब्द पछाता गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा है गुरमुख नाम शब्द साला है।

गुरुमुख हो वह सो नाम बूझे काटे दुर्मत पाहा है। गुरुमुख उपजे साज समावे ना मर जमे ना जूनी पावे गुरुमुख सदा रहे रंग राते अन दिन लेन दे लाहा है। गुरुमुख भगत सोहे दरबारे सच्ची बाणी सब सवारे अन दिन गुण गावे दिन राती सह छेती कर जाहा है। सतगुर पूरा

सच्चे सबद सदा गुण गाए, गुण दाता वरते सब अंतर, सिर सिर लिखदा साहा है, सदा हदूर गुरमुख जाते, सब देशे वैसो जंत्रा।

को वर्ते और न बिया गुरु प्रसादी आप पछाने कमल विकसे बुद्ध कहा है अपनी गहन गत आपे जाने और लोग सुन सुन आख वखाने ज्ञानी होवे सो गुरमुख बूझे साची सिर्फ सलाह है देही अंदर वस्त अपारा आपे कपट खुलावन।

खोजे सब सलाहे बाहर काहे जाहा है। विण चाखे साध किसे ना आया, गुर कै शब्द अमृत आया। अमृत अमरा पद होए, गुर कै शब्द रस पाहा है। आप पछाने सो सब गुण जाने, गुर कै शब्द हर नाम वखाने। हम दिन नाम

मनमुख फूला ठौर न पाए। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाए, बिख्या राते बिख्या खोजे, मर्जन में दुख ताहा है। आपे आप आसाला है, तेरे गुण प्रभ तुझी माहे। तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे अलख अथाहा है। बिन गुरदाते कोई न पाए, लख कोटी जे कर्म कमाए। गुर कृपा ते तत अंतर वस्या, सब दे सच सलाहा है। से जन मिले तुर आप मिलाए, साची बाणी सब सुहाए।

पूरे गुर ते सो जी होई, हर रस पीने सदा ते आयन, गुरमुख शील सनाहा है, अंदर रंग सदा प्यारा, गुर कै शब्द हर नाम प्यारा, नौ निध नाम वस्या सठ अंतर, छोड़िया माया काला है, रईयत राजे दुर्मत दोई, बिन सतगुर सेवे एक न होई, एक त्यायन सदा सुख पायन, नेचल राज तिनाहा है, आमन जाना रखे न कोई, जम्मन मरण तिसहते होई, गुरमुख साचा सदा त्याहो, गत मुक्त तिसहते पाहा है, सच संजम सा

हौ मैं मोह उपजय संसारा, सब जग बिन सह नाम विसारा, बिन सतगुर सेवे नाम न पाये, नाम सच्चा जग लाहा है, सच्चा अमर सब तुहाया, पंच शब्द मिलवा जावाया।

सच्चो सत वखाणे गुरमुख सत सेवै सच्चो सच्चा गुरमुख सबद सुनाएदा गुरमुख होवे सो जी पाए हों मैं माया परम गवाए गुर की पौड़ी उत्तम ऊची दर सच्चे हर गुण गाएदा गुरमुख सच संजम करनी सार गुरमुख पाए मोख द्वार पाए भगत सदा रंग राता आप गवाए समाएदा गुरमुख होवे मन खोज सुनाए सच्चे नाम सदा लिवलाए जो तिस पावे सोई करसी जो सच्चे मन पाएदा जा तिस पावे सतगुरु मिलाए जा तिस पावे ता मन वसाए अपने पाणे सदा रंग

गुरुमुख होवे सो सुख कमाए, मरण जीवन की सो जी पाए। मरण जीवन जो समकर जाने सो मेरे प्रभ पाएंदा।

मारू महला तीजा आपे श्रेष्ठ हुकुम सब साजी आपे साफ उसाप निवाजी आपे न्याऊ करे सब साचा साचे साथ मिलाएंदा काया कोट है आकार।

जिस अंतर पवे अंतर नहीं पाले, माया मोह बद्दा जम काले, जम की फांसी कब होना टूटे, दूजे पाए परमाए दा, जब तब संजम होर कोई नाही, जब लग गुर का शब्द ना कमाही, गुर के शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाए दा, काम क्रोध सबल संसारा, बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा, सतगुर सेवे से सुख पावे, सच्चे शब्द मिलाए दा, पौन पानी है बेसंतर, माया मोह वर्त है सब अंतर, जिनकी ते जांच से पछाने, माया मोह चुकाएं दा, एक माया मोह गर्भ

अच नाम सितलाएंदा मारू महला तीजा आद जुगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पछाता सुदनो सेवे से तुझे समावे तू आपे मेल मिलाएंदा अगम अगोचर कीमत।

मत देह सो होवे तू आपे शब्द बुझाएंदा आन दिन आर जा छिजदी जाए रैन दिन दो साखी आए मन मुख अंग ना के तै मूड़ा सिर ऊपर काल रुआएंदा मन तन शीतल गुर चरणी लागा अंतर परम गया पौ पागा सदा आनंद सच्चे गुण गावे सच बाणी बोलाएंदा जिन तू जाता कर्म विधाता पूरे पाग गुर शब्द पछाता जत पत सच सच।

ही सुख पाएगा। लख 84 आप उपाए, मानस जन्म गुरु भगत दृढ़ाए, बिन भगती बिस्ता विच वासा, बिस्ता विच फिर पाएगा। कर्म होवे गुरु भगत दृढ़ाए, बिन कर्मा क्यों पाया जाए, आपे करे कराए करता, ज्यो पावे तिवे चलाएगा। सिमरत सासत अंत न जाने, मूरख अंधा तप न पछाने, आपे करे कराए करता, आपे परम पुलाएगा। सब किस आपे आप कराए, आपे सिर सिर संदे लाए, आपे थाप उठापे वेखे, गुरमुख आप बुझाएगा। सच्चा साहिब गहर गंभीरा, सदा सलाही तामन तीरा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुरमुख मन वसाएगा। आप निराल

जुग छत्ती कियो गुबारा, तू आपे जाने सिरजनहारा, होर क्या को कह के आंख बखाने, तू आपे कीमत पाएंदा। ओंकार सब सृष्ट उपाय, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई, आपे वेद करे सब साचा, आपे पन कराएंदा। बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई, सदा अलिप्त रह गुर सबदी, साचे सो चितलाएंदा। बाजे बाजे तुन आकारा, आप वजाए वजावन हारा,

तेजे वट होर लाहा नाही, नाम मन वसै ना मोसा लाही, नामो नाम सदा सुखदाता, नामो लाहा पाएंदा, बिन नामे सब दुख संसारा, बहु कर्म कमावे वदै विकारा, नाम न सेवे क्यों सुख पाई।

सहसा मूल न चुके विकारा, गुरमुख वो वैसो गणत चुकाए, सच्चे सच समाए दा, जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सलाहे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पाए दा, जप तप संजम नाम प्यारा, किलविख काटे काटनहारा, हर कै नाम तन मन शीतल होआ, सहजे सहज समाए दा, अंतर लोभ मन मैले मल लाए, मैले कर्म करे दुख पाए, कूड़ो कूड़ करे वा पारा, कूड़ बोल दुख पाए दा, निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर कै पाणे चले दिन राती, नाम चेत सुख पाए दा, आप सिरंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई, गुरमुख हो वैसो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाए दा, अनेक जतन करे इंद्री वसना होई, काम क्रोध जले सब कोई, सतगुरु

आपे दाता जिस देवे सो सच पाएगा, आपे करता सबना का सोई जिसनो आप बुझाए बुझे कोई, आपे बख्शे दे वड्याई आपे मेल मिलाएगा, हो मैं कर दिया जन्म गवाया आगे मोह न चूके माया, अगे जम काल लेखा लेवे जो तिल कानी पीड़ाएगा, पूरे पाक गुर सेवा होई नजर करे ता सेवे कोई, जम काल किस नेड़ न आवे महल सच्चे सुख पाएगा, तिल सुख पाया जो तुद पाए पूरे पाक गुर सेवा लाए, तेरे हथ है सब वड्याई जिस देवे सो पाएगा, अंदर परदास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए।

जय रसना नाम से आए रस पी जय रस ही से रस पाएगा महल अंदर महल को पाए गुर के शब्द सच चितलाए जिसनो सच देव सोई सच पाए सच्चे सच मिलाएगा नाम विसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नामे मन तन है कुश्ती नरके वासा पाएगा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा सदा सुख नेहा नाम सलाहे सदा

गुर कै शब्द हर मन वसाए, गुर कृपा ते नाम वसिया कट अंतर, नामो नाम ते आइंदा नामे नो लोचे जेती सब आई, नाव तिना मिले तुर पुरब कमाई, जिन्नी नाव पाया सेवट पागी, गुर कै शब्द मिलाएदा काया कोट अत अपारा, तिस विच बह प्रभ करे विचारा, सच्चा न्याओ सच्चो वापारा, निचल वासा पाएदा अंतर कर बंके थान सुहाया, गुरमुख विरले किने थान पाया, इस साथ निभ है साला है सच्चे हर सच्चे।

सचो सच वेखे सब साई सच सुन मन वसाईंदा होमे गणत गुर शब्द निवारे हर जियो हृदय रखो उड़धारे गुर कै शब्द सदा साला है मिल साचे सुख पाएगा सोचे ते जिस आप चिताए गुर कै शब्द वसै मन आए आपे वेखे आपे बूझे आपे आप समाएगा जिन मन विच वठ पाई सोई जाने गुर कै शब्दे

इहो शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम फुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएगा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्श कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएगा, बिन पादा गुर सेविया न जाए, मन मुखूले मोए बिल्लाए, जिनको नदर हो वह गुर केरी, हर जियो आप मिलाएगा, काया कोट पके हट नाले, गुरमुख ले वह वस्त समाले, हर का नाम त्याय दिन राती, उत्तम पदवी पाएगा।

इस बाणी ते हर नाम पाएंदा वेद पढ़े अन दिन वाद संभाले नाम न चेते बद्दा जमकाले दूजे पाए सदा दुख पाए त्रै गुण परम पुलाएंदा गुरमुख एक स्यों लिवलाए त्रिविध मनसा मने समाए साचे शब्द सदा है मुक्ता माया मोह चुकाएंदा जो तुर राते से हुन राते गुर प्रसादी सहजे माते सतगुर सेव सदा प्रभ पाया आपे आप मिलाएंदा माया मोह परम न पाए दूजे पाए लगा दुख पाए सूहा रंग दिन थोड़े होवे इस जानदे बिलम न लाएंदा इहो मन पै पाए रंगाए इत रंग साचे माहे समाए पूरे पाग को इहो रंग पाए गुरमती रंग चढ़ाएंदा मनमुख बहुत करे अभिमान।

गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभ सच्चा वापारा, नाम अमोलक पाएदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरा ठाकुर ए बणत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आपे आप मिलाएदा, काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाहा, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख साला है सुखदाते, मन मेले कीमत पाएदा, काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई, जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएदा, हर जियो सब में रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मिलाए आपे, सब दे सहज समाएदा, आपे सच्चा शब्द मिलाए, शब्दे विच्चों परम चुकाए, नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएंदा, मारू महला तीजा, अगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सके तिसनो, गुर शब्दी मेलाया, तुदनो सेवे जो तुद पावे, गुर कै शब्दे सच समावे, अन दिन गुण रवे दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरे से मरण सवारे, हर के गुण हृदय उतारे, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाव चुकाया, हर जियो मेले आप मिलाए, गुरु

पारा कीमत नहीं पाई। आपे दया करे सुखदाता गुण में गुणी समाया। इस जग में मोह है पसारा मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा। तंदे तावत जन्म गवाया बिन नावे दुख पाया। कर्म होवे ता सतगुरु पाए हौ मैं मैल शब्द जलाए। मन निर्मल ज्ञान रतन चानन अज्ञान अंधेर गवाया। तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई सच नाम हर हृदय वसाई। कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू आपे सहज समाया। नाम अमोलक अगम अपारा ना को होआ तो लनहारा। आपे तोले तोल तोलाए गुर शब्दी मेल तोलाया। सेवक सेवे करे अरदास तू आपे मेल बहाले पास। सबना जिया का सुखदाता पूरे कर्म ते आया। जत सत संजम जे सच कमावे यो मन निर्मल जे हर गुण गावे। इस बिख में अमृत प्राप्त होवे।

भगत सराहन सदा लिवलाए, तौ शरणाई उभरे करते आपे मेल मिलाया, पूरे शब्द भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई, मन तन सच्ची भक्ति राता सच्चे सो चितलाया, हौं मैं विच सब जले शरीरा कर्म होवे पेटे गुरपूरा, अंतर अज्ञान शब्द बुझाए सतगुर ते सुख पाया, मन मुख अंधा अंध कमाए, बहु संकट जो नी परमाए।

हारे गुर कै शब्द मरे मन मारे हौ मैं जाए समाया आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोई न होई अंतर जोत शब्द सुख वस्या ज्योति जोत मिलाया पंच दूत चित में विकारा माया मोह का इहो पसारा सतगुर सेवे ता मुक्त होवे पंच दूत वस आया बाज गुरु है मोह गुबारा फिर डुबे वारो वारा सतगुर पेटे सच दृढ़ाए सच नाम मन पाया साचा दर साचा दरबारा सच्चे सेवे शब्द प्यारा सच्ची तुन सच्चे गुण गावा सच्चे माए समाया करे अंदर को कर पाए गुर कै शब्दे सह सुवाए उथे सोग विजोग ना व्यापे।

दुखो दुख कमाया, सतगुर बाजो संगत न होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई, सहजे गुण रवे दिन राती, ज्योति जोत मिलाया, काया बिरख पंखी विचवासा, अमृत चुगे गुर

सतगुर मन वसिया लिव लाई आप मिलिया जग जीवन दाता। नानक अंक समाई है मारू महला चौथा हर अगम अगोचर सदा अविनाशी सर्वे रव रहा कटवासी तिस बिन अवर न कोई दाता हर तिसे सिरे वो प्राणी है जा को राखे हर राखन हारा ताको कोई न साक्ष मार।

हर हर नाम जिन्ही सदा ते आया, तिन्ही गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेवा तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपे जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी। जन नानक दास।

अगन उपाय ईदन में बांधी सो प्रभ राखे पाई हे। जी जंत को रिजक संभाहे करण कारण समरथ अपाहे। खिन में थाप उथापन हारा।

जन्म मरण की जोन न पवया, दुख विनाश किया सुख डेरा, जा तृप्त रहे आगाई है, मीत हमारा सोई स्वामी। थान थनंतर अंतर जामी, सिमर सिमर पूरन परमेश्वर।

रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, पूछ अथा अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जनत सहते आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा की ने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार सहज तुन, साची कार कमाई है। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में

संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पय इकतरा करते भोग बिलासा है जो पिर करे सो तन तत माने फिर तने सिगार रखे संगाने मिल एकत्र वसे दिन।

पीतर जित उतरे पूख प्यासा है सगले कर्म तर्म जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत्संगे तो तन फिर आनंद उलासा है तन अंधी फिर चपल सियाना।

जो प्रे बचन कहे तन साचे, तन कछु ना समझे चंचल काचे, बहुर बहुर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासाए, आई आ गया फिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया।

मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मनमुख पोगे, गुरमुख लेप ना मासा है, गुरमुख सोए जे हर जियो पाया।

सुरत शब्द रिद अंतर जागी अम्यो चोल चोल पी जाहे मरे नाही सद सद ही जीवे अमर पया अविनाशी थी वे ना को आवे ना को जावे।

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इहो मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे, इको अंकार सतगुर प्रसाद। गुर गोपाल गुर गोविंदा, गुर दयाल सदा बख्शिंदा, गुर सासत सिमरत खट कर्मा, गुर पवित्र स्थाना है, गुर सिमरत सब किल विखनास है, गुर सिमरत जम संग न फास है, गुर सिमरत मन निर्मल होवे, गुर काटे अपमाना है, गुर का सेवक नरक न जाए।

सतगुर पेट हर जस मुख पणी है, कल कलेश मिटाए सतगुर हर दरगे देवे माना है। अगम अगोचर गुरु दिखाया, पूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक को बिघन न पगती, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहा गोसाई, ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहत्याना है। गुर मिलिया सब तृष्ण बुझाई, गुर मिलिया ने जो है माई, सत संतोख दिया गुरपुर है, नाम अमृत पी पाना है। गुर की बाणी सब माए समानी, आप सुनी तै आप वखाणी, जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया ने चल थाना है। सत गुर की महिमा सत गुर जाने, जो किछ करे सो

कल युग में कीर्तन परदाना, गुरुमुख जपिए लाए त्याना। आप तरह सगले कुलतारे, हर दरगे पत स्यों जाएंदा, खंड पताल दीप सब लोआ, सब काले वस आप प्रभ किया, नेचल एक आप अविनाशी, सो नेचल ज्योत सैंति आएंदा, हर का सेवक सो हर जेहा, पेद न जानो मानस देहा, जो जल तरंग उठे।

हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी, अनेक रंग करें बहु पांति, जो पिता पूत लड़ाएदा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिली है जान ले मिलाई, गुरुमुख प्रगट पया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएदा, तू आपे करता कारण करना, श्रेष्ठ उपाय तरी

श्रवण सुनिए दूजी अवर न जाप सकाई सगल तुम्हारी तारण आप चितारे अपना किया आपे आप प्रवथिया आप उपाय रचुन पसारा आपे कट कट सारणा एक उपाय वड दरबारी एक उदासी एक करबारी

एक भूखे एक तृप्त अघाए सब सह तेरा पारणा आपे सत सत सत साचा ओत पोत भगतन संगराचा आपे गुप्त आपे है प्रगट अपना आप पसारणा सदा सदा सद होनहारा ऊंचा अगम अथा अपारा ऊने परे परे पर ऊने।

की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई, जिसनो लाए ले सो सेवक, जिस वड पाग मथाएना, गुर की महिमा बेद न जाने, तुच्छ मात सुन सुन वखाने, पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर, जिस सिमरत मन शीतलायना, जा की सोए सुनी मन जीवे, हृदय वसे ता ठंडा थीवे, गुरमुखो अलाए ता सोबा पाए, तिस जम के पंथ न पाएना, संतन की शरणाई पड़िया, जियो प्राण तन आगे तरिया, सेवा सुरत न जाना काई, तुम करो दया किरमाएना, निर्गुण को संग लिहोर लाए, कर कृपा मोह टहले लाए, पखा फेरो पीसो संत आ गए, चरण तोए सुख पाएना, बहुत दुआरे परम परम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरण आया, सदा सदा संतें संग राखो, इहो नाम दान दे।

जिथे दैत सब सिमरै अगनत ना जाई जस गना सिमरै पस पंखी सब पूता सिमरै बन पर्वत अवधूता लता बलि साख सब सिमरै रव रहया स्वामी सब मना सिमरै थूल सूखम सब जनता सिमरै सिद्ध साधिक हरमंता गुप्त प्रगट सिमरै प्रभ मेरे सगल पवन का

परम रुणा। गुरु का शब्द वसै मन जाके, दुख दर्द प्रमता का भागे। सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सहज तुना। सो तनवंता जिन प्रवत्याया, सो पतवंता जिन साध।

प्रभ समरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेरवाना। हर दाता जी जंत पे खारी, जन बांचे जा चंगना। मांगो जन तूर परम गत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो। दीर्घ रोग मिटे हर औखद, हर निर्मल रापे मंगना। श्रवणी सुनो बिमल जस स्वामी, एका ओट तजो बिख कामी। निव निव पाए

पंगना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल तल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट भंडार नाही।

एको एक रविया सब ठाई, तिस बिन दूजा कोई नाही। आद मद अंत प्रभ रविया, त्रिष्ण बुझी परमंगना। गुर परमेश्वर गुर गोविंद, गुर कर्ता गुर सदबक्संद। गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना।

परम सुख गुण निध आन मंगन नेह किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तू साहेब हों से

तुद लेप नहीं एक तिल रंगा, एक जी गुण कमन बखाने, सहस फनी शेख अंत न जाने, नवतन नाम जपे दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कै संगा, ओट गही जगत पित सरनाया।

मस्तक लाए परम पद पावो, जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लै हृदय पराते, सगल नाम निधान तिन पाया, अनाद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला, कहो नानक भगत पै शरणाई।

दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पैखा का, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा। सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे होई हाजी, सो मौला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफतरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले मह मौला, तस्बी याद करो दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल में जानो सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फान।

सिमरत नाम अन दिन जागे अनद विनोद करे हर सिमरन तिस माया संग न ताल का रोग सोग दुख तिस नाही साध संग हर कीर्तन गाए।

तिनकी तोड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरै नाही काहू बेरा, तिनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अंकार तजाए, तिस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुरु पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्र...

चरण कमल हृदय निथारी, गुर पूरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे, सास दरास समाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग पज अचुत स्वामी, दरगै शोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद, सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा, सासत सिमरत वेद बखान।

को रखे न कोई, नरक कोर में पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ में राख निवाजिया, तिस्यो प्रीत छाड़ अनराता, काहू सिरे ना लावना, तार अनग्रो स्वामी मेरे, कट कट वसे सबन कहने रे, हाथ हमारे कछुए नाही, जिस जाना है तिसे जनावना, जाके मस्तक तुर लिख पाया, तिस ही पुरुख ना व्यापे माया।

तिल नहीं बदे कटे ना कटाए सोई होए जे करते भावे कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर अपने मिल साधु गोविंद त्यावना तेरी कीमत कहना जाई अचरज रूप वड्डी वड्याई।

जे सतगुर माहि समाए मैला तीजा। मन के अधिक तरंग क्यों दर्शाए विचुटी है, जे राचे सच रंग गूड़े रंग अपार के, नानक गुर प्रसादी छुटी है। जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है, क्यों कीमत की जाए, आपे सृष्ट सब साजियन आपे वर्ती जाए, गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत की जाए, गुर शब्दी कमल विकास।

नानक जे इव मारिये गुरसबदी विचार, इव मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोए, नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुर पेटे सोए पौड़ी। दो वै तरफा उपायुन विच सकत शिव वासा, शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा, गुर सेवे सांत पाये जब सांस गिरासा, सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा, नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा, होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार, नवखंड मध्ये पूजिया अपने चज विचार, मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए, झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा, आप उपाय करे आप आपे नजर करे, आपे दे वडियाईया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे, अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे, गुर शब्दी हर पे दिए हर जप हर बूजे, सो हर शरणाई छुटिए जो मन स्यों जूजे, मन विचार हर जप करे हर दरगह सीजे। श्लोक महला पहला।

पास इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी मनमुख काल वे आपदा मोय माया लागे खिन मैं मार पछाड़ सी पाए दूजे ठागे फिर वेला हथ ना आवई जम का डंड लागे तिन जम डंड ना लगे जो हर लिव जागे सब तेरी तुद छड़ावनी सब तुद है लागे। श्लोक महला पहला। सर्बे जोए अगच्छमी दुख कनेरो आथ कालर लादस सर लागनो लाभ ना पूंजी साथ महला पहला। पूंजी साचो नाम तू अखुटो दर्ब अपार नानक वखर।

मिलन नाम पौड़ी आपे पिंड सवारियों विच नवनिध नाम एक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला पोल तन पै मन वसे है कै पादर हीड अत डापन दुख कणो तीने खा परीड मैला पहला मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम संभाल तू बीजो अवर न कोए महला पहला सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे प्रभाव सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी पुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाएंदे हर नाम ते आवे जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे तरम राय तिन का मित है जम मग ना पावे हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे श्लोक महला पहला सुनिए एक वखाणी है सुरग मृत पयाल हुक्म न जाई मेट

लाल लवाए अंदर मुस्क चकोलिया कीमत कही ना जाए पौड़ी। इस जुग में नाम निदान है नामो नाल चले एहो खुट कदे ना निखुट खाए खर्चियो पल्ले हर जन नेड़ ना आवे जम कंकर जम कले से सा सच्चे बन जा रहा जिन हर तन पल्ले हर कृपा ते हर पाई है जा आ

हुक्म मने दुख जाए, आपे दाता सुखैदा आपे दे सजाए, नानक ए वह जानिए सब किछ तिसैर जाए पौड़ी। हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नामे तृप्त नाही, दूजे परम पुलाया हो मैं दुख पाही। बिन कर्मा किछु न पाये जे बहुत लो चाही, आवे जाए जम मैं मरे गुर सब छुटाही। आप करे किस आखिए दूजा को नाही, श्लोक मैला तीजा। इस जग में संती तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए। सतगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए, इत तन पाए पुख लथी सुख वस्या मन आए। जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए, मन मुख जगत निरतन है माया नो बिलाए। अंदिन फिर दा सदा रहे पुख ना कदे जाए, सांत ना कदे आवई ने सुख वसे मन आए। सदा चिंत चित वदार है सहसा कदे न जाए, नानक विन सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए। सदा सदा सुख में रहे सच्चे माए समाए, मैला तीजा। जिन उपाय मेदनी सोई सार करे, एको सिमरो पाए रहो तिस बिन अवर न कोए। खाना शब्द चंगियाईया जित खादे सदा तृप्त होए, पैनन सिफत सनाए है सदा सदा ओ उजला, मैला कदे न होए। सहजे सच तन खटिया थोड़ा कदे न होए, देही नो शब्द सिगार है जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखा ले सोए पौड़ी। अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापे, हर हर नाम ते आई है हो मैं अज्ञान गवापे। अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापे, जिन चाखिया से निरपो पे से हर रस त्रापे। हर कृपा तार पियाया फिर काल न व्यापे, श्लोक मैला तीजा। लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी, गुण न विहाजे कोए। गुण का गाहक नानका विरला कोई होए, गुर प्रसादी गुण पायन जिसनो नदर करे महला तीजा। गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार, नानक हुकम मने सुख पाई है गुर सब दी विचार पौड़ी। अंदर राजा

पाने जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागति जिन जगत उपाया श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं तैकी नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूँ सुखसार सो ब्राह्मण पला आखिए जे बूझे ब्रह्म विचार हर साल

काजल हार तमूल रस बिन पसे हबरस छार पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच सच सब धारिया गुरमुख की तो

दुर्जन तू जल पहाड़ी वे छोड़े मर जाए, कंता तू सौ से जुड़ी मैं डाहबो दुख लाए। महला पंजवा। दुर्जन दूजा भाव है वे छोड़ा हो मैं रोग, सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग। पौड़ी। तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन, तुद सिरजा सब संसार तू नायक सगल पौन। तेरी कुदरत कोई न जाने मेरे ठाकुर सगल रौन, तुद अपड़ कोई न सके तू अब नासी जग उधरण।

न लगै तृण। जिस होवै आप दयाल तिस लावै सतगुरु चरण। तू होर तू पाए न लभई अब नासे सृष्टि करण। दखणे महला पंजवा जे तू वतै अंगणे हब धरत सुहावी होए। हिकस कंतै बाहरी मैंडी बात न पुछै कोई।

पापे सतवंता जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपे खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। तिस बौड़ गर्भ ना पावई जिस देवै गुरमंता, जो आप चलावे त्यों चल दे किच वस ना जनता। दखने महला पंजवा कुरिये कुरिये वैद्या तलगाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा सच जान कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आतसड़ी मंज नैनू बिया ढल पबन ज्यो जुम्यो। महला पंजवा पोरे पोरे

अपर परा जिस मेले सतगुरु आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा। दखने महला पंजवा गैड डड़ा तृण छाया।

शिव सकत वरताइया। शिव अग्गै शक्ति हारिया एव हर पाइया, एक विच्चों ही तुझ रखिया जो सतसंग मिलाइया। जल विच्चों बिंब उठा लियो जल माए समाइया, दखने महला पंजवा। आगाहू कु त्रांग पिछा फेर न मोडड़ा, नानक सिज वे हावार बहुड़ न होवी जन्मड़ा। महला पंजवा। सज्जन मैंडा चाहिया हब कही दा मित, हबे जानन अपना कही न ठाहे चित। महला पंजवा। गुजड़ा लदम ला

0: पौड़ी।
1: जिस जन तेरी भूख है तिस दुख ना व्यापै, जिन जन गुरमुख बुझया सो चौ कुंडी जापै। जो नर उसकी सरणी पर तिस कंबे पापै, जन्म जन्म की मल उतरे गुर धूड़ी नापै। जिन हर बाणा मन्या तिस सोग ना संतापै, हर जियो तू सब ना कामित है सब जाने आपै। ऐसी शोभा जने की जेवड़ हर परतापै, सब अंतर जनवरता।

जित भुख ले जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन आपना। जित ढाडी तृप्तावे अरदास सुनी दातार प्रभ ढाडी को महल बुलावे। प्रभ देख दया दुख भुख गई ढाडी।

मन तन अत गुलाल नानक बिन लावै आलू दिया जिते होर ख्याल पवड़ी हर जियो जा तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा गुरु भोजन पार लंघाए।

पालिया तुद जे वड़ना साईया मैं दस्यो मारग संतो क्यों प्रभु मिलाईया मन अर्प्यो हो मैं तजो इत पंथ जुलाईया नित सेवो साहिब अपना सत

मुखो अलाए हब मरण पछाणंदो कोए, नानक तिन्ना खाक जिना यकीना हित स्यों। महला पंजवां, जान वसंदो मंज पछाणु को है कुड़ो, तैतन पड़दा नाहे नानक जय गुरु भेटिया। महला पंजवां, मतड़ी

मस्त सब लोग सिदासी, काजी शेख मसाए का सब दे उठ जासी। पीर पैगंबर औलिए को थिर न रहा से, रोजा बाग निवाज कते विभिन्न बुझे सब जासी। लख चौरासी मेजनी सब आवे जासी, नेचल सच खुदाए एक खुदाए बंदा।

सुखदायक ज्ञान रास नाम धन सौ प्यों इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्व सुख पायक मैं नालों कदे न विछड़े हर पिता सबना गल्ला लायक श्लोक दखने महला पंजवा नानक कचड़िया सो तोड़ ढूंढ सजन संत पक्या ओए जीवन दे विछड़े ओए मोया न जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजलियां चमकन गुरन घटा अत कालिया बरसन मेघ अपार नानक संगम तेरी सुहंदिया महला पंजवा जल थल नीर परे शीतल पवन झुलार दे सेगड़िया सोयन हीरे लाल जड़न दिया सुबर कपड़ भोग नानक तेरी विहूनी तत्तिया पौड़ी कारण करता जो किया सोई है करना जे सौ ताम है प्राणिया पावे धुर लेना बिन कर्मा किसु न लभई जे फिरे सब धरना गुर मिल पो गोविंद का भय डर दूर करना बहते बैराग उपजे हर खोजत फिरना खोजत खोजत सहज उपजया फिर जन्म न मरना ज्याय कमाए ज्याया पाया साज सरना बोहित नानक देव गुरु जिस हर चढ़ाए तिस

कीमत कहन न जाइए सच सा अडोला सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुदनो तोले बन्नन गरन समरथ है ओपत सब परले करन कारण समरथ है घट घट सब बोले रुजक समाहे सब सह क्या।

रहा हूँ। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। जी बधो सो धर्म कर छापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनु

जन्म अभिर था जाई। नारद वचन व्यास कहत है सुख को पूछो जाई। कह कबीर राम है रम छूटो नाहे तबूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है जो लो मनो न तजे विकार। जे घर बन संसार किया ते पूरे संसार। सार सुख पाई है रामा रंग रवो आत्मा राम रहाओ। जटा भस्म लेपन किया कहा गुफा में बास। मन जीते जग जीते आ जाते बिखिया ते होए।

राम उदक जे जन पिया ते बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझिया आसा ते भया निराश। सब सच नजरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस चाखिया

जुड़े ममता जालिया पिंड बना हम बै चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े जे मन मृतक होए बना हम बै सतगुर बिन बैराग न

चार मुकत चार सिद्ध मिलके दूले प्रभु की शरण पर्यो मुकत भयो चौहो जुग जान्यो जस कीरत माथे छत्र धर्यो राजा राम जपत को न करो गुरु उपदेश साध की संगत भगत भगत ताको नाम पर्यो रहाओ शंख चक्र माला तिलक विराजत देख प्रताप जम डर्यो निर्भव भय राम बल गर्जत जन्म मरण संताप हिर्यो अम्बरीक को दियो अभय पद राज भवीकन अधिक करो नवनिध ठाकुर दई सुदा मैं धुरु अटल अज हूँ न टर्यो भगत हेत मार्यो हर नाखस नरसिंह रूप होय देत हर्यो नामा कै भगत बस के सब अज हूँ।

पेट भरियो पसुआ ज्यों सोयो, मनुख जन्म है हारियो रहाओ। साध संगत कब हूँ नहीं कीनी, रचियो धंधा झूठ। स्वान सूकर बायस जिमे, भटकत चाल्यो ऊठ।

काल उठ जाएगा राव। लालच लागे जन्म गवाया माया परम बुलाएगा, धन जो बन का गर्व न की जय कागज जो गल जाएगा। जो जम आए केस जय पटके ता दिन

हर पदार्थ अष्टमा सिद्ध नव निध कर तलता कह, हर हर हर न जपस रसना, अवर सब छाड़ बचन रचना रहाओ, नाना ख्यान पुराण वेद विद 34 अक्षर माहे, व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरना है। सहज समाज उपाध रहत होए बड़े भाग लिव लागी, कह रविदास उदास दास मत जन्म।

कोई न बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी सब मन कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बानिया साधन सबरस चोले अंक समानिया। हर अंक समानी जा प्रभु बानी सासो हा गण नारे। नवघर थाप मैल घर ऊंचो।

नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वर घर धन पाए। वै साध बला साखा वेश करे धन देख हर द्वार आवो दया करे। घर आओ प्यारे दुतर तारे तुझ बिन अड न मोलो। कीमत कौन करे तुझ पावा देख दिखावे टोलो। दूर न जाना अंतर माना हरता मैल पछाना। नानक वै साखी प्रभु पावे सुरत सबद मन माना। माओ जेठ भला प्रीतम क्यों विसरे। खलता पैसर भार साधन बिनो करे।

राखो खेती हर गुर हेती, जागर शोर न लागे। जम मगन जाओ ना दुख पाओ, जम का डर बहु भागे। रब सस दीपक गुरमत द्वारा, मन साचा मुख त्यावे। नानक मूर्ख अजो

सत संभालिया एने सुदेश बिचारिया, दावत पंच रहे कर जानिया, काम क्रोध बिख मारिया। अंतर जोत भई गुरु साखी चीने राम करमा, नानक हो मैं मार पति ने तारा चढ़िया लम्मा। गुरमुख जाग रहे चूकी अवमानी राम, अनगिन पोर पया साच समानी राम। साच समानी गुरमुख मन पानी, गुरमुख साब जागे, साच नाम अमृत गुरु जिया, हर चरणी लिव लागे। प्रगटी जोत जोत मैं जाता, मन मुख परम भुलानी। नानक पोर पया मन मान्या, जागत रहन विहानी। अवगुण विसरिया गुणी घर किया राम, एको रव रया अवर न दिया राम। रव रया सोई अवर न कोई, मन ही ते मन मान्या। जिन जल सत्र गुण घट घट थापया, सो प्रभु गुरमुख जानिया। करण कारण समरथ अपारा, त्रिपद मेट समाई। नानक अवगुण गुण समाने, ऐसी गुरमत पाई। आवन जान रहे चूका भोला राम, हो मैं मार मिले साचा चोला राम। हो मैं गुर खोई प्रगट होई, चूके सोग संतापे। ज्योति अंदर ज्योत समानी, आप पछाता आप। घर सबद पतिनी सावरड़ा तिर पानी, नानक सदगुर मेल मिलाई, चूकी कान लोकानी। तुखारी महला पहला, भोला बड़ा भुली भुल भुल पछो तानी। फिर छोड़ी सुती फिर की सार न जानी, फिर छोड़ी सुती अवगन मुती। किस दन विदन राते, काम क्रोध अहंकार विगुति, हो मैं लगी ताते। उडर हंस चलिया फुरमाया, बस मैं

जमनाती कल घूंघट कैसा मटकी फोड़ निरारी, नानक आपै आप पछाणै गुरमुख तत बिचारी। तुखारी महला पहला। मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले, गुर अलख लखाया अवर न दूजा पाले। गुर अलख लखाया जा तिन पाया जा प्रभ कृपा तारी, जग जीवन दाता पुरख बिदाता सहज मिले बनवारी। नगर करें तू तारे तरिये सच देवो दीन दयाला, प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला। भरपुर तार रहे अत्यारे।

आया अपरंपर आपे थापो थापे किस भावे सो होवे नानक हीरा हीरे बेदिया गुण कह हार परोवे गुण गुण समाने मस्तक नाम निशानो सच साच समाया चूका आवन जानो सच साच पछाता साच राता साथ मिले मन पावे साचे ऊपर अवर्ण दिसे साचे साथ समावे मोहन मोलिया मन मेरा बंधन खोल निरारे नानक ज्योति ज्योत समानी जा मिलिया अत प्यारे सच दर खोज ले साचा गुर थानो मन मुख न पाई है गुरमुख ज्ञानो देवे सजदानो सो परवानो सजदाता वडदाना अमर अजूनी अस्थिर जापै साचा महल सिराना दो तो चापक लेख न लिखिया प्रगति ज्योत मुरारी नानक साचा साचा राचा गुरमुख तरी है तारी तुखारी महला पहला।

हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन्ने उपाया पौन पानी अगन बादे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो।

हर हर नाम सब सारिया, गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम, हाँ सतगुर वित्तों वारिया। जब देखा फिर प्यारा, हर गुण रस रवा राम, मेरे अंतर हुए विगास, प्रयो प्रयो सत्य नित चवा राम। प्रयो चवा प्यारे शब्द निस्तारे, बिन देखे तृप्त न आवे। शब्द सिगार होवे नित कामन, हर हर नाम प्यावे। दया दान मंगत जन दीजै, मैं प्रीतम देहो मिलाए। अन दिन गुरु गोपाल त्याई, हम सतगुरु विट्टो कुमाए। हम पात्र गुरु नाव बिख पव जल कारिय राम, गुरुदेवो शब्द सुभाए। मैं मूड निस्तारिय राम, हम मूड मुग्ध किछ मिट नहीं पाई। तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मेले। हम निर्गुणी निमाणिया, अनेक जन्म पाप कर परमे। हुन तो शरणागत आए, दया करो रख ले वो हर जियो। हम लागे सतगुर पाए, गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम, काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया। क्यों साथ जिरास विसारी है, अदृष्ट अगोचर पकड़िया। गुर शब्दी हो सतगुर के बलिहारी है, सतगुर आ गए शीश टेक दियो। जे सतगुर साचे भावे, आपे दया करो प्रभ दाते। नानक अंक समावे सुखारी महला चौथा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। जो तुम त्याए जगदीश ते जन पाओ बिखम तरा, बिखम पाओ तिन तरिया सुहेला। जिन हर हर नाम ते आया, गुरवाक सतगुर जो पाए चले। तिन हर हर आप मिलाया, ज्योति ज्योत मिल ज्योत खवाणी।

तरा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लया तन तन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे जा बह गुरमुख हर नाम बोले जा खड़े गुरमुख हर हर कया तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेव्या गुरमत हरे तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे तिनके पाप दोख सब बिनसे जिन मन चित इक अरा दया तिनका जन्म सफल्यो सब किया करते जिन गुर बचनी सच पाखिया ते तन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला हमरे हाथ किस नाहे जा तू मेले ता हो आए मिला जिनको तू हर मेले स्वामी सब तिनका लेखा छुटक गया तिनकी गणत ना करो को भाई जो गुरबचनी हर मेल लया नानक दयाल हुआ तिन ऊपर जिन गुर का पाना मनिया पला तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला सुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्टि नाथ तिन तू त्याया मेरा राम जिन कै तुर लेख मात जिन को तुर हर लिख्या स्वामी तिन हर हर नाम आराध्या तिनके पाप इक निमक सब लाथे जिन गुरु बचनी हर जापिया तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया तिन देखे हो पया सनाथ तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्टि नाथ तू जल थल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी जिन जपिया हर मन चीत हर जप जप मुक्त कणी जिन जपिया हर ते मुक्त प्राणी तिनके उजल मुख हर द्वार ओए हलत पलत जन पै सुहेले हर राख लिए रखन हार हर संत संगत जन सुनो पाई गुरमुख हर सेवा सफल बनी तू जल सल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी तू थान सनंतर हर एको एक रव्या वन त्रिण त्रिभवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया सब चवे हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते भावे सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सब चवया तू थान सनंतर हर एको एक रव्या तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले जिस कै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिके हर गुण हृदय टिके तिस कै जिस अंतर पाव पावनी होई बिन पै किने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई पाव पाव प्रीत नानक तिसे लागे जिस तू अपनी कृपा करे तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले सुखारी महला चौथा नावन पुरब अभीच गुर सतगुर दर्श पया दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी जन्म मरण दुख खिन में बिनसे हर पाया प्रभ अविनाशी हर आप करते पूर्व किया सतगुरु कुल खेत नावन गया नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श भया मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा अन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखने आया जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर मेला आया तीरथ उद्दम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्था
मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ, खबर पई संसार आए त्रै लोआ। देखण आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया, जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किलविख नाश गवाया। जोगी दिगंबर सन्यासी खर दर्शन कर गए गोष्ठ टोआ। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व होआ, दुतिया जमुन गए गुर हर हर जपन किया। जागाती मिले दे पेट गुर पिछे लंघाए दिया, सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम से आया। गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागा की नेड़ ना आया। सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाए ले सब छुटक गया। द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया, तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलक भया। सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लिया, आड़ दाम किछ पया ना बोलक जागातिया। मोहन मुंडन पई पाई हम करें क्या, किस पास मांगे सब पाग सतगुरु पिछे पई। जागातिया उपाव स्यान कर विचार डिठा, पन बोल का सब उठ गया। तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया, मिल आए नगर मां जना गुर सतगुर ओट गही। गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही, सिमरत शास्त्र सब ही सही कीता। सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद ते आया, देही नगर कोट पंच चोर बटवारे तिनका थाओ थे ओ गवाया। कीर्तन पुराण नित पुन होवे गुर बचन नानक हर भगत लही। मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही, सुखारी संत मैला पंजवा इको अंकार। सतगुर प्रसाद कोल कुमाई लालना गुर मन दीना, सुन बचन तुम्हारा मेरा मन पीना। एहो मन पीना ज्यो जल मीना, लागा रंग मुरारा कीमत कही न जाई। ठाकुर तेरा महल अपारा, सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दीना। देहो दर्श नानक बलिहारी जीड़ा बल बल कीना। एहो तन मन तेरा सब गुण तेरे, खनिए वंजा दर्शन तेरे। दर्शन तेरे सुन प्रभु मेरे, निमख दृष्ट पेख जीवा। अमृत नाम सुनी जय तेरा, कृपा करे ता पीवा। आस प्यासी फिर के ताई जो चात्रिक बूंदे रे, कहो नानक जीड़ा बलिहारी। देहो दर्श प्रभ मेरे, तू साचा साहिब साओ अमिता। तू प्रीतम प्यारा प्राण हित चित्ता, प्राण सुखदाता गुरमुख जाता। सगल रंग बन आए सोई कर्म कमावे प्राणी, जेहा तू फुरमाए। जाको कृपा करी जगदीसर, तिन साध संग मन जिता। कहो नानक जीड़ा बलिहारी, जियो पिंड तो दिता। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुरु टाक लिया मोह पापी पर्दा। ठाकन हारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते। अविनाशी अवगत स्वामी पूरन पुरख विदाते। पुस्तक कहन न जाए तुम्हारी, कौन कहे तू कद का। नानक दास ता कह बलिहारी, मिले नाम हर निंका। केदारा महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद मेरे मन राम नाम नित गाविये रे। अगम अगोचर न जाई हर लख्या, गुर पूरा मिले लखाविये रे। रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिव लाविये रे। सबको भगत करे हर केरी, हर पावे सो थाए पाविये रे। हर हर नाम अमोलक हर पै, हर देवे ता नाम त्याविये रे। जिसनो नाम दे मेरा स्वामी,
तिस लेखा सब छडावी रे। हर नाम अराधे से तन जन कही है, तिन मस्तक भाग तुर लिख पावी रे। तिन देखे मेरा मन बिकसे, ज्यों सुत मिल मात गल लावी रे। हम बारक हर पिता प्रभ मेरे, मोको देहो मति जित हर पावी रे। ज्यों बछरा देख गऊ सुख माने, त्यों नानक हर गल लावी रे। किदारा महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद मेरे मन हर हर गुण कहो रे, सतगुरु के चरण तोय तोय पूजो। इन विद मेरा हर प्रभ लहो रे, रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखे रस। इन संगत ते तू रहो रे, मिल सत संगत की जय। हर गोष्ट साधु स्यो गोष्ट, हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन। हर राम नाम राम रमो रे, अंतर का अभिमान जोर तू किछ किछ किछ जानता। एहो दूर करो आपन गौरे, जन नानक को हर दयाल हो स्वामी। हर संतन की कूर कर हरे, किदारा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद माई संत संग जागी, प्रे रंग देखे जपती नाम निधानी। रहाओ दर्शन प्यास लोचन तार लागी, बिस्तरी प्यास बिदानी। अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी। देख समोदर रहस मन उपजो, नानक प्रिय अमृत बानी। किदारा महला पंजवा कर की जा इको अंकार। सतगुर प्रसाद दीन बिनो सुन दयाल, पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ। राख हो कृपाल, रहाओ अनिक जतन गवन करो। खट कर्म जुगत ध्यान करो, उपाव सगल कर हारियो। नह नह हुते बिकराल, शरण बंदन करुणा पते। पाव हरण हर हर हर हरे, एक तू ही दीन दयाल। प्रभ चरण नानक आसरो, उदरे प्रम मोह सागर। लग संतना पग पाल, किदारा महला पंजवा कर चौथा इको अंकार। सतगुर प्रसाद सरनी आयो नाथ निधान, नाम प्रीत लागी मन पीतर। मांगन कौ हर दान, रहाओ सुखदाई पूरन परमेश्वर। कर कृपा राखो मान, देहो प्रीत साधु संग स्वामी। हर गुण रसन बखान, गोपाल दयाल गोविंद दमोदर। निर्मल कथा ज्ञान, नानक को हर कै रंग रागो। चरण कमल संग त्यान, किदारा महला पंजवा। हर के दर्शन को मन चाहो, कर कृपा सत्संग मिलाओ। तुम देवो अपनो नाओ, रहाओ करो सेवा सतपुरुष प्यारे। जब सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई। कवन अनूप से रोठाओ, सर्व प्रतपाले सगल संभाले। सगलिया तेरी छाओ, नानक के प्रभ पुरख विधाते। कट कट तुझे दिखाओ, किदारा महला पंजवा।

फूले कपट तपट बुध तृष्णा जीवों पेख दरसारी कौन सो जतन उपाव कनेहा सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक संते संग उधारी किरारा महला पंजवा हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोविंदे अपना नाम जपावो रहाओ काड लिए प्रभ आन बिखेते साध संग मन लावो तंपो मोह कट्यो गुरु वचनी अपना दर्श दिखावो सबकी रेन होए मन मेरा अहंग बुद्ध तजावो अपनी भगत देह दयाला वड पागी नानक हर पावो किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारत जात तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाओ

मान मोह महामद मोहत काम क्रोध के खात कर गए लिहो दास नानक को प्रभ जियो होए साथ केदारा महला पंजवा हर बिन कोई न चालस साथ दीना नाथ करना पत स्वामी अनाथा के नाथ राव सुत संपत बिखिया रस ओगवत नह निबहत जम कै पात नाम निधान गाओ गुण गोविंद उदर सागर के खात सरन समरथ अटक अगोचर हर सिमरत दुख लात नानक दीन तूर जन बासत मिले लिखत तुर मात केदारा महला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद बिसरत नाहे मनते हरी अब इह प्रीत मां परबल सही आन बिखे जरी रहाओ बूंद कहा त्याग चात्रिक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना टेव एह परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी किदारा महला पंजवा प्रीतम बस रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर गह लियो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहत उदरते ले मोर गर्भ कुंट में जिने तारियो नहीं बिखे बन में होर हर सकत सरन समरथ नानक हान नहीं निहोर किदारा महला पंजवा रसना राम राम बखान गुण गोपाल उचार दिन रैन पे कलमलहान रहाओ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आशा झूठ सर परमान सत पुरख अकाल मूरत हृदय तारो त्यान नाम निधान लाभ नानक बस ए परवान केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेश ना कछ व्यापे संत संग व्यवहार रहाओ कर अनग्रह आप राख्यो न उपजतो बेकार जिस परापत होए सिमरे तिस दहत नह संसार सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार नानक दास शरणागति तेरे संतना की छार किदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत जीवन रूप विसार जीवे ते कत जीवन होत रहाओ खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक खोत आठ पैर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत तज गोपाल जे आन लागे ते बहु प्रकारी रोत कर जोर नानक दान मांगे हर रखो कंठ परोत किदारा महला पंजवा संते तूर ले मुखमली गुणा अचुत सदा पूरन नह दोख व्यापे कली राव गुरु बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली प्रभ एक अनक सर्वत पूरन दिखे अग्न ना जली गह पूजा लीनो दास अपनो ज्योति ज्योत रली प्रभ चरण सरन अनाथ आयो नानक हर संग चली किदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचे कोट सांत आनंद पूरन जलत छाती बुझे रहाओ संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचे रेन जन की लगी मस्तक अनक तीरथ सुचे चरण कमल ध्यान पीतर कट कटे स्वामी सुजय शरण देव अपार नानक बहुर जम नहीं लुजे।

आदौ विवर्जत तजो मान अभिमाना। लोहा कंचन सम कर जाने ते मूरत पगवाना। तेरा जन एक आद कोई काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हर पद चीने सोई रहाओ। रज गुण तम गुण सत गुण कही है ते तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने तिन्ही परम पद पाया। तीर्थ व्रत नेम सुच संजम सदा रहने कामा। कृष्णा अर माया परम चूका चितवत आत्म रामा। जे मंदर दीपक प्रगासिया अंधकार कहनासा। निरपौ पूर रहे परम पादा कह कबीर जनदासा। किन्ही बनजिया कांसी तांबा किन्ही लौंग सुपारी। संतो बनजिया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी राव। साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी। साची बस के पार चलाए पहुँचे जाए पंडारी। आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी। आपे देह दिस आप चलावे नेचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गोन पर डारी। कहत कबीर सुनो रे संतो निधि खेप हमारी। री कलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फिरावो। मन मतवार मेर सर पाठी अमृत तार चो

राम न जपो कवन प्रम फूले, तुम ते काल न दूरे अनक जतन कर एहो तन राखो, रहे अवस्था पूरे आपन किया कछु न होवे, क्या को करे परानी जा तिस पावे सतगुरु पेटे, एको नाम बखानी बलुआ के करुआ में बसे।

राव लालच झूठ विकार महामद के बिद औद बिहान कह कबीर अंत की देर आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संग न कछ ले जाए। रहाओ देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कुटम मिल हंस इकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुर पाटन बौर न देखे आए कहत कबीर राम की न सिमरो जन्म अकारथ जाए। राकेदारा बाणी रविदास जीओ की इको अंकार सतगुर प्रसाद। खत कर्म कुल संयुक्त है हर भगत हृदय नाहे चरनार बिंद ना कथा पावे सुपत तुल समान। रे चित चेत चेत अचेत काहे ना बालनी कै देख किस जात ते के पदे अमरयो राम भगत विशेख रहाओ। स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत लोग बपुरा क्या सारा है तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुगत कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। राग पैरों मैला पहला कर पहला चौप दे

समाई मन जोगी मन बिनस बियोगी मन समझे गुण गाई गुरते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब पर कुरलीना सात शब्द निस्तारा पैरों महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन हीना जर जीत्या सिर कालो रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो

पाँच शब्द बिन कबहु न छूटत बिरसा जन्म भयो रहाओ। तन में काम क्रोध हो ममता कथन पीर अत भारी। गुरुमुख राम जपो रस रसना इन विद तरतु तारी। बैरे करन अकल भई होछी शब्द सहज नहीं बूझिया। जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंग न सूझिया। रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी। प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिवलागी। पैरों महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी। नेत्री तुंद करन पै बहरे मन मुख नाम न जानी। अंगुले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा। चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती। जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस। पशु पे कदे होए नानी के अमृत का रस विरली पाया। सतगुरु मेल मिलाए जब लग शब्द भेद नहीं आया। तब लग काल संताए अन को दर कर कबहू न जानस। एक को दर्श प्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया। नानक कह विचारा पैरों महला पहला सगली रैन सोवत गलफाही। दिन जंजाल गवाया किन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया। जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूटस दुख पारी। क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ। पूंदो कवल मन मुख मत होची मन अंदे सिर तंदा। काल विकाल सदा सिर तेरे बिन नावे गल फंदा। डगरी चाल नेत्र फुन अंदुले शब्द सुरत नहीं पाई। शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंदलो तंद कमाई। खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान विहूने। शब्द विचार राम रस चाख्या नानक साच पति ने। पैरों महला पहला गुर के संग रह दिन राती। राम रसन रंग राता अवर न जानस शब्द पछाणस। अंतर जान पछाता सोजन ऐसा मैं मन पावे। आप मार अपरंपर राता गुर की कार कमावे रहाओ। अंतर बाहर पुरख निरंजन आद पुरख आदेशो। कट कट अंतर सर्व निरंतर रव रहा सच वेशो। साच रते सच अमृत जेवा मिथ्या मैल नाराई। निर्मल नाम अमृत रस चाख्या शब्द रते पत पाई। गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरमुख नाम वडाई। सगले दुख मिटे गुर सेवा नानक नाम सखाई। पैरों महला पहला हृदय नाम सर्व तन तारण। गुर प्रसादी पाई है अमर पदार्थ ते किरतार्थ। सहज ध्यान लिवलाई है मन रे राम भगत चितलाई है। गुरमुख राम नाम जप हृदय सहज सेती कर जाइए रहाओ। परम पेद पाओ कभू न छूटत आवत जात न जानी। बिन हर नाम को मुक्त न पावस डूब मुए बिन पानी। तंदा करत सगली पत खोवस परम न मिटस गवारा। बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंदले तंद पसारा। अकुल निरंजन स्यों मन मानिया मन ही ते मन मुआ। अंतर बाहर एक को जानिया नानक अवर न दुआ। पैरों महला पहला जगन होम पुन तप पूजा। दे दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुक्त न पावत। मुक्त नाम गुरमुख लहै।

पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंड कमंडल सिखा सूत तोती तीरथ गवन अप प्रमन करे राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सोपार परे जटा मुकुट तन पसम लगाई बस्तर छोड़ तन नगन भय।

जी जंत जल थल महियल जत्र कत्र तू सर्व जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक चोल पिया।

ब्रह्म दिन देखो ब्राह्मण होए, जात का गर्भ न कर मूर्ख गावारा। इस गर्भ से चले बहुत विकार आ रहा, चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई, माटी एक सगल संसारा, बोविद पांडे करे कुमारा, पंच तत् मिल देही काकारा, कट वद को करे बिचारा, कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई।

पर किरत छोड़े तत पछाणे चहो वरना विच जागे कोए जमे काले ते छूटे सोए कहत नानक जन जागे।

साचा फल पाई। रे जन कैसे करो पुकारा, हुक्मे होआ हुक्मे वर्तारा। राहो एहो अकार तेरा है तारा, खिन में बिन से करत न लागे बारा। कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया। कहत नानक मार जी वाले सोए, ऐसा बूझो परम ना फूलो कोए। पैरों महला तीजा।

तिरम कसाई, मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई, पणत नानक करे क्या कोए, जिसनो आप मिला वै सोए पैरों महला तीजा। सो मुन जे मन की दुबदा मारे, दुबदा मार ब्रह्म विचारे, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई रहाओ, मूल मो कर करते जगत उपाया, ममता लाए परम पुलाया, इस मन ते सब पिंड पराना, मन के विचार हुक्म बुझ समाना, कर्म होवे गुर कृपा करे, इह मन जागे इस मन की दुविधा मरे, मन का स्वभाव सदा बैरागी, सब में वसे अतीत अनुरागी, कहत नानक जो जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ, पैरों महला तीजा। राम नाम जगत निस्तारा, पव जल पार उतारन हारा, गुर प्रसादी हर नाम समाल, सद ही निभ है तेरे नाल, रहाओ नाम।

नानक हृदय नाम वसाए पैरों महला तीजा नामे उदरे सब जितने लो गुरमुख जिना प्राप्त होए हर जियो अपनी कृपा करे गुरमुख नाम वडियाई दे रहाओ राम नाम जिन प्रीत प्यार आप उदरे सब कुल उदाहरण हार बिन नामे मनमुख जमपुर जाए औखे होवे चोटा खाए आपे करता देवे सोए नानक नाम प्राप्त होए पैरों महला तीजा गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे राम नाम शब्द विचारे हर जियो अपनी कृपा धार गुरमुख नामे लगे प्यार रहाओ अंतर प्रीत पगत साची होए पूरे गुरमे लावा होए निज कर वसे सहज सुभाए गुरमुख नाम वसे मन आए आपे वेखे वेखन हार नानक नाम रखो उधार पैरों महला तीजा कल युग में राम नाम उधार बिन नामे माथे पावे चार राम नाम दुलभ है भाई गुर प्रसाद वसै मन आए।

नानक गुरमुख नाम प्यार पैरों में लाती जा। कल युग में बहु कर्म कमाए नारुत ना कर्म थाए पाहे। कल युग में राम नाम है सार गुरमुख साचा लगे प्यार। रहाओ तन मन खोज करे मैं पाया गुरमुख राम नाम चितलाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए राम नाम रव रहा ते लोए। कल युग में हर जियो एक होर रुत न काई नानक गुरमुख हृदय राम नाम लियो जमाई। पैरों में लाती जा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। डुबदा मनमुख रोग व्यापे कृष्णा जले अधिकाई। मर मर जम में ठौर न पावे बिरथा जन्म।

आपे काढ लए प्रभ आपे गुर सेवा प्रभ लाए हर का नाम निधानो पाया सुख वस्या मन आए चौथी पदवी गुरुमुख वरते हैं तिन निज कर वासा पाया पूरे सतगुर कृपा कीनी विच्चों आप गवाया एकस की सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया नानक नहीं चल साचा एको ना ओ मरे न जाया पैरों में लाती जा मन मुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे गुर सब्दी विचारा हर जियो सत्संगत में लाए नानक तिसनो देव दयाई जो राम नाम चितलाए रहाओ ममता काल सब रोग व्यापे तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ न आवे जिन हर राख्या और धारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता से जग में काहे आया गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया नानक से पूरे वड पागी सतगुर सेवा लाए जो इच्छे सोई फल पावे गुरबान।

शब्द विचारे सो जन साचा, जिनके हृदय साचा सोई। साची भगत करे दिन राती, तां तन दुख न होई। भगत भगत कहे सब कोई, दिन सतगुर सेवे भगत न पाये। पूरे पाग मिले प्रभ सोई राव, मन मुख मूल गवावे।

का दाता। अवगुण शब्द जलाए जिन मन वस्या से जन सोहे, हृदय नाम वसाए कर दर मेल सतगुरु दिखाया। रंग सो रलिया माने जो कुछ कहे सो पला कर माने।

प्रसाद परम पद पाया। सब उच्च पुजावन हार राव, सब मैं एको रब रहा, गुर बिन बूझ न पाए। गुरमुख प्रगट होआ मेरा हर प्रभ, अंग दिन हर गुण गाए। सुखदाता हर एक है, होर थे सुख न पाए। सतगुर जिनी न सेविया, दाता से अंत गए पछताए। सतगुर सेव सदा सुख पाया, फिर दुख न लागे ताए। नानक हर भगत प्राप्त होई, ज्योति ज्योत समाए। पैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना। फूला चोटा खाए, मर मर जमे सदा दुख पाए। डर की खबर न पाए, मेरे मन सदा रहो सतगुरु की शरणा। हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर शब्दे पव जल करना रहाओ। देख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार। अंतर तिसा भूख अत बहुती, पौकत फिरे दरबार। गुर के शब्द मरे फिर जीवे, तिनको मुक्त द्वार। अंतर शांत सदा सुख होवे, हर राख्या उदार। जो तिस भावे तिवे चलावे, करना किसु न जाई। नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वड्याई। पैरों महला तीजा, हो मैं माया मोह खुआया। दुख खट्टे दुख खाए, अंतर लोभ हलक दुख पारी। बिन विवेक परमाए, मन मुख त्रिग

मार्ग पाए। आपके गुरु मुख देव दे आए, नानक नाम समाए पैरों महला पीजा। मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला, दूजे पाए फाके जमजाला। सतगुरु करे मेरी प्रतपाला, हर सुखदाता मेरे नाला। गुरु उपदेश प्रहलाद हर उचरे, सासना के बालक गम न करे। रहाओ माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़ो जियो ले उबारे। प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए, राम नाम न छोड़ा गुरु दिया बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे, प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकरे बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होए रघुराया। हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार, हर तेरा कहां तुझले उबार। किन मैं पयान रूप लिख्या थम उपार, हर नाकस नखी विदारिया। प्रहलाद लिया उबार, संत जना के हर जियो कार सवारे। प्रहलाद जन के इच्छी कुले उदारे, गुर के शब्द हो मैं बिख मारे। नानक राम नाम संत निस्तारे, पैरों महला तीजा। आपे दैंत लाए दिते संत जना को, आपे राखा सोई। जो तेरी सदा सरनाई, तिन मन दुख न होई। जुग जुग भगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री। तर्पण किछु न जाने, शब्द मेल मिलाया रहाओ। अन दिन पगत करे दिन राती, दुबदा सब देखोई। सदा निर्मल है जो सच राते, सच वस्या मन सोई। मूरख दुबदा पने मूर

सुकृत करनी सार जप माले, हृदय से चले तुज नाले, हर हर नाम जपो बनवाले, कर कृपा मेलो सब संगत, टूट गई माया जमजाली राव। गुरुमुख सेवा काल जिन काली, तिस करिये सब सची टकसाली, हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली, हम बारिक हर पिता प्रतपाली, जन नानक तारो नगर निहाली, पैरों महला चौथा सब कट तेरे तू सबना माहे, तुझते बाहर कोई नाहे, हर सुखदाता मेरे मन जाप,

जिसको तुम हर राखिया भावे तिसके नेड़े कोई न जावे। तू जल तल मैयल सब ते भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजूर।

हर जो कुछ करे सो आते आते ओ पूछ ना किसे करे विचार। नानक सो प्रभु सदा त्याय है जिन में लिया सतगुरु कृपा तार। पैरों महला चौथा ए साधु हर मेलो स्वामी जिन जपिया गत होए हमारी। तिनका दर्श देख मन बिगसे किन किन किन कहो हो बलिहारी। हर हृदय जप नाम मुरारी कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी। हम दासन दास की जय पनिहारी रहो। तिन मत उत्तम तिन पत उत्तम जिन हृदय वस्या बनवारी। तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी। जिन ऐसा सतगुरु साधना पाया ते हर दरगे का दे मारी। ते नर निंदक सोग न पावे तिन नक काटे सुरजनहारी। हर आप बुलावे आपे बोले हर आप निरंजन निरंकार निराहारी। हर जिस तू मिले सो तुझ मिलसी जन नानक क्या ए जंत विचारी। पैरों मेला चौथा सत्संगत साई हर तेरी। जित हर कीरत हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन पीना। जिन हम श्री वैनित चरने जग जीवन हर त्याय तरने। अनेक असंख नाम हर तेरे ना जाही जेवा इक गनने रहाओ। गुरसिख हर बोलो हर गावो ले गुरमत हर जपने। जो उपदेश सुने गुर केरा सो जन पावे हर सुख कने। तन सो वंश तन सो पिता तन सो माता जिन जन जने। जिन सास गिरास आया मेरा हर हर से साची दर गए हर जन बने। हर हर अगम नाम हर तेरे विच पजता हर तरने। नानक जन पाया मत गुरमत जप हर हर पार पवने। पैरों महला पंजवा कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद सगली थीत पास दार राखी। अष्टम थीत गोविंद जन्मासी परम पूले नर कर्क कचरायण। जन्म मरण के रहत नारायण राव कर पंजीर खवायो चोर। ओ जन्म ना मरे रे साकत टोर।

नानक कह कर केवल नाम पैरों महला पंजवा। जेसो लोच लोच खावाया साकत हर हर चीतना आया, संत जना की लेहो मते साध संग पावो परम गते रहाओ। पात्र को बहु नीर पवाया मैं पी गए अदक सुकाया, खट शास्त्र मूर्खे सुनाया जैसे दह दिस पवन चुलाया, दिन कण खलहान जैसे दान पाया क्यों साकत।

तब आराधन निर्मल रीत साध संग बिन सी विपरीत नीत हीत तन ने पारणा तन तन मेरे नारायणा नानक बोले अमृत बाणी एक बिना दूजा नहीं जाने पैरों महला पंजवा आगे दे पाछे नारायण मद पाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सौन सुख सहज आनंद गृह पौन रहाओ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभु सिमर सिमर अमृत पीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द वजे दरबारे कर कृपा प्रभ लिए मिलाए नानक प्रभ शरणागत आए पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आवे।

आओ पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पहने काम राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार नानक दास एहो किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सब चार पैरो महला पंजवा लेप न लागो तिलका मूल दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल हर जन राखे पार ब्रह्म आप पापी मुआ गुर प्रताप रहाओ अपना खत्म।

पिंड तन तन सब प्रभ का साचत कहते मेरा। अहं बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा। होम जग जप तप सब संयम तट तीरथ नहीं पाया। मिटिया आप पे शरणाई गुरमुख नानक जगत कराया। पैरो महला पंजवा बन में पेख्यो तृण में पेख्यो ग्रे पेख्यो उदासाए।

जन नानक अपर न साचे कोय, पैरो मैला पंजवा। तौ करिए जे होवे बाहर, तौ करिए जे विसरे नर हर, तौ करिए जे दूजा पाए, क्या करिए जा रहा समाए। माया मोह करे कड़पतिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सद ही चूरे, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व विकार, कहो नानक दर का विचार, पैरों महला पंजवा, हूँ मैं रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाग रोग खप गए।

एक रोग का सगल संसारा, त्रिविध रोग में बदे विकारा, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी पर में, रोग बंद रहन गति न पावे, बिन सतगुरु रोग कटहे न जावे, पार ब्रह्म जिसकी दया, वहाँ पकड़ रोगों कद लया, टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया, पैरों महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख पांजे, चीत आवे ता सरदा पूरी, चीत आवे ता कभे न चूरी,

मन मानिया नानक भगवंता कहरो महला पंजवा। बाप हमारा सद चरण जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज करवासी, हम सुख पाया।

सतगुरु तै हो सदबल जाया, प्रगट मार्ग जिन का दिखलाया। जिन गुरु सेविया तिस पौ ना ब्यापे, जिन गुरु सेविया तिस दुख ना संतापे। नानक सो दे सुमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। पैरो महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट पाया, नाम लैत पाप तन ते गया। नाम लैत सगल पुरवाया, नाम लैत अठसठ मजन आया। तीरथ हमरा हर को नाम, गुरु उपदेश तप ज्ञान रहाओ। नाम लैत दुख दूर।

नानक उदरे नाम पुनः चार, हवर कर्म लोके पतियार, पैरो महला पंजवा, नमस्कार ता को लख बार, रुमन दी जैता को वार, सिमरन ता कै मिटे संताप, होय आनंद न व्यापे ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत पूरन सब काम रहाओ, जाकी दृष्टि दुख डेरा तह, अमृत नाम शीतल मन गह, अनित पगत जा

आधार कहो नानक जिस आप दियार हैरो महला पंजवा मोहे दुहागन आप सिगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिट्यो दुख अर सगल संताप।

पूरन होत न कार्य माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तरफ मुआ जो जल बिन मीना, जिसके राखे हुए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु पूरा पाया। पैरों मैला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किलवित जाए। राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए, तार ले सागर संसार राव, जिनको लिखिया हर एहो निधान।

जिस लड़ लाए ले सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भगतन का आप, अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभु सभी साथ, तेरो महला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रविया हर नाम, सतगुर पूरे तीनो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमूला अपर अपार रहाओ, नाम हमारे नेचर तनी, नाम की महिमा सबने बनी, नाम

स्वाओ नाम न विसरे संत प्रसाद नाम लेत अनहद पूरे नाद प्रभ कृपा ते नाम नौ निज पाई गुर कृपा ते नाम स्यों बने आई तनवंते श्री प्रधान नानक जा कै नाम धान पैरों महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरे जीव प्राण सुखदाता तू मेरा ठाकुर हूँ दास तेरा तुझ बिन अवर नहीं को मेरा।

रंग रसमाने, कट कट अंतर तुम्हें समाने, तुमरी कृपा ते जपिए नाओ, साध संग तुमरे गुण गाओ, तुमरी दया ते होए दर्द विनाश, तुमरी माया ते कमल विगास, हौ बलिहार जाऊं गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव, दया करो ठाकुर प्रभु मेरे, गुण गावे नानक।

नाम तिस शरणाई सदा सुख होए कर कृपा जा को मिले सोए रहाओ जा के कर्तव्य लते न जाए जा का परवासा सब कट माए

चाहे निर्मल मना सगल मनोरथ पूरन काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन करामन हार स्वामी।

मान मूर मुग्ध होए चतुर सुज्ञान सगल पयान का पौन से जन अपने के हर मन बसे पार ब्रह्म प्रभु सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरों महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्त सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग होए एक प्रीत संत मंडल कहाँ का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किछु ना कहे संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम वखाणी संत मंडल का नेचर आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो मैं दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुण पास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान पैरों मैला पंजवा रोग कवन जा राखे आप जिस जन होए न दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करे जिस ऊपर ते काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम जिस चीत आवे तो सदा सुख होवे नित ना आवे ता कह जाम रहाओ जब ए नासो तब किने उपाया कवन मूल से क्या प्रगटाया आप मार आप जीवाले अपने भगत को सदा प्रति

0: कोई भगत जपे नाम जाप मन पर दास गुते मत लई। कहो नानक ताकी पूरी पई।
1: पैरों महला पंजवा सुख नाही बहुते तन खाटे, सुख नाही पेखे नृत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सुख

सहो नानक प्रभु कृपा करी, सास गिरास जपो हर हरी, पैरों महला पंजवा, सबसे ऊंचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख वसे मन आए, सिमर मना

पूरन पूर्ण हो निर्वाण, तमको मेट मिले गोपाल, नानक को गुरु पै दयाल, पैरों मैला पंजवा, जिस सिमरत मन होए प्रगास, मिटे कलेश सुख सहज निवास, जिसे प्राप्त जिस

सगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए। पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम विहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे, मूल बिना शाखा कथा है। गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे। बंधन काट हर संग मिलाए रहो, तीरथ नाए कहां सुत सैल, मन को व्यापे हो मैं मैल, कोट कर्म बंधन।

पै परमा अमृत हर हर रसन पने रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत खिन मैं बिन स्यो महाप्रेत आठ पैर हर हर जप जाप राखन हार गोविंद गुर आप अपने सेवक को सदा प्रतपारे भगत जना।

कारण समरथ गुरु मेरा जी प्राण सुखदाता मेरा पै पंजन अविनाशी राय दर्शन देखे सब दुख जाए जत कत पेखो।

नानक सब किछ प्रगटे होए। पैरों मैला पंजवा मन तन राता राम रंग चरणे, सर्व मनोरथ पूरन करने, आठ पैर गावत भगवान।

सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पछानी, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रहन्ते आया, टूटे बंधन पूरन आसा, हर के चरण रिद माय निवासा, कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभ की शरणा, आप पवित पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरों महला पंजवा, नाम लैत किस बिघन न लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किछ चाख न जो है, हर सिमरत दैत देओ न पो है, हर सिमरत मोह मान न बदे, हर सिमरत गर्भ जोन न रुदे, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माए अकेला, जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूरन रंग, नानक को प्रभ कृपा तार, सास सास हर दियो चितार, पैरों महला पंजवा, आपे सासत आपे बेद, आपे कट कट जाने पेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूरन समरथ, प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आरादो, दुश्मन दुख न आवे नेरे, रहाओ आपे वन त्रिन त्रिभुवन सार, जां कै सूत परोया पार, आपे शिव शक्ति संजोगी, आपे निर्वाणी आपे पोगी, जत कत पेखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए, सागर

किस जनता कै कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न नानक दास से जन तन पैरो मैला पंजवा भगता मन आनंद गोबिंद अस्थित पय बिनसी सब चिंद तय प्रम बिनस गए खिन माहे पार ब्रह्म वसिया मनिया।

गायन आदि जुगाद भगत गुण गायन तिसकी तर प्रभ का मन जोर एक बिना दूजा नहीं और नानक कह मन इहो पुरखारथ प्रभु हमारा सारे स्वारथ पैरो महला पंजवा पै कौ पौ पड़या सिमरत हर नाम सगल ब्याद मिटी त्रयो गुण की दास के होए पूरन काम रहाओ हर के लोग सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूरन धाम जन का दर्श बांचे दिन राती होए पुनीत धर्म राय जाम काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अभिमान ऐसे संत पेटे वड पागी

बोल पछताने, हाथ पछोरे सिर तरन लगा है, निंदक को दही छोड़े ना है, हर का दास किच बुरा न मांगे, निंदक को लागे दुख सांगे, बगले ज्यो रहा पंख पसार, मुखते बोलिया ता कड़िया विचार, अंतर जामी करता सोए, हर जन करे सुने चल होए, हर का दास साचा दरबार, जन नानक कहया तत विचार, पैरों महला पंजवा।

प्रतपाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी अनेक रंग बहुत रंग सर्व को तनी रहाओ अनेक ज्ञान अनेक ध्यान अनेक जाप जाप ताप अनेक गुणत तुनत ललित।

लक्ष्मी पौ करे नासा कह जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए, सतगुरु नाम निधान।

दिखाया, पैरों महलाती जा, गुर सेवा ते अमृत फल पाया। हों मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन वस्या, मनसा मने समाई, हर जियो कृपा करूं मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे।

पाए मन मुख मरे तिन किछु ना सूजे दुर्मत अज्ञान अंधारा पव जल पार न पावे कभी डूब मुए बिन गुर सिर पारा साचे शब्द रते जन साचे हर प्रभ आप मिलाए गुर की बाणी शब्द पछाती साच रहे लिव लाए तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल गुर के शब्द विचारे नानक तिन कह

ਤਰਤ ਧਿਆਨ कोट तपीसर तप ही करते कोट मुनीसर मोन में रहते अवगत नाथ अगोचर स्वामी पूर रहा कट अंतर जामी जत कत देखो तेरा वासा नानक को गुर

पहचाना, उलट जात कुल दो विसारी, सुन सहज में बुनत हमारी, हमरा चगरा रहा न को। पंडित मुला छाड़े दो रहाओ, बुन बुन

बिरख मूल माया में परा, माया अंतर पीने देव, सागर इंद्रा अर्तर देव, कह कबीर जिस उदर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे।

तोत मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जा कह प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जा कह मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ।

फिरें, बासक कोट सेज बिस्तरें, समुंद कोट जाके पानी हार, रुमावल कोट अठारे पार, कोट कमेर परें पंडार, कोटक लक्ष्मी करे सिगार, कोटक पाप

रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी, कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए, कबहु न टूटस रहा समाए, नामे चित लाया सचनाए।

पछताना। पापी का कर अग्ने माहे, जलत रहे मिटवे कब नाहे। राव हर की भगत न देखे जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए। मूलो पूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिख खाए। ज्यो बेसवा के परे अखारा, कापर पहर करे सिंगारा। पूरे ताल निहाले सास, वा के गले जम का है फांस। जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना। कहत नाम दियो इहो विचार, इन विद संतो उतरो पार। संडा मर कह जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे। राम कह कर ताल बजावे, चटिया सब बिगारे। राम नामा जप वो करे,

पर फड चित समाल सोए सदा सदा गोविंद। पोलिया हूँ मैं सुरत विसार, हूँ मैं मार विचार मन, गुण विच गुण लै सार रहाओ, कर्म पेड़ साखा हरी, धर्म फुल फल ज्ञान।

काल गुरुमुख राम नाम गुण गाए, तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ, बिन साध ना पाये हर का संग, बिन गुर मैल मलीन अंग, बिन हर नाम ना सुध

गुर संग दिखायो राम राय। मिल सकी सहेली हर गुण बने, हर प्रभ संग खेले वर कामन। गुरमुख खोजत मन मने रहाओ, मनमुखी दुहागण नाहे पेओ। ओ कट कट रावे सर्व प्रेओ, गुरमुख तिरची ने संग देओ। गुर नाम दृढ़ाया जप जपेओ, बिन गुर भगत न पाओ होए। बिन गुर संत ना संग दे, बिन गुर अंधले तंद रोए। मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए, गुर मन

गुरमत उत्तम संग साथ, हर नाम रसायन सहज आथ, मत बिसरस रे मन राम बोल, अपरंपर अगम अगोचर गुरुमुख, हर आप तुलाए।

तैसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहूं पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा।

दूर गुर कै शब्द रहा परपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुरु प्रसादी सद समाल दर्शा चै पत्थरों कर जाए नानक नाम बढ़ाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मनते होए एक को वेखै और न कोए दूजे लोकी बहुत दुख पाया सतगुर मैनू एक दिखाया मेरा प्रभु मौलिया सद बसंत ए मन मौलिया गाए गुण गोविंद राव गुर पूछो तुम करो विचार ता प्रभु साचे लगे प्यार आप छोड़ होए दासत पाए तो जग जीवन वसे

सोई करे जे हर जीव भावे, सदा सुख शरीर पाने चित लावे, अपना प्रभ सेवे सहज सुभाए, नानक नाम वसै मन आए, बसंत महला तीजा, माया मोह शब्द जलाए, मन तन हरिया सतगुरु भाए, सफल्यो बिरख हर कै द्वार, साची बाणी नाम प्यार, हे मन हरिया सहज सुभाए, सच फल लागे सतगुरु भाए रहाओ, आपे नेड़े आपे दूर, गुर कै शब्द देखे सद हजूर, छावकणी फूली बन राए, गुरमुख बिगते सह सुभाए, अनदिन कीर्तन करे दिन रात, सतगुर गवाई विच्चों झूठ परात, परपंच वेख रहा विस्माद, गुरमुख पाये नाम प्रसाद, आपे करता सब रख भोग, जो किछ करे सोई पर होग, वड्डा दाता तिल ना तमाए, नानक मिलिए सबद।

सोए जिन सत सेविया तिन रस पाया नानक सहजे नाम समाया बसंत महला तीजा भगत करें जन देख हजूर संत जना की पग पंकज दूर हर सेती सद रहे लिव लाए पूरे सतगुरु दिया बुझाए दासा का दास बिरला कोई होए उत्तम पदवी पावे सोए रहाओ

नाम समाणया गुरुमुख नाम प्राप्त होए मन निर्मल निर्मल सच होए जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान साच सबद प्रभ एक स्नान हर रस चाखे ता सुध होए नानक नाम रते सच होए।

पल्ले पाए सो बुझे जिस आप बुझाए सतगुरु सेवा नाम दृढ़ाए जिन एक जाता के जन प्रवान नानक नाम रते दा निशान बसंत मैला तीजा कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप बसे।

मन शांत ना होए, बहु अभिमान अपनी पख होए, सेवड पागी जिन शब्द पछाणिया, बार जांदा कर मैं आणिया, कर मैं वक्त अगम अपारा, गुरमत खोजे शब्द विचारा, नाम नाम निद पाई।

संत हे मन मौलिया सतगुरु संग तुम साथ से आवो मुग्ध मना ता सुख पावो मेरे मना रहाओ इत मन मौलिया पया आनंद अमृत फल पाया नाम गोविंद एको एक सब आख बखाने हुकम बूझे ता एको जाने चहत नानक हो मैं कहे न कोए आखन वेखन सब साहिब ते होए बसंत महला तीजा सब जुग तेरे कीते होए सतगुरु पे तै मत बुद होए हर जियो आपे लहो मिलाए गुर कह शब्द सच नाम समाए रहाओ मन बसंत हरे सब लोए फले फुलिये राम नाम सुख होए सदा बसंत गुर शब्द विचारे राम नाम राखे उदारे मन बसंत तन मन हरिया होए नानक इहो तन बिरख राम नाम फल पाए सोए बसंत महला तीजा तिन बसंत जो हर गुण गाए पूरे पाग हर पगत कराए इस मन को बसंत की लगे न सोए ए मन जलिया दूजे दोए रहाओ यो मन तंदे बांदा कर्म कमाए माया मूठा सदा दिल लाए यो मन छूटे जा सतगुरु पेटे जम काल की फिर आवे ना फेटे ए मन छूटा गुरु लिया छाए नानक माया मोह शब्द जलाए बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बन राए ए जी जंत फूले हर चित लाए इन विद ए मन हरिया होए हर हर नाम जपे दिन राती गुरमुख हो मैं कद्दे तोए रहाओ सतगुर पाणी शब्द सुनाए ए जग हरिया सतगुर पाए।

तूर्तिना की अकुलीय पाए, सब संगत मेल मिलाए, आप कराए करे आप भाई, जिन हरिया की आ सब कोए, नानक मन तन सुख सद वसै पाए, शब्द मिलावा होए, राग बसंत मेला चौथा हर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद ज्यों पसरी सूरज।

रहाओ। काट काट अंतर एको हर सोए, गुर मिलिया एक प्रगट होए। एको एक रहा परपूर, साकत नर लोभी जाने दूर। एको एक वर्ते हर लोए, नानक हर एको करे सो होए। बसंत महला चौथा, रैन दिनस दोए सदे पए। मन हर सिमरो अंक सदा रख ले, हर हर चेत सदा मन मेरे। सब आलस दुख पंज प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ के रे रहाओ। मन मुख फिर हो मैं मोए, काल दैत संगारे जमपुर गए। गुरमुख हर हर हर निम लागे, जन्म मरण दो दुख पागे। भगत जना को हर

गुरु नानक तुखा मिलिया बनवारी, बसंत हिंडोल मैला चौथा कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद राम नाम रतन कोठड़ी घर मंदिर एक लुकानी, सतगुर मिले ता खोजिए मिल ज्योति जोत समानी, माधो साधु जन देव मिलाए।

साध मिलावे, नानक शांत होवे मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अदम गुसाई, हम कीरे किरम तुम नछे, हर दीन दयाल करो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बन छे, गोविंद जी ओ सत संगत मेल कर कृप छे, जन्म जन्म के किल रिख मल परया, मिल संगत कर प्रभ हंसे, रहाओ तुमरा जन जात अव जाता।

हम किए पतत पवीचे बसंत ही डोल मैला चौथा। मेरा एक छिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस गी दे जो बारिक रसक पर्यो थन माता थन का दे बिलल बिली दे गोविंद जी ओ मेरे मन तन नाम हर दी दे।

जन जप्यो नाम निरंजन नरहर, उपदेश गुरु हर प्री दे, जन्म जन्म की हौ मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नी दे। हमरे कर्म ना बिचरो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनी दे, हर पावे सुन बिनो बिनंती, जन नानक शरण पवी दे। बसंत हिंडोल मेला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवे, दिल कर नहीं वाता पाईए, गुर अंकत शब्द दारू सिर तारियो, कर मंदर आन वसाईए, गोविंद जी ओ सत संगत मेल।

मन प्रमया लह न सकाई है। ज्यो ओडा कूप गोज खिन काडे त्यों सतगुर वस्त लहाई है। जिन ऐसा सतगुर साधना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीव आये। जन्म पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदले जाये। मधुसूदन हरतार प्रभ कृपा कर कृपा गुरु मिलाये। जन नानक निर्वाण पद पाया मिल साधु हर गुण गाये। बसंत डोल मैला चौथा आवन जान पया दुख बिख्या दे मन मुख सुन्नी सुन्य। राम नाम खिन पल नहीं चेत्या जम पकरे काल सुलुंज। गोविंद जियो बिखो मैं ममता मुन्य सत संगत गुर की हर प्यारी मिल संगत हर रस पुंज। राव सत संगत साध दया कर मेलो शरणागत साधु पंज। हम डूब दे पाथर काट ले हो प्रभ तुम दीन दयाल दुख पंज। हर उस्तत तार और अंतर स्वामी सत संगत मिल बुद लंज।

नानक जाके एक दान कर कृपा मोहे देव नाम बसंत।

तैसे उधारन गुरे पीर तुम दाते प्रभ देनहार निमख निमख तिस नमस्कार रहाओ।

पग तारा दें जोग जुगत नेत्र संतोखे दर्श देख रसना गाए गुण अनेक तृष्णा बूजी गुर प्रसाद मन आधा ना हर रसें स्वाद सेवक लागो चरण सेव आद पुरुष अपरंपर देव सगल उदाहरण तेरो नाम नानक पायो इहो निधान बसंत महला पंजवा तुम बरदाते दे रहे जी प्राण में रव रहे दीने सगले पोजन खान

करो टेक, सर्व कला प्रभ तुम पर बीन, अंत न पावे जलह मीन, अगम अगम ऊंचे ते ऊंच, हम थोरे तुम बहुत मूच, जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से पनी, जिन तू सेव्या सुखी से।

देखने लागे। एवड पाग हो है जिस प्राणी सो पाए इह पद निर्वाणी रहाओ दूजी सेवा जीवन बिरथा कछु न होई है पूरन अर्था।

नानक जन हर हर त्याए। बसंत महला पंजवा, मन तन पीतर लागी प्यास, गुरदयाल पूरी मेरी आस, किलविक काटे साध संग, नाम जप्यो हर नाम रंग, गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय उधारे, सदा सदा हर जस सुना रहाओ। समरथ स्वामी कारण करण, मोहे अनाथ प्र

राम रंग सब गए पाप, राम जपत तत नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत कछना है फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यो सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो तन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभु

जप नानक स्वामी सद हजूर बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा प्रभ रखवाले माई बाप जा कै सिमरन नहीं संताप खसम त्याई एक मन एक भाए।

अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब प्रम थके, बिन गुरु साचे नहीं जाए, दुख देश दुसंतर रहे ताए, किर्त ओना का मिटस नाहे, ओए अपना बीजिया आप खाए, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुँच ना सकस कोए, प्रभ दास रखे कर जतन आप, अखंड पूरन जाको प्रताप, गुण गोविंद नित रसन गाए, नानक जी वह हर चरण ध्याए, बसंत महला पंजवा, गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्व मनोरथ पूरन काम, जप जी वह नानक राम नाम, सारुत सुहावी जित हर्षित आवे, बिन सत गुरु दी सह बिल लांती, साकत फिर आवे जावे, रहाओ।

पद पाया, गुर मिल नानक खसम ते आया, साध संगत पद कियो निवास, हर जप जप होई पूरन आस, जल थल मैयल रव रया, गुर मिल नानक हर हर कया, अष्ट सिद्ध नवनिध एहे, करम प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभ जप जप जीवे तेरे दास, गुर मिल नानक कमल परगास, बसंत महला पंजवा कर पहला, इक तुके इको अंकार, सतगुर प्रसाद, सगल इच्छा जप पुनिया, प्रभ मेले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रवन जोग, जित रवे सुख सहज भोग रहाओ, कर कृपा नदर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, सेज सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख तनी, मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पुजारिया, बसंत महला पंजवा, किल बिख बिन से गाए गुना, आन दिन उपजी सहज तुना, मन मौलियो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन बेटे, नित रातो हर नाम रंग रहाओ, कर कृपा

नानक प्रभ कृपा भई। बसंत महला पंजवा, रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने कर थाप। सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरणी आए। कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रभु आप, गुर अपने को नित नित जाप। जो जन तेरा जपे नाओ, सब फल पाए निचल गुण गाओ। नानक भगता पली रीत, सुखदाता जप दे नीत नीत। बसंत महला पंजवा, हुकम कर कीने निहाल। अपने सेवक को पया दयाल, गुरु

देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभ सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले इत रहे सूख।

दुबदा दूर करो लिवलाए। हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सपा विछाए। इन विद पासा तालो बीर, गुरमुख नाम जपो दिन।

हर प्यारे उठ स्नान करो प्रभाते, सोए हर आराधे बिखड़े दाव लंघावे मेरा सतगुरु, सुख सहज से ती कर जाते। हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया, जन नानक गुरमुख जो नर खेले, सो जिन बाजी कर आया। बसंत महला पंजवा हिंडोल, तेरी कुदरत तू है जाने, और न दूजा जाने, जिसनों कृपा

तेरा है भाणा, कहो नानक कह कया दुआरे, रख ले वो मुगद अजाना, बसंत हिंडोल मेला पंजवा, मूल न बूझे आप न सूझे, परम व्यापी अहं मनी, पिता पार ब्रह्म प्रभु।

जानो या पीतर जो राम बसत है साचो तहे पछानो रहाओ। यो जग है संपत सुपने की देख कहाँ ऐडानो। संग तिहार है कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो। उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उर्यानो। जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो। बसंत महल

सतगुरु मिले मत उत्तम होए, मन निर्मल हो मैं कदे धोए, सदा मुक्त बंध न सके कोए, सदा नाम बखाने और न कोए, मन हर के पान

तू अपुल ना पूलो कदे ना है, गुर शब्द सुनाए मत आगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे, बसंत महला पहला, दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तराचे पर हर दोए, दूर दर्द मत अमृत खाए, गुरमुख

किसै न भावो, नानक हों मैं शब्द जलाया, सतगुरु साचा दर्श दिखाया, बसंत महला पहला, चंचल चीत न पावे पारा, आवत जात न लागे बारा, दुख कणो मरिए करतारा, बिन प्रीतम को करे न सारा, सब उत्तम किस आखो ही ना, हर भगती सचना

रोग व्यापे, कट कट रव रहा प्रभ जापे, सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता, नानक राम रवे हित चीता, बसंत महला पहला, हित तुकिया मत पसम अंधूर।

है गुण नानक बोले पली बाण, तुम हो सुजा खेल हो पछाण, बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अगली कार, मन मुख पर मैं मजगुबार, मन अंधला अंधली मत लागे, गुर करनी बिन परम ना पागे, रहाओ मन मुख अंधले गुरमत ना भाई, पशु भय अभिमान ना जाए, लख चौरासी जंत उपाय, मेरे ठाकुर भाणे सिर समाए, सगली पूले नहीं शब्द अचार, सो समझे जिस गुरु

परम चुकाया बेमोहताज बेअंत अपारा सच पति जय करने हारा नानक पूले गुर समझावे एक दिखावे साच टिकावे बसंत महला पहला आपे।

तू अकल निरंजन परम हीर, तू आपे करता करण जोग, ने केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद, बसंत हिंडोल में।

करेंगे कर कर सिफ्त तुम्हारी, तीरथ सिमरत पुन दान किचला मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड़ियाई मेका कड़ी संभाली, बसंत हिडोल कर दूजा महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। पाया नगर एक बालक वसिया खिन पल थिर ना रहाई, अनेक उपाव जतन कर खाके बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाई है,

सब किछ आ गए दाल दे पंज समाया राम नाम की पैज वडेरी मेरे ठाकुर आप रखाई जे सब साकत करे बकीली इक रत्ती तिल ना कटाई जन की उस तक है राम नामा दे दिस सोबा पाई निंदक साकत ठव ना सके तिल।

करता, आपे जल अपरंपर करता, आपे मेल मिलावे, नानक गुरमुख सहज मिलाए, जो जल जले समावे। बसंत महला पंजवां, कर पहला दो तुकिया इको अंकार, सतगुर प्रसाद सुन साखी।

ले मस्तक लावो कर कृपा देन रहाओ। जनका उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोक। विप्र सुदा में दाल दुपंज, रे मन तू भी पज गोविंद। बदक उदार्यो खम प्रहार, कुबजा उदरी अंगुष्ट धार। बिदर उदार्यो दासत भाए, रे मन तू भी हर ध्याए। प्रहलाद रखी हर

भगत बिहुना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद पजो मेरे सदा मीत साथ शब्द कर सदा प्रीत रहाओ।

राजा कब मंगन हार, दुख सुख बादो संसार, मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे, ईट मीत को सखाना है।

हर का नाम ती आए कै हो वरिया भाई, कर्म लिखन तै पाई है ए रुत सुहाई, वन त्रिन त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजे लखी सब छाई, नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न पाई, पंजे बद्दे महाबली कर सच्चा ढोआ, अपने चरण जपायन विच दया खड़ोआ, रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ, दिन रहे नाम से आयदा फिर पाए न मोआ, जिस ते उपजिया नाम का सोई फिर होआ।

अगोचर साहेबो दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशिया नानक सुनावे बसंत माणी भगतां की कबीर जी कर पहला इक ओंकार सतगुर प्रसाद मौली तरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया।

पंडित जन माते पढ़ पुराण, योगी माते योग ध्यान, सन्यासी माते अहमेव, तपसी माते तपसे भेव, सब मद माते को न जाग, संग ही चोर कर्म सुन लाग रहाओ, जागे सुख देओ अर अकूर। हनुमंत जागे तर लंकूर, शंकर जागे चरण सेव, कल जागे नामा जय देव, जागत सोवत बहु प्रकार।

ओए परम पुरुष देव आदि देव भगत हेत नरसिंह देव कह कबीर को लख न पार प्रहलाद उधारे अनेक बार इस तन मन मदे मदन चोर जिन ज्ञान रतन हिर लीन मोर मैं अनाथ प्रभु कहो काहे को ना बिगू तो मैं को आहे माँ दो दारण दुख सहो न जाए मेरो चपल बुद्ध स्यों कहा बसाए रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद नाभि कमल जाने ब्रह्माद कब जन जोगी जटा तार सब आपन अवसर चले सार तू अथाओ मोय था नाहे प्रभु दीना नाथ दुख कहो काहे मोरो जन्म मरण दुख आप हीर सुख सागर गुण रहो कबीर नायक एक बन जाने पाच बर्ग पचीसक संग काच नौ गैया दस गोन आहे कसन बेहतर लागी काहे मोहे ऐसे बनज सो नहीं काज जिन्हें कटे मूल नित बगे।

बैठ पाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी।

गुर का शब्द काटे कोट कर्म, बसंत बाणी नाम देव जी की इको अंकार। सतगुर प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पजे, चिरंकाल न जीवे दो कुल लजे। तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे, चरण कमल मेरे हीरे बसे। रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरण मांडे, तैसे संत जना

जैसे पंकज त्रुट टुहाकती सर सोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तोवे बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता पंत नाम दियो रम रहा अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की इको अंकार सतगुरु प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाहे पहरावा देखे उबजाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भे बावली जैसे पादो खूब राज तू किस

मन मानिया हर पाए प्राण आधारा रहाओ। इन विद हर मिलिए वर कामन तन सुहाग प्यारी जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी जिस मन माने अभिमान ना

हर के संत जना की हम धूर, मिल सत्संगत परम पद पाया, आत्म राम रहा भरपूर रहाओ। सतगुर संत मिले शांत पाये, दिल विच दुख काटे सब दूर। आत्म जोत पई परफूलत, पुरख निरंजन देखिया हजूर। वड्डे

हारी, कृष्णा जलत ना कबहु बूजे, जुए बाजी हारी, उठत बैठत हर गुण गावे, गुर किंचित कृपाधारी। नानक जिन को नगर भई है, तिनकी तै सवारी, सारंग महला चौथा, हर हर अमृत नाम देहु प्यारे, जिन ऊपर गुरमुख मन मानिया, तिनके काज सवारे रहाओ, जो जन दीन भय गुर आ गए, तिनके दुख निवारे, अंधिन भगत करें गुर आ गए, गुर के शब्द सवारे, हृदय नाम अमृत रस रसना।

सांस वसै मन आए, गुरु कृपाल पै तम पाया, हर चरणी चित लाए, मत परदास पै हर प्याया, ज्ञान तत् लिव लाए, अंतर ज्योत प्रगति मन मानिया, हर सहज समाध लगाए, हृदय

मेरा मन राम नाम मन माने, मेरे ही रह सतगुरु प्रीत लगाए, मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो वो जन ऊपर, जन देवो अकथ कहानी, संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन मीठ लगानी, हर कै रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी, पुरख है पुरख मिलिया सुख पाया, सब चूकी आवन जानी,

तिल तिल पल पल औध फुल घाटे, बूझ न सके गवार सो किस परे जे साथ न चाले, त्यो साकत का आचार संत जना कैसा।

जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यों प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाओ। हर की उपमा अनेक अनेक अनेक गुण गाओ।

तट तीर्थ पर भवन करत रहत निराहारी। तीन जन की सेवा खाई पई जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले जो पावत हर राम मुरारी।

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टता प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरुष अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पी है जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मेले जिस सतगुरु सो जन हर हर।

प्यास चात्रिक ज्यों जल की सफल दर्शन कद पाओ रहाओ अनाथा को नाथ सर्व प्रतिपालक भगत वत्सल हर नाओ जाको कोई

निष्बासुर नक्षत्र विनाशी रवसस्यर बेनादा गिर बसदा जल पवन जायगो एक साध बचन अटलादा अंध विनाशी जेर विनाशी उत्पुज सेत बिनादा चार विनाशी खते विनाशी एक साध बचन नहीं चलादा राज विनाशी ताम विनाशी सातक पी बेनादा दृष्टमान है सगल विनाशी एक साध बचन आगादा आपके आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो न जाई।

जय गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद। जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तह महाप्रयान उद्यानद। जहां कीर्तन साध

जो जो शरण पर्यो करणा निध ते पहें तराए रहाओ। सुख सोयो अर सहज समायो सहसा गुरहे गवाए। जो चाहत सोई हर कियो मन बांचत फल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए। चरणी चलो मार्ग ठाकुर के रसना हर गुण गाए। देखो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए। पायो लाल अमोल नाम हर छोड़ न

अवर सब फूले प्रमत न जानिया। एक सुदाखर जा कै हृदय वस्या, किन बेदे तत पछानिया रहाओ। परवृत मार्ग जेता किस होइए, जेता लोग पचारा।

जगदीशें खोजत खोजत ए बिचारियो सर्व सुखा हर नामा कहो नानक किस पयो प्राप्त जा के लेख मथामा सारंग महला पंजवा अन दिन राम के गुण कही है सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांचत फल लई है राव आवो संत प्राण सुख दाते सिमरन प्रभ अविनाशी अनाथे नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो कटवासी गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड पागे कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे

पार ब्रह्म के आये उपदेश हमारी गत करन रहाओ। दुख रोग तय सगल विनाशे जो आवे हर संत शरण। आप जपे अवरे नाम जपावे वर समरथ तारन तरन। जा को मंत्र उतारे सहसा ऊने को सुबर भरन। हर दासन की

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन सारंग महला पंजवा, गायो री मैं गुण निध मंगल गायो, पले संजोग पले दिन अवसर जो गोपाल री जायो रहाओ, संते चरण मोर लो माथा, हमरे मस्तक संत

मोहे जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर, मन ना रहे बहुविध उमकाई रहाओ।

देव चरित्र पई हो बिस्मन, गुर सतगुर पुरख मिलाई, प्रभ रंग दयाल मोह गृह में पाया, जन नानक तपत बुझाई।

मानस जन्म दुलवाई, गर्भ जोन छोड़ जो निकसो तौ लागो अनठाही, करें बुराई ठगाई दिन रहन नेफल कर्म कमाही, कान नाही तो गाहन लागे ताए ताए दुख पाए।

सो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई, कहो नानक तिन जन बलिहारी, जो अल्प रहे मन माही, सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिछड़त होत मृतका, गृह में रहन न पाई, रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा।

मन कहां लुभाये आन कहो, कीत ऊत प्रभु सदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को, अकाल मूर्त है साध संतन की, ठहरनी की ध्यान को, बाणी मंत्र महापुरुषन की, मने उतारन मान को, खोज लहो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम को, सार मेला पंजवा, मन सदा मंगल गोविंद गाए, रोग शोक तेरे मिटे, सगल अग निमख ही है हर नाम दियाए रहाओ, छोड़ स्यान को बहु चतुराई, साधु शरणी जाए पाए, जो होए कृपाल दीन दुख पंजन, जमते होवे तर्म राय, एक कस दिन नाही को दूजा, आन न बियो लवे लाए, मात पिता पाई नानक को, सुखदाता हर प्राण साए, सारंग महला पंजवा, हर जन सगल उधारे संग के, कहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे रहाओ, मार्ग चले तिनी सुख पाया, जिनसो गोष्ट से तरे, बूढ़त कोर अंधकूप में, ते साधु संग पार परे, जिनके पाग बड़े हैं पाई, तिन साधु संग मुख जुरे, तिनकी तूर बांचे नित नानक, प्रभ मेरा कृपा करे, सारंग महला पंजवा, हर जन राम राम राम के आए, एक पलक सुख साथ समागम।

मोहन काय आवो करो जो दरिया, मान करो अभिमान बोलो फूल चूक तेरी प्रचरिया रहाओ, निकट सुनो अर देखो नाही परम परम दुख परिया, होए कृपाल गुर लाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलख बनिया, साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिलिया, सारंग महला पन्नवा अब क्या सोचो।

प्रम तो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लब दियो है हर चेका गुर दयाल पय सुखदाई अंधुले मानक देखा।

जो अल कमला लो भांगे गुण निधान मनमोहन लाल ने सुखदाई सर्वांगे गुरु नानक प्रभु पाहे पठायो मिलो सखा गल लागे सार महला पंजवा अब मोरो ठाकुर शिव मन माना साध कृपाल दयाल।

मेरे मन शीत आए प्रिय रंगा, बिसरो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा। रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो, हर पाया सत्संगा। ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम, सुख पाए मुख मंगा। प्रयो अपना गुर बसर दीना, पोगो पोग निसंगा। निरपो पै नानक पौ मिटिया, हर पायो पाठंगा। सारंग महला पंजवा, हर जियो के दर्शन को कुर्बानी। बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे, देहा प्रय अंक समानी। रहाओ सूतर ते गुर की सुहागन, हर पायो सुगुर सुजानी।

आन संतानी कहो नानक हर संग मन मानिया सब चूकी कान लोकानी सार महला पंजवा अब मेरो पंचाते संग टूटा दर्शन देख।

जन नानक के प्रपुरख विदाते मेरे ठाकुर अगह अतोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहन एक निमख उपाय समावे देख चरित मन मोहन रहाओ जिस सुने मन होए रहस अत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बन आई प्रभ तोहं तिलविख गए मन निर्मल होई है गुर का दे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करण कारण समरथोहं सारंग महला पंजवा नैनो देखो चलत तमाशा सबहु दूर सबहु ते नेरे अगम अगम कटवासा रहाओ अपूल ना पूले लिखो ना चलावे मता ना करे पचासा किन में साज संवार बिना है भगत वचल गुण तासा अंधकूप में दीपक बलियो गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्श पेश।

सुख सहजे अनंत बिहावा सारंग महला पन्नवा त्यायो अंत बार नाम सखा जह मात पिता सुत पाई न पहुँचे कहाँ कहाँ तू रखा रहा अंधकूप गृह में तिन सिमरियो।

गुरमिल ऐसे प्रभु ते आया, कयो कृपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताती बाया रहाओ। जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमख न बिसरे करी न बिसरे, सद संगे जत जाया। हौ बल बल बल बल चरण कमल को।

और द्वितीय आकाश विराते नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुर कर तारे मेरे माथे सौ नानक मैं अतुल सुख पाया जन्म मरण पहला थे सारंग महला पंजवा रे मूड़े आन काहे कत जाए संग मनोहर अमृत है रे फूल फूल बिखाई रहा।

जैसे मात पिताए तिस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसरना कब हूँ जाए। कहो नानक।

सुख दाता प्रभु ध्याय रहाओ। सुख मंगल कल्याण जिसे घर तिस ही शरणी पाये, तिसे त्याग मानुख जे सेवो तो लाज लोन हो जाये। एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मिल मत बुद्ध पाये, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताये। सारंग महला पंजवा, ओट सतानी प्रभ जियो मेरे दृष्ट ना लिया वो अवर।

और खुद मुकदीनो जाए पया गुर पैरे कवन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दाते रे काट सिलक जो अपना कीनो नानक सूख कनेर है सारंग महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख विनाशी पयो कृपाल जी सुखद।

तब अरोग जब तुम संग बसतो छुटकत होए रवारे कमन बसेरो दास दासन को थाप्यो थापन हारे नाम न विसरे तब जीवन पाये बिनती नानक हे सारे सारंग मेला पंजवा मन ते पै पाओ दूर पर आयो लाल दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुन गायो रहाओ गुर बचनात समात कृपा ते बहुर न कथु धायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वचल गृह पायो नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करावन आपे

अपने पै मान अपने पहचाना अपने ही पै अर्था किन्हीं राज जोबन तन मिलखा इन्हीं बाप महतारी सर्व थोक नानक गुरु पा।

देवन हार बिसारे अंदुले जो ससरी उधर भरे बह हाथुली साद बिकार बिकार झूठ रस जै जानो तै वीर बातुली कहो नानक समझ रे आने आज काल खुले तेरी गांठली सारंग महला पंजवा गुरजियो संग तुहारे जानियो कोट जोद ओआ की बात ना पुछिए ता दरगे भी मान्यो रहाओ कवन मूल प्राणी का कहिए कवन रूप दृष्टानियो

आपे सगले दूत बिदारे ठाकुर अंतर जाम आपे पत राखी सेवक की आपकी ओ बंदान आद जुगाद सेवक की राख है नानक को प्रभ जान सारंग महला पंजवा तू मेरे मीत सखार प्राण मन तन जीओ।

जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान, जन का संग पाई है वड भागी, नानक संतन कै कुर्बान। सारंग महला पंजवा, करो गत दयाल संतो मोरी, तुम समरथ कारण।

कहो नानक जिन जगत ठगाना सो माया हर जन ठागे। सारंग महला पंजवा अब जन ऊपर को ना पुकारे पुकारन को जो उदम।

निर्भव भय सगल पहु मिटिया, चरण कमल आधार है, गुरु के बचन जपियो नाव नानक, प्रगट पयो संसार है, सारंग महला पंजवा, हर जन छोड़िया सगला आप, ज्यो जानो त्यों रखो गुसाई, पेख जीवा परताप रहाओ, गुरु उपदेश साध की संगत, बिनस्यो सगल संताप, मित्र सत्र पेख समत विचार्यो, सगल संबाखन जाप, तपत बुझी शीतल आघाने, सुन अनहद विषम पै विषमाद, अनद भया नानक।

गाओ। हर हर हर हर मन आराधे, रसना हर जस गावे, सज अभिमान काम क्रोध निंदा, वासुदेव रंग लावे, दामोदर दयाल आराधो गोविंद।

आन उपाव त्याग जन सगले चरण कमल रिद्ध धारे प्राण आधार मीत साजन प्रभ एक एकंकार सबते ऊंचे ठाकुर।

अनद गुण गाया, बाँ पकड़ कदली ने अपने ग्रह अंधकूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवा, हर के नाम की गत ठांडी वेद पुराण सिमरत साधु जन खोजत खोजत काढ़ी। रहाओ शिव ग्रंथ अर इंद्र लोक।

देश सगल अपियाओ सारंग मेला पंजवा होती नहीं कवन कछ करनी यह ओट पाई मिल संत गोपाल एक की सरणी रहाओ पंच दोष छिदर या तन में दिखे।

सच तन वन जो सच तन संचो कबू न आवो हारे खास खर्चत किछ निखुटत नाही अगनत परे पनारे कहो नानक शोभा संग जावो पार ब्रह्म कै द्वारे सारंग मैला पंजवा प्रभ जी मोहे कमन अनाथ बिचारा कमन मूल ते मानुष करया।

आवे राम शरण वड पागी, एकस बिन किछ होर न जाने, अवर उपाव त्यागी रहाओ। मन बच कर्म अरादे हर हर, साध संग सुख पाया, अनद विनोद अकथ कथा रस, साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो, ताकी उत्तम बाणी, साध संग नानक निस्तरिय, जोरा ते प्रभ निर्वाणी। सारंग महला पंजवा, जाते साधु शरण गही, सांस सहज मन पयो।

में निर्मल बहुर जोन ना आओ, जियो प्राण आधार तेरा तून थावे थाओ, सास सास समाल हर हर नानक सद बल जाओ, सारंग महला पंजवा बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ, मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ, उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी मया करो भगवान, आवत जात दो पख पूरन पाये सुख विश्राम, सोदत सोदत तत विचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक इक राम नाम बिन अवर सगल बिद उरी, सारंग महला पंजवा साचे सतगुरु दा तारा, दर्शन देख सगल दुख नाते चरण कमल बलिहारा।

गुण गाओ। अगम अगोचर मित नहीं पाये, सगल कथा आधार नानक वाहो वाहो कहो ताको, जाता अंत न पार। सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहो ठाकुर सब थाई, निकट बसे सब ने रह रहाओ। बंधन तोर राम लिवलाई, संत संग बन आई।

कहत सुनत किछ शांत ना उपजत बिन विश्वास क्या देखा प्रभु त्याग आन जो चाहत ता कह मुख लागे का लेखा जा कह रास सर्व सुख स्वामी आन ना मानत देखा नानक दर्श मगन मन मोहयो।

सिमर सिमर नानक प्रभु जीवै बिनस जाए अभिमान सारंग महला पंजवा तुरत सोई जे तुर को लागै सोई तुरंतर सोई बसंदर।

दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए, करो कृपा गोपाल भी ठुले बिसरना कभी जाए रहाओ। मन तन तन सब तुमरा स्वामी आनना दूजी जाए, जो तू राखे तिव ही रहना तुमरा पैने खाए। साध संगत के बल बल

पूरन होत न कथो बातें अंत प्रतिहार रहाओ। सांस सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार, आप पर का कछ न जाने काम करो दे जार। संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वो तार, चरण कमल।

महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावे गुण गोविंद पूरन ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान जिसे कृपाल हुए।

अपना प्रभ त्याए, रतन जन्म अपार जीतेओ बौर जोन ना पाए, पय कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग हर चरण रास।

मानो द्वितीया पाओ सब लुहराओ त्याग गोपाल और जो करना ते बिखिया के खूह दर्श प्यास मेरा मन मोयो काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिनसी हो मैं हूँ राम रंग राते दास नानक मौलियो मन तन जूह सारंग महला पंजवा।

हर हर जपत सर्व सुख पाए, बीचे ग्रस्त उदास। रहाओ कर कृपा लीने कर अपने, उपजी दर्श प्यास, संत संग मिल हर गुण गाए।

सेवक पै दूर करन कलमल दोख जाले, कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते, राम राम सार भूत नानक तत बिचारे, सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग।

कास्यो न्यो लगाई, जो दिसे सो सगल विनाशे, जो बादर की चाही, तज अभिमान शरण संतन गयो, मुक्त हो है छिन माही, जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने भी नाही, सारंग महला नावा, कहा नर अपनो जन्म गवा।

जो उपजे सो सगल विनाश है, रहन न को उपावे, मिथ्या तन साचो कर मान्यो, ए विद आप बंगावे, जन नानक सो जन मुक्ता, राम भजन चित लावे, सारंग महला नावा, मन कर कबहू न हर गुण गायो, विख्या सक्त रहो निस्बासुर, कीनो अपनो भायो रहाओ।

सहज समाद सदा लिव हर्ष्यों, जीवा हर गुण गाई, गुर के शब्द रता बैरागी, निज कर ताड़ी लाई, सुद रस नाम।

कोट कल्प के दुख विनाशन साथ दृढ़ाए निवेरा रहाओ। क्रोध निवार जले हो ममता प्रेम सदा नौरंगी, अनपौ बिसर गए प्रवजाच्या हर निर्माइल संगी। चंचल मत त्याग पौ पंजन पाया एक शब्द लिव लागी, हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल ले बढ़ पागी। अमृत सिंच भय सुबर सर गुरमत साच निहाला।

मन रत नाम रते ने केवल आप जुगा दयाला मोहन मोय लिया मन मोरा बदे पाग लिव लागी साच विचार किल विक दुख काटे मन निर्मल अनरागी।

हर रस रते अधिकाई, एक कस्बिन मैं अवर न जाना, सतगुर बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुबर भरे नाही चित डोले।

मनुआ डोले अकथ ना कथे कहानी गुरमत ने चल हर मन वस्या अमृत साची बानी मन के तरंग शब्द निवारे रसना सह सुबाई सतगुरु मिल रही है।

रविया सब आत्म राम मुरारी सेवक सेव रहे सच राते जोते रहे मन भाने दुबदा मेल न पावे जग झूठी गुण अवगुण ना पछाने आपे मेल ले अकथ।

जन्म जन्म के किलविक पौ पंजन गुरुमुख एको डीठा रहाओ कोट कोट अंतर के पाप विनाशन हर साचा मन भाया हर बिन अवर न सु

आवागौन निवार सच राते, सात शब्द मन भाया, सतगुर से सदा सुख पाये, जिन विच्चों आप गवाया, साचे शब्द सहज तुन उपजे, मन साचे लिव लाई, अगम अगोचर नाम निरंजन, गुरमुख मन वसाई, एक समय सब जग तो वरते, विरला एक पछाने, शब्द मरे ता सब किछ सूजे, अंधन एक को जाने, जिसनो नजर करे सोई जन बूझे, होर कहना कठिन न जाई, नानक नाम रते सदा बैरागी, एक शब्द लिवलाई, सारंग महला तीजा, मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर नजर करे सोई जन पाए, गुरमुख विर ले जानी, रहाओ, हर गहर गंभीर गुणी गहीर, गुर के शब्द पछानिया, बहुविद कर्म करें पाई दूजे, बिन शब्द बहुरानिया, हर नाम नाम है सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल

मुक्त पए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया तिनको देख पए कृपाला तिन पव सागर तरिया हम नानी नीच

अगम अगाध सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुरु नमस्कार, गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन पीतर होवे प्रगास, ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश। मित नाही जाका विस्तार, सो बाता की अपर अपार। अनक रंग जाके गने न जाहे, सो घरक दोहू में नाहे। अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करें, अनक महेश बैस त्यान करें।

दाता कट कट पूरन है अलपाता कट कट पूरन कर विस्थिरन जल तरंग ज्यों रचन किया हब रस माने भोग कटाने।

परवेसा अंग अंग सुखदाई पूरन ब्रह्माई थान थन अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा कर कृपा अपने पह आया तन सोरिदा जी चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर गवाया पया प्रगास हृदय उलास प्रभ लोड़ींदा पाया दुख ना था सुख कर मैं बूठा महा आनंद सह जाया कहो नानक मैं पूरा।

ब्रह्मे अंत न जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी आपे आप निरंजना जिन आप उपाया आपे खेल रचायन सब जगत सवाया त्रै गुण आप सिरजियन।

किए कर कर करता करे करे मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजे लोभाया कूड कपट कमाम दे कूड़ो अलाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख समाया जम दर बदे मारिये परम है परमाया मनमुख जन्म गवाया नानक हर भाया श्लोक महला दूजा जिन वडे आई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे नानक अमृत मने माहे पाई है गुरु प्रसाद तिन्नी पीता रंग स्यों।

को नाम आधार है, नामे सुकोई नानक मंकन रव रहा, गुरुमुख हर सोई श्लोक महला पहला, नानक तुलने तोल जे जियो पिछे पाये।

दिसे जाते रूत ना जात सब कारण करता करे कट औकट कट थाप आखन औखा नानका आख ना जापे आख पौड़ी नाई सुनिए मन रहसिए नामी शांति आई नाई सुनिए मन तृप्तिए सब दुख गवाई नाई सुनिए ना उपजे नामे वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरुमुख नाम ति आई है नानक लिव लाई श्लोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की पेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मियो वरे है सब थाई झूठ न तरती झूठ न पानी झूठ न पौने माई समानी नानक निगुरिया गुण।

किस ऊपर ओ टिक टिके, किसनो जोर करे, किसनो कहिए नानका, किसनो करता दे, हुक्म रहाए अपने।

नाय मनय दुर्मत गई मत प्रवती आया नाव मनय हो मैं गई सब रोग गवाया नाय मनय नाम उपजय सहजे सुख पाया नाय मनय सांत उपजय हर मन वसाया नानक नाम रतन है गुरमुख हर त्याया श्लोक महला पहला और शरीक होवे कोई तेरा तिस अगे तुद आखा तुद अगे तुद सलाही मैं अंधे नाउ सुजाता जेता आखन साही सबदी पाख्या पाए सुवाई नानक बहुता एहो आखन सब तेरी वड्याई महला।

जो उस इच्छे सो फल पाए, ता नानक कहिए मूरत पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सोल है गुर शब्दी मिलिया। सतगुर के पाने जो चले हर से पीर लिया, जमकाल जो न सकई कर चानन बलिया। नानक बख्श मिलायन फिर गर्भ न गलिया, श्लोक महला पहला सच वर्क संतोष।

इकना नाद ना वेद ना गी रस रस तस ना जानंत इकना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर अस

वस्त पराए आप गर्व करे, मूर्ख आन गणाए, नानक बिन बूझे किने न पायो। फिर आवे जाए महला तीजा, मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम। सरसे सज्जन संत प्यारे, जो तुर मिले ना बिछड़े कबहू, जे आप मेले करतारे। अंतर शब्द रविया गुरु।

हो गई। नाम वसे मन आए बिन नामे जे होर खाना, चित रोग लगे तन खाए, नानक रस्ता सब चलाना। आपके ले मिलाए महला तीजा, जिया अंदर जियो सब।

हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे खाए, हर किसे त्यावो संत जनों जो अंते ले चलाए। हर कीर्त भगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए, जिना गुरमुख नाम आराध्या तिना दुख सुख ले जाए। जन नानक तृप्त है गाय गुण, हर दर्शन देहो सुवाए पौड़ी, गुर पूरे की दात नित देवे चढ़े सवाइया, तुस देवे आप दया।

आप छोड़ सरनाए पवे मन ले रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगे हों मैं विचों जाए। नानक सेवक सोई आखिए जे सत रहे लिवलाए महला तीजा। दात जोत सब

रावण हूँ ते अधिक सतर्पत छिन में गए दिलात। हर के संत सदा सिर पूजो जो हर नाम जपात, जिनको कृपा करत है गोविंद के सत्संग मिलात। मात पिता बनता सुख संपत अंत न चल संगात, कहत कबीर राम पद।

करो बिनु गुर अपने प्रीतम हर बार आन मिलावे सुन कन कोर शीतल मन मोरा लाल वती गुण गावे बरसपना मेरा।

जिस गुरबचनी मन मानिया हर वर नार तई सोहा गण मन तन प्रेम सुखानिया अवगन त्याग तई बैरागन अस्थिर वर सोहा गहरी सोग विजोग तिस कदे ना व्यापे हर प्रभ अपनी कृपा करी आवन जान ही मन में चले पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम जप गुरमुख तन सोहागन सच सही मलार महल आता।

का नाम न भाया, रतन पदार्थ पर हर क्या गया, जग को तप ही आया, दिष्टा कीत पे उत ही ते, उत ही मन समाया, अधिक स्वाद रोग अधिकाए।

जिन तन तिर का साब न जानिया साबिल को बदन कुमलानी कई निराशी कर्म की फांसी दिन गुर कर्म तुलानी बरस करा मेरा तुर कर आया बल जावा गुर अपने प्रीतम जिन हर प्रभ आन मिलाया रहाओ नौतन प्रीत सदा ठाकुर स्यों अंजन पगत सुहावी मुक्त पय गुर बरस दिखाया जुग जुग पगत सुभावी हम थारे त्रिभुवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिले निरंजन पाया दौड़ न पव जल फेरा अपने पिर हर देख विदासी तो तन साथ सिगारो अतुल निरंजन सो सत साची गुरमत नाम आधारो मुक्त पाई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पट पाई नानक राम नाम हृदय अंतर गुरमुख मेल मिलाई महला पहला मल्हार पर दारा पर तन पर लोबा हों मैं बिछै बिकार दुष्ट पाओ तज निंद पर आई काम क्रोध चंगार महल में बैठे अगम अपार पीतर अमृत सोई जन पावे जिस गुर का शब्द रतन आचार रहाओ दुख सुख दो शंकर।

कह न जाए क्या कर आंख बखानिए मारे रहाओ ऊपर बर समान पैल क्यों कर कहीं दो विचार बिन जेवा जो जपह आए कोई जाने कैसा नाओ कथनी बदनी रह निवरात सो बूझे हो जिस बात अंतर है निवरात।

मानस का तल तप में सासे सास दे पाया तल पाए ताके पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूट से साचे नाए मलार महला पहला दुख महुरा मारन हर

जिस तिर होआ तिसे समाना, चूक गया पासारा मलार महला तीजा। जिन्नी हुकम पछाणिया से मेले हो मैं शब्द जलाए, सच्ची भगत करे दिन राती सच रहे लिवलाए। सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुभाए, मन रे हुकम मन सुख होए प्रब पाना अपना भाव दा। जिस बच्चे तिस बिघन न कोई रहाओ, त्रै गुण सबा पात है ना हर भगत न भाए। गत मुक्त कदे न हो वही हो मैं कर्म कमाए, साहिब पावे सोथी है तय किरत फिराए। सतगुरु पेटिए मन मर रहे हर नाम वसे मने।

मेरा हर पद अगम अगोचर है, कीमत कह न जाए, गुरु प्रसादी बुझिए सब जयकार कमाए, नानक नाम चलाए तू हर हर दर शोभा पाए, मलार मैं ना पी जा, गुरमुख कोई गुर ना बूझे।

मेरे मन हर अमृत नाम ध्याए, सतगुरु पुरख मिले ना उपाय, हर नाम में सदा समाये रहाओ, मन मुख सदा विचले फिरे, कोई न किसी नाल, हो मैं बड़ा रोग है, सिर मारे जमकाल, गुरमत सत्संगत ना विचले, अंधन नाम समाल, सबना करता एक तू, नित कर देखे विचार, एक गुरमुख आप मिलाया, बक्षे पलट पंडार, तू आपे सब किस जानदा, किस आगे करी पुकार, हर हर नाम अमृत है नगरी पाया जाए, हम दिन हर हर उचरे, गुर के सह सुवाए, नानक नाम निधान है, नामे ही चुकलाए, मलार महला की जाए, गुर सावाही सदा सुख दाता।

सह नाम समाही हम दिन हर रविवार अंतरे सह समाध लगाही सतगुरु शब्द इह मन ते दिया हृदय साची बाणी मेरा प्रभु अर्थ न जाई लखिया गुरमुख अकथ कहानी आपके दया करे सुखदाता।

एक वसे मन स्वामी दूजा और न कोई, एको नाम अमृत है मीठा जग निर्मल सब सोई। नानक नाम प्रभु ते पाया जिनको तुर लिखिया होई। मलार महला तीजा गण गंधर्व नामे सब उदरे गुर का शब्द विचार। हों मैं मार सब मन वसाया।

तस बिन मैं और ना जाना, सतगुरु दिया बुझाई, मन मेरे नाम रहो लिवलाई, अदिष्ट अगोचर अपरंपर करता, गुर के शब्द हर

इहो हुकम कर श्रेष्ठ उपाय गुर प्रसादी बूजो भाई सदा रहो हर की शरणाई। सो पंडित जो तिहा गुणा की पंड उतारे अन दिन एको नाम बखाने।

होए अनदिन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक न होए मलार मैला तीजा प्रम प्रम जोन मन मुख परमाई जम काल मारे नित पत गवाई सतगुरु सेवा जम की काम चुकाई हर प्रभु मिलिया महल कर पाई प्राणी गुरमुख नाम ध्याए जन्म पदार्थ दुविधा खोया कौडी बदले जाए रहाओ कर कृपा गुरमुख लगे प्यारे अंतर पग पे हर हर उधार पवजल शब्द लंघावन हार दर साचे गुस्से सचार बहु कर्म करे सतगुरु नहीं पाया बिन गुर परम पूले बहुमाया हों मैं ममता दो मोह वधाया दूजे पाए मन मुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुर शब्दी जपिए सकलाहा हाजर हजूर हर वे परवाहा नानक गुरमुख नाम।

रसना नाम सब कोई कहे, सतगुर सेवे का नाम लहे, बंधन तोड़े मुक्त कर वह, गुर शब्दी अस्थिर कर वह, मेरे मन काहे रोष करी जय, लाहा कल गुराम नाम है गुरमत अंग।

सब आशा मनसा बंधन टूटे हर हर प्रभ कृपा धारी नैनी हर हर लागी तारी सतगुरु देख मेरा मन बिगस्यो जन हर पेट्यो बनवारी रहाओ जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर तिसके कुल लागी गारी हर तिसके कुल प्रसूत ना करियो किस विधवा कर मैं तारी हर हर आन मिलावो गुर साधु जिस

गुरपुर हूं मैं तीत तोरी, जन नानक मिले बनवारी। मल्हार महला चौथा, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती, ते करें उद्दम तूर साधु की ताई। किल विच मैल परे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की तूर गवाई। तीरथ असठ मज्जन नाई, सब संगत की तूर परी उड़ नेत्री, सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ। जहर नवी तपे पागी रथयानी, केदार थाप्यो महसारी। काशी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर जन शोभा पाई। जितने तीरथ देवी थापे, सब जितने लोचे तूर साधु की ताई। हर का संत मिले।

साधु तूर दे हर पार लंगाई, मल्हार महला चौथा किस जन को हर मीठ लगाना, जिस हर हर कृपा करे उसकी भूख दुख सब उतरे, जो हर गुण हर उतरे जप मन हर हर हर निस्तर, गुर के बचन करण सुन ध्यावे अव सागर पार करे रहाओ। किस जन के हम हाथ बिहाजे, जिस हर हर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाए, सब दुर्मत मेल हरे हर जन को हर भूख लगानी, जन तृप्त जा हर गुण विचरे, हर का जन हर जल का मीना हर विसरत फूट मरे, जिन ए प्रीत लाई सो जाने तो जाने जिस मन धरे, जन नानक हर देख सुख पावे सब तन की भूख करे।

के समाने ओ आप बीज आते ही खाते हर का चिन्ह सोई हर जनता हर आते जन में आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत करी त्रांत मलार महला चौथा अगम अगोचर नाम हर उत्तम।

सतगुरु को सद बल जाई, मन तन अर्प रखो सब आगे, गुरु चरणी चित लाई, अपनी कृपा करो गुरु पूरे, आपे लहो मिलाई, हम लोह गुरु नाव बोहे था, नानक पार लंगाई, मलार महला चौथा।

निरसाद संगत हर तोर रहाओ। हर तन बनजो हर तन संचो, जिस लागत है नहीं चोर। पात्रक मोर बोलत दिन राती, सुन कन हर की कोर। जो बोलत है मृग मीन पंखेरु, सो बिन हर जापत है नहीं और। नानक जन हर कीरत गाई, छूट गयो जम का सब सोर। मलार महला चौथा, राम राम बोल बोल खोजते बड़ भागी। हर का पंथ को बतावे, हौंता कह पाई लागी रहाओ। हर हमारो मीत सखाई, हम हर स्यों प्रीत लागी। हर हम गावे हर हम बोले, और दुतिया प्रीत हम त्यागी। मन मोहन मोरो प्रीतम राम, हर परमानंद बैरागी। हर देखे जीवत है नानक, एक निमक पलो मुख लागी। राग मल्हार महला पंजवा, चौथ दे कर पहला एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद, क्या तू सोचे क्या तू चितवे, क्या तू करे उपाय। ताको कहो परवाह काहू की, जी गोपाल सहाय।

खीर आधार बार्क जब होता बिन खीरे रह न जाई सार समाल माता मुख नीरे तब हो तृप्त अघाई हम बार्क पिता प्रभदाता फूले बार्क अनेक लख बरिया अनठौर नाही जय जाता रहाओ चंचल मत बार्क बपरे की सर्प अग्न कर मेले माता पिता कंठ लाए राखे अनद सहज तब खेले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी इस बारिक भूख कैसी नवनिध नाम निधान गृह तेरे मन बांचे।

नानक बारिक दर्श प्रभ चाहे मोहि हृदय बसे नित चरना मनार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करया सजियो सगल अंदेशा कार्य सगल अरंभियो करका ठाकुर का भरोसा सुनिए बाजे बाज सुहावी और पया मैं प्रेम मुख पेखे गृह मंगल सुहावी रहाओ मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संता जाए खोजत खोजत मैं पावन मिलियो भगत करो निर पाए जब प्रेम आए बसे

गुर कारज हमरे पूरे कहो नानक वर मिलिया सुख दाता छोड़ न जाई दूरे मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोक जठर को परते कृपा निध छोड़ आम को पूजे आत्म का सी हरते हर बिसरते दुख दुख मरते अनेक बार प्रमय बहुजोनी एक न काहू तरते रहाओ।

अगन में जरते नानक शरण चरण कमलन की तुम ना डारो प्रभ करते राग मलार महला पंजवा दुख दे कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी हौं इक खिन तिस बिन रह ना सको प्रीत हमारी लागी रहाओ उनके संग मोहे

कृपाल पै बड़ पागी मां सुख पाया बर न फाको रेन नानक जन पागी मल्हार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई सगल सहेली सुख पर सूती जे कर लाल बसाई रहाओ मोहे अवगन प्रभु सदा दयाला मोहे निर्गुण क्या चतुराई करो बराबर जो प्रेम संग राती एहो मैं कीटी ठाई तई निमाणी शरण एकता की गुरु सब गुरु पुरुष सुखदाई एक निमख में मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रहन बिहाई मल्हार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल न लाओ बरस प्यारे मने सदारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ।

कहु नानक मेरो बन्यो सुहागो तप शोभा तले अचारे मल्हार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम ध्याए दुख दर्द बिन सह पव सागर गुर की मूरत हृदय बसाए रहाओ दुश्मन हते दोखी सब व्यापे हर शरणाई आया राख नहारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलवित सब काटे नाम निर्मल मन दिया गुण निधान नानक मन वस्या बहुर दुख न थिया मल्हार महला पंजवा प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दी जय दयाल अनुग्रह तारे रहाओ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आशा संत जना तह करो बिनंती मन दर्शन की प्यासा बिछड़त मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दी जय नाम आधार जीवन तन नानक प्रभु मेरे कृपा की जय मल्हार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यो बने आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाओ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नवे निध पाई उदोत पयो पूरन पावी।

सुख उपजे दुख सगल विनाशे, पार ब्रह्म लिवलाई करो संसार कथन पै सागर, हर नानक चरण ध्याई मल्हार महला पंजवा, तन हर बरस सगल जग छाया, तय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाओ, मिटे कलेश त्रिसंग सब बूजी, पार ब्रह्म ध्याया साध संग जन्म मरण निवारे, बहुर न कतु धाया मन तन नाम निरंजन रातो, चरण कमल लिव लाया अंगीकार कियो प्रभ अपने, नानक दास शरणाया मलार महला पंजवा, विचरत क्यों जीवे ओए जीवन, चितह उलास आस मिलवे की, चरण कमल रस पीवन रहाओ, जिनको प्यास तुम्हारी प्रीतम तिनको अंतर नाही, जिनको बिसरे मेरो राम प्यारा से मुए मर जाही, मन तन रव रहा जगदीशर देखत सवा हजूरे, नानक रव रहो सब अंतर सब रहा पर पूरे, मल्हार महला पंजवा, हर के भजन कौन कौन न तारे, खग तन मीन तन मृग तन ग्राहा, तन साधु संग उदारे रहाओ, देव कुल दैत कुल जख किन्नर नर सागर उतरे पारे, जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बिदारे, काम क्रोध महा बिख्या रस इनते पै निरारे, दीन दयाल जपे करुणा में नानक सद बलिहारे, मल्हार महला पंजवा, आज मैं बैस्यो हर हाट नाम रास सांझी कर जनस्यो, जाऊं न जम कै।

कल कलेस मिटे दास मानक बहुरना जोनी माट मलार महला पंजवा बहुविध माया मोह हिरानो कोट मदे को बिरला सेवक पूरन भगत तिरानो रहाओ इत उत डोल डोल श्रम पायो तन तन होत बिरानो।

नाथ दीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओट जीवे दास तेरे नानक प्रभु शरणाई। मलार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवीजै, दर्श प्यास मेरो मन मोयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ। खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, तार अनग्रो स्वामी मेरे नाम महारस की जय। त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल को कृपा की जय, कर गह लिहो दास अपने को, नानक अपनों की जय। मलार महला पंजवा, प्रभ को भगत बछल बिरदायो, निंदक मार चरण तल दीने, अपनो जस वरतायो रहा।

अंगीकार कियो मेरे स्वामी, प्रंपो में सुखायो महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो, राग मल्हार महला पंजवा, चौप दे कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद गुरुमुख दीसै ब्रह्म प्रसार, गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार, गुरुमुख नाद वेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार। मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाये, गुर उपदेश हर हृदय वस्यो, सांस गिरास अपना खसम त्याय।

गुर पेटे ना हुए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जाको कर्म लिखिया तुर आए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सतगुर शरणाई, नानक गुर पार।

जाए कर कृपा पूरन सुखदाते तुमरी कृपा से तू चित आवे आठ पैर तेरे रंगराते रहाओ गावन सुनन सब तेरा भाना।

ज्ञान सदा सदा जाइए कुर्बान। काल गवाया करते आप सदा सदा मन किसनो जाप। दृष्ट तार राखे सब जंत गुण गावो नित नित भगवंत। एको करता आपे आप हर के भगत जाने प्रताप। नावे की पैज रखदा आया नानक बोले तिसका बोलाया। मलार महला पंजवा गुर शरणाई सगल निधान। साची दरगे पाये मान प्रम को दुख दर्द सब जाए। साध संग सब हर गुण गाए। मन मेरे गुर पूरा सालाए। नाम निदान जपो दिन राती। मन चिंदे फल पाए रहाओ। सत गुर जेव

सो मन निर्मल जो गुर संग राची गुर पूरा पाए वडवाग काम क्रोध लोभ मन ते त्याग कर कृपा गुर चरण निवास नानक की प्रभु सत अरदास राग मलार।

नानक प्रयो प्रीतम किया मलार महला पंजवा मन कने प्रमे बने उमक तरस चाले प्रभ मिलबे की चाहा रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे हज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हु हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललित गुण अनक भांत बहुविद रूप दिखावनी नीकी गिर तर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मल्हार महला पंजवा गुर प्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्स सफलियो दर्स पेखियो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विषम विषम भई अब कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तो हाँ।

संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग तन तोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया। मल्हार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ के संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पय दयाल बिनस गए बिखे जंजाल सात जना के चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत। मल्हार महला पंजवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरण सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभु देन।

राई शास्त्रिक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे बिलप करे बिल लाई कान हर कोर दसो दिस बरसे बिन जल प्यास न जाई मीन निवास उपजे जल ही ते सुख दुख पूर्व कमाई खिन तिल रह ना सके पल जल बिन मरण जीवन तिस्ताई तन वाडी फिर देश निवासी सच्चे गुर पै शब्द पठाई।

अपना का सवारो आपे सुखदाते गोसाई गुर प्रसाद कर ही फिर पाया कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनेक जतन कर रह न पावे आच पाच टर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सत बार न लागे बवरे हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

खिनताई नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सर्पन कर कर माही उल्टी नदी कहाँ कर तरवर सर्पन डसे दूजा मन माही गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिख्या गुरमत जारी मन तन हेम पे सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाते तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत राखो साच मिले गोपाला बादी तंग अंग नहीं सूजे बदिक कर्म कमावे सतगुरु मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण देह साच बिन काची मैं पूछो गुर अपना नानक सो प्रभु प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावे सारंग सबद सुहाई रैन बबीहा बोलियो मेरी माई रहाओ त्रै स्यों प्रीत न उल्टे कबहू जो तै पावे साई नींद गई हो मैं तन साकी सच मत हृदय समाई।

जुड़कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा ते मगना चालनहार, जित कर वसे तू है बिद जाने भी जो महल न जापे, सतगुर बाजो समझ न होवी, सब जग दबिया छापे, करण तलाव करे बिलला तो बिन गुरु नाम न जापे, पल पंकज में नाम छड़ाए जे गुर सबक सिंजापे, एक मूरख अंधे मुग्ध गवार, एक सतगुर के पै नाम आधार, साची बाणी मीठी अमृत धार, जिन पीती तिस मोख द्वार, नाम पै

जो तुर लिखिया सो मेटना न जाए, हुक्मे बांदा कार कमाए, एक शब्द राचे सत समाए, चौ दिस हुक्म वर्ते प्रव तेरा, चौ दिस नाम पतालंग, सब में शब्द वर्ते प्रव साचा, कर्म मिले बयालंग, जामन मरना दिसे सिर उबो, खुदया निद्रा कालंग, नानक नाम मिले मन भावे, साची नगर रसालंग, मलार महला पहला, मरण मुक्त गत सार न जाने, कंठे बैठी गुर शब्द पछाने, तू कैसे आ

मन मेरे हर हर नाम सितलाए, सतगुर ते हर पाई है साचा, हर स्यों रह समाए रहाओ। सतगुर ते ज्ञान उपजे ता ए संसा जाए, सतगुर ते हर बुझिए गर्भ जोनी नह पाए।

वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे विचार बिन नावे जम दंड सहै मर्जन में वारो वार सतगुर पेटे मुक्त होए पाए मोख द्वार मन रे सतगुर सेव समाए वड्डे भाग गुर पूरा पाया हर हर नाम ते आए रहाओ हर अपने पाने सृष्ट उपाय हर आपे दे आधार हर अपने भाने मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर के

बिन सतगुर किने न पायो मन वे को पतियाए हर कृपा ते सतगुर पाई है ते पैसे सुवाए मन मुख परम पुलाए।

है। हर सिंह रहा समाये मल्हार महल आतीजा अष्टपदी कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हर हर कृपा करे गुर की कारे लाए दुख पल्लर हर नाम बसाए साची गत साचे चित लाए।

चित कट ना मैं नाम निवास, हो मैं भगत करे सब कोए, ना मन पीजे ना सुखोए, कह कह कहन आप जनाए, बिरथी भगत सब जन्म गवाए, से भगत सतगुरु मन भाए, अन दिन नाम रहे लिवलाए।

नानक साचे साच समाए राग मल्हार छंत मैला पंजवां इको ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते, जन संग राते दिन सराते एक निमख मनो ना विसरै। गोपाल गुण निद सदा संगे सर्व गुण जगदीसरै। मन मोह लीना चरण संगे नाम रस जन माते। नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मदे जाते। प्रीतम तेरी गत अगम अपारे महा पतित तुम तारे। पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्श प्यास हर जियो आप लिहो समारे। हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना। जल मीन प्रभ जियो एक तू है पिन आन ना जानिए। गह पूजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मानिए। तज साध संगे

माया बिनवंत नानक शरण तिनकी जिन्नी हर हर ध्याया वार मलार की महला पहला राणी कैलाश तथा मौल दे की तुन इको ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा गुरु मिलिए मन रहसी है ज्यों उठे तरण सिगार शब्द से हरियावली सर परे सबर ताल अंदर रचे सच रंग ज्यों मंजी छे लाल कमल विग से सच

काल खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल एनी अखी नदर न आवई जिचर

तू लोड लहो जित वन्य रोगा कान जित दारू रोग उठिए तन सुख वसे आए रोग गवाए अपना का नानक वैद सदाए पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सवाया ईस महेश्वर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तन दै लाए आप छपाया।

वर्षे लाए झड़ी नानक पाने चले कंत के सो माने सदा रली महला तीजा। क्या उठ उठ देखो बपने इसमें गए हक किसना।

करे नानक नगरी बाहरी सब करण पलाह करे पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस तर्क न लागे वार आडाने आकाश तर खिन में टाहे उसारण हार।

गुरमुख पक्षों लेखा निबड़े बक्षे सिर पंडार ओठे हाथ ना पड़े कूक ना सुनिए पुकार ओठे सतगुरु बेली होवे पढ़ ले अंती वार एना जनता नो हो सेवा नहीं सतगुरु सिर करतार। श्लोक महला तीजा बाबी हा जिसनो तू पुकार दा तिसनो लोचे सब कोए अपनी कृपा करके वससी वन ते हरया होए गुर प्रसादी पाये विरला बूझे कोए बैंदिया उठदिया नित बिहाइए सदा सदा सुख होए नानक अमृत सद ही वर

जो हर चरणी रहे लिवलाए, जो जल में कमल अलिप्त है ऐसी बंत बनाए, से सुखिए सदा सोने जिन विच्चों आप गवाए, तिन सोग विजोग कदे नहीं जो हर के अंक

नानक तिनका आखिया आप सुने, जे लयन पन्ने पाए महला तीजा, अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार, गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उधार, हर अमृत पीवे सवा रंग राते हो मैं तृष्णा मार, अमृत हर का नाम है वरसे कृपा धार, नानक गुरमुख नगरी आया हर आत्म राम मुरार।

गुण में रह समाए, अपना आप आप तोलसी आपे मिले मिलाए, जिसकी कीमत ना पवे कहना किछु ना जाए। हों बलिहारी गुरे अपने, जिन सच्ची बूझ दिती बुझाए, जगत मुसे अमृत लुटी है मन मुख बूझ ना पाए। विण नामे नाल ना चलसी जासी जन्म गवाए, गुरमती जागे तिन्नी कर रखिया दूता का किछ ना वसाए। श्लोक महला तीजा, बाबी हा ना बिललाए ना तरसाए, इहो मन खसम का हुक्म मन, नानक हुक्म मने तिख उतरे चढ़े चवक गलवन।

नानक गुरमुख तिन सोजी पई, जिन वस्या मन माहे पौड़ी, नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत न पाया, गुरमुख नाम

नील अनिल अगम सरजीत सवाया, अगन उपाई वाद पुख तिहाया, दुनिया कैसर काल दूजा भाया, रखे रखन हार जिन सबद बुझाया। श्लोक महला तीजा, इहो जल सब तै वरसवा, वरसै पाए सुवाए, से बिरखा हरि आवले।

अब तन बहुत उपजे जा सहो करे रजाए जित खा दे मन तृप्ति है जिया जुगत समाए ये तन करते का खेल है कदे आवे कदे जाए ज्ञानिया का तन नाम है सभी रह समाए नानक जिनको नजर करे ता यो तन पल्ले पाए पौड़ी आप कराए करे आप हों कैसो करी पुकार आपे लेखा मंगसी आप कराए कार जो

सब में एक वर्त दा। फिर सिर करे विचार, गुरुमुख आप विचारी है, लगे सच प्यार, नानक किसनो आखी है, आपे देवनहार। श्लोक महला तीजा, बाबी हा इहो जगत है, मत को परम फुलाए, इहो बाबी हा पशु है, किसनो बूजन ना है। अमृत हर का नाम है, जित पीते तिख जाए, नानक गुरुमुख जिन पिया, तिन बहुर न लागी आए। महला तीजा, मल्हार शीतल राग है।

आदि को विरला बूझे, सो जन मुक्त सदा होए। पौड़ी सच्चा वे परवाहो, इको तू धनी, तू सब किछ आपे आप, दूजे किस गणी। मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुदमणि, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी। सतगुर सेवे अपना आया किस गणी, जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी। मनमुख मोह गुबार ज्यो पुल्ला मंजवाणी, कट्टे पाप असंख नामे इक कणी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा खसमे का महल न जानी, महल देख अरदास पाए। अपने पाने बहुता बोले, बोलिया थाए न पाए। खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए। बाबी हा क्या पुड़ा, जग तै की तिख जाए। महला तीजा, बाबी हा किन्नी रैन बोलिया, सहजे सच सुभाए। क्यों जल मेरा जियो है, जल बिन रहन न जाए। गुरु शब्दी जल पाई है, विच्चों आप गवाए। नानक जिस बिन चसा न जीवई, सो सतगुरु दिया मिलाए। पौड़ी खंड पताल असंख।

सुबाने संत धन दूजे पट खोई एक दाते एक मंगते सगना सिर सोई विणना में बाजारिया पीहावल होई कूड़ निखुटे नानका सच करे सो होई। श्लोक महला तीजा बाबी हा गुणवंती महल पाया औ गुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसे गुरुमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो गई नदरी नगर निहाल नानक नाम रते सहजे मिले शब्द गुरु कै काल। महला तीजा बाबी हा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास न उतरे छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निधान नानक गुरमुख बच ले अंत बेली होए भगवान पौड़ी।

सच्चा अलख अपार तू गुणदाता निधान है असी अवगण यार जिस बक्से सो पाए सी गुर सबदी विचार। श्लोक महला पंजवा रात न बिहावी सापता जिना विसरै नाओ राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा रतन जवे हर मान का हबे मणि मखन नानक जो प्रभु पाया सच्चे दर सोहन पौड़ी सच्चा सतगुर शेर सच समा लिया अंत खलोआ आए जे सतगुर अगे कालिया कोई न सके जमताल सच्चा रखवा लिया गुरसा की जोत जगाए दीवा बालिया मन मुख बिन नावे कूड़ियार फिरे बेतालिया पशु मानस चंप लेते अंदरों कालिया सबो वरते सच सच्चे सबर निहालिया नानक नाम निधान है पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा बाबी है हुकुम पछाणिया गुर कैसे सुवाए मेघ वर्षे दया कर गुड़ी छे बरलाए बाबी है कूक पुकार रह गई सुख वसिया मन आए नानक सो साल आई है जे दिन दा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा चात्रिक तू ना जानही क्या तुद विच तिखा है कित पीते तिख जाए दूजे पाए परम्या अमृत जल पल्ले ना पाए नजर करे जे अपनी ता सतगुर मिले सुवाए नानक सतगुर ते अमृत जल पाया सहजे रहा समाए पौड़ी। एक वन खंड बैसे जाए सदना दे वही एक पाला चक्कर पान शीतल जल हे वही एक पसम चढ़ा में अंग मैलना तो वही एक जटा बिकट बिकराल कुल कर खो वही एक मगन फिरे दिन रात नींद ना सो वही एक अग्न जला में अंग आप विगो वही गिणना में तन छार क्या कह रो वही सोहन खसम द्वार जे सतगुरु से वही। श्लोक महला तीजा बाबी हा अमृत वेले बोलिया।

उजड़ पाए तुरो खुआया, तिन मुख नाही नाम ना तीरथ नाया, हथी सिर खुहाए ना पद कराया, कुचल रहे दिन रात शब्द ना पाया, तिन जात ना पक्ष ना कर्म जन्म गवाया, मन झूठे वे जात झूठा खाया, बिन शब्द आचा

गुर के सबद सलाही है अंतर प्रेम प्यार विन प्रीति पगत न हो गई विन सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभु सब तुझ सेव दे एक ताड़ी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार श्लोक महला पहला राती काल कटे दिन काल छिजे काया होए पराल वर्तन वर्त्या सर्व जिंजाल पुलिया चुक गया तपताल अंधा चक चक

मूरख पुख ना जाए, दूजे सबको लग विगुता, बिन सतगुरु बूझ ना पाए, सतगुरु सेवे सो सुख पाए, जिसनो कृपा करे रजाए। श्लोक महला पहला, सरम करम दो नानका, जे तन पल्ले पाए, सो तन मित्र न कांडी है, जित सिर चोटा खाए। जिनके पल्ले तन वसे, तिनका नाव फकीर, जिनके हृदय तू वसे, ते नर गुणी गहीर। महला पहला, दुखी दुनी सहेड़ी है, जाए तन लगे।

दया जानिए, कौजल तारण हार शब्द पछानिए, चोर जार जुआर पीड़े खानिए, निंदक लाए तबार मिले हरवानिए, गुरमुख सत समाए सो दरगे जानिए। श्लोक महला दूजा, नाव फकीर है पातशाहो मूर्ख पंडित नाओ, अंधे का नाव पारखू एवं करे गुआओ, इल्लत का नाव चौधरी पूरी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानिए कल का एहो न्याओ। महला पहला, हरना बाजा कैसिकदारा एना तरिया ना।

मन समाया एक पगवा वेश कर परम दे बिन सतगुरु किने न पाया देश विसंतर पर थके तुद अंदर आप लुकाया गुरु का शब्द रतन है कर चानन आप दिखाया अपना आप पछाणिया गुरमती सच समाया आवागौन बजारिया बाजार जिनी रचाया एक फिर सच्चा सलाहना जिन मन सच्चा भाया स्वरूप महला पहला नानक माया।

तू है मन भाया फाल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाना कन चलिया नचसी सतगुर बोत बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे पलहाड़ अंदिन पक्षी फासा चुग गए चोग हुक्मी छुटसी करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला कर्म।

कोतवाल सो कराश्री सो ऐसा राजा श्री नरहरि जाचे कालकुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डावणा जिन विश्व संसार राचीले जाके कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सारखा ज्ञान पाखीले पाप पुण्य जाचे दांगिया।

कही हा पियो कहो रविदास पयो जल देखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। राग का नरा चौक दे महला चौथा।

अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। मेरा मन साध जना मिल हरिया, हों बल बल बल बल साध जना को मिल संगत पार उतरिया रहा। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, हम साध जना पद परिया, तन तन साध जिन हर प्रभ जानिया, मिल साधु पत उधरिया। मनुआ चले चले बहु बहु विद, मिल साधु वस गत करिया, जो जल तंत पसारियो बगत ग्रस, मीना वसगत खरिया। हर के संत संत पालनी के, मिल संत जना मल रहिया, हो मैं दुर्ग गया सबनी कर, जो साबुन कातर करिया। मस्तक लीलात लिखिया तुर ठाकुर, गुर सत गुर चरण उर धरिया, सब दालद दुख पंज प्रभ पाया।

हम अचित अचेत न जाने गतमित गुर किए सुचित चितेन प्रभ दीन दयाल कियो अंगीकृत मन हर हर नाम जपेन हर के संत मिले।

किल बिख दैन पए खिन अंतर, टूट गए माया के फास। क्या हम किर्म क्या कर्म कमावे, मूरख मुग्ध

मेरे मन राम नाम जपियो गुरवाक, हर हर कृपा करी जगदीशर, दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक राव। नाना रूप रंग हर के रे, कट कट राम रवियो गुपलाक, हर के संत मिले हर प्रगटे, उगर गए बिखिया के ताक। संत जना की बहुत बहुत शोभा, जिन उतारियो हर रस कृताक, हर के संत मिले हर मिलिया, जैसे गऊ देख बछराक, हर के संत जना

राम रविया कट अंतर। अब फिर राम रविया रंग प्रीत, हर के संत संत जननी के, जिन मिलिया मन रंग रंगीत, हर रंग लहे ना उतरे कबहू, हर हर जाए मिले हर प्रीत, हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत, हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नानक पतित पुनीत, कानड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम जगन्नाथ, कूमन केर परे बिख बिखिया, सतगुर काढ़ लिए दे हाथ, रहाओ स्वामी अभय निरंजन नरहर, तुम राख ले हो हम पापी पात, काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते, काष्ट लो तरे संग साथ, तुम वड पुरख बड अगम अगोचर, हम टूट रहे पाई नहीं हाथ, तू परे परे अपरंपर स्वामी, तू आपन जाने आप जगन्नाथ, अदृष्ट अगोचर नाम ते आए, सत्संगत मिल साधु पात, हर हर कथा सुनी मिल संगत, हर हर जप्यो अकथ कत्कात, हमरे प्रभ जगदीश गुसाई, हम राख ले हो जगन्नाथ, जन नानक दास दासन को प्रभ करो कृपा।

राम राम लाल तुमरी जी अकत कथा तू तू तू ही जाने हौ हर जप पई निहाल निहाल निहाल हमरे हर प्राण सखा।

गुण गावे गुरमत हो बलबले हो बलबले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी की चै लख बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस राव हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे जप जापो जगदीश तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिनको हो कुमकुमे कुमकुम जीस हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे सो करे जे तुद पावीस जन नानक अमृत पिया गुरमती तन तन तन तन तन गुरु साबीस कानड़ा महला चौथा पज रामो मन राम जिस रूप ना रेख वडाम सत संगत मिल पज राम बड हो भाग मथाम रहाओ जित गृह मंदर हर होत जास तित तर आनंदो आनंद पज राम राम राम राम नाम गुण गावो हर प्रीतम उपदेश गुरु गुर सतगुरा सुख होत हर हरे हर हरे हरे तज राम राम राम सब शिष्ट तार हर तुम

महला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पग हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म किरिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाइए हर ब्रह्म जोग हर पाइए सत संगति उपदेश गुरु संत जना खोल खोल कप

काट कटे काट हर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो सुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित है विकार सुख पाई है हर पज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यो छोए पारस मनहूर भय कंचन त्यों पतित जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधा दो ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार बरन चार

सुख पावे जप हर हर नाम निधान। उस्तत करे प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुरु सतगुरु भगवान। जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावे ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान। कानड़ा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। गाये गुण गोपाल कृपा निद दुख विदारण सुख दाते सतगुर जा को पेटत होए।

जाको सतगुर अपना राखे, सो जन हर रस रसना चाखे, कहो नानक गुर कीनी माया, हालत पलत मुख उजल भया, कानड़ा महला पन्नवा, आराधो तुझे स्वामी अपने, उठत बैठत सोवत जागत, सास सास सास हर जपने।

कल युग में पाया जिन नाव कानड़ा महला पंजवा कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना अनेक बार कर बंदन संतन हुआ चरण गोविंद जी के बसना रहाओ अनेक पाप कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर ध्यावो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत में मन पर बोदा कृष्ण ना बूजी बहु रंग माया नाम लेत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब पै दयाल सहु नानक कौ छूटे जंजाल कानड़ा महला पंजवा ऐसी मांग गोविंद ते पहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो

अज्ञान परम बिन सै दुख डेरा, जाके हृदय बसे गुर पैरा, साध संग रंग प्रभ त्याया, कहो नानक तिन पूरा पाया, कानड़ा महला पंजवा, भगत भगतन हूँ बने।

अनेक स्वांग का छे पेख तारी, जैसो सा तैसो दृष्टारी, कहन कहावन सगल जंजार, नानक दास सच करनी सार, कानड़ा महला पंजवा, तेरो जन हर जत सुनत उमायो।

ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यों परदा लायो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाध समायो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन पेटक होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो कांटे रोग पे मन निर्मल।

नानक लिख नामायो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पर आई जब ते साथ संगत मोय पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो।

तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय ले धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल सा पौ जल तरना, अभय दान नाम हर पायो, सिर डारियो नानक संत चरना। कानड़ा महला पन्यवा, साध सरन चरण चित लाया।

सुख पाया तृष्णा सब बुझी है, सांस पाई गुण गाया बिन बूझे पशु की न्याई, प्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी, नानक सहज समाया कानड़ा महला पंजवा, हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत, सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आस होत पू

सतगुरु प्रसाद कतिए संत संग प्रभ ज्ञान पूरन परम ज्योत परमेश्वर सिमरत पाइए मान।

महा पवित्र संत आसन मिल संग गोविंद ध्याए, सगल त्याग शरण आयो नानक लेहो मिलाए। कानड़ा महला पंजवा पेख पेख बिगसाओ।

हर हर मित कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नाथे रिद्ध।

उदरे हर सिमरत नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निज पतित उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो कानड़ा महला पंजवा तन ओह प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूरन बड़ पागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोह त्यागी कोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाओ अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूरन रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर

ऊंच नीच सब पेक समानो मुख बकनो मन मान रहाओ। कट कट पूर रहे सुख सागर पै पंजन मेरे प्राण। मने प्रगास पयो प्रमनास्यो मंत्र दियो गुरकान। करत रहे कर्तज्ञ करुणा में अंतर जामी ज्ञान। आठ पहर नानक जस गावे मांगन को हरदान। कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन को कई केत। ऐसो जन बिरलो है सेवक।

कहु नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भय ते संगे, मोनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनिक पाप की एक जाली, ताकि गंठ नहीं चोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण अधारे रहाओ, नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवारे, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विषम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभ पय कृपाला, मगन पय हीरे दरसारे, कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, देखत सुनत सबन कै संगे, होरे काज बुरु कै फेरो, रहाओ, नाम बिना जे तो लपतायो, कछु नहीं नाही कत्तेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोयो परम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दतार बिसेरो।

पयो परगास अनद उजियारा तय समाज समायो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक ले लायो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप पीरे बिन सह मोह परम दुख पीरे रहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत कत पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर पेटत नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मने सुख पाये साध जना मिल हर जस गाये।

मेरे मन प्रीत चरण प्रभ प्रसन्न, रसना हर हर भोजन तृप्तानी, अखियन कौ संतोख प्रभ दर्शन रहाओ, करनन पूर रहो जस प्रीतम, कलमल दोख सगल मल हरसन, पावन तावन स्वामी सुख पंथा, अंग संग काया संत सरसन।

अंधकोर सागर नहीं मरसन, कानड़ा महला पंजवा, कोकत कपट खपट खल गरजत, मरजत मीच अनक बरिया रहाओ, अहंग मत अनरत पुमित हित प्रीतम, देखत परमत लाख गरिया, अनित व्यवहार अचार विधहीनत, मम मद मात कोप जरिया, करुण कृपाल गोपाल दीन बंद, नानक उदर शरण परिया, कानड़ा महला पंजवा, जी प्राण मान दाता, हर विश्व

अविलोको राम को मुखार बिंद, खोजत खोजत रतन पायो, बिसरी सब चिंद रहाओ, चरण कमल हृदय तार, उतरिया दुख मंद, राज तन परवार मेरे, सर्व सो गोविंद, साध संगम लाभ पायो, नानक फिर ना मरंद, कानड़ा मेला पंजवा, कर पंजवा, इको अंकार।

पूजा जे हर पावास। माटी की ए पुत्री जोरी क्या ए कर्म कमास। प्रभ बा पकड़ जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास। अवर ओट में कोई न सूजे इक हर की ओट में आस। क्या दीन करे अरदास जो सब कट प्रभु ने।

जगत उदाहरण नाम पै तेरे, नव निद नाम निदान हर केरे, हर रंग रंग रंग अनुपेरे, काहे रे मन मोहे मगनेरे, नैनो देख साध दरतेरे, सो पावे जिस लिखत लिलेरे, रहाओ सेवो साध संत चरनेरे, बाँचो तूर पवित्र करेरे, असत मज्जन मैल कटेरे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे, किच संग न चार

बरना साको एक तुले रह, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, मिल नानक देव जगत गुर के रह। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन।

मान मोह त्याग छोड़ो तौ नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बरत नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चकर करम तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अत रहत बिटंगा हौ रोग व्यापै चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा।

को पाओ, रहाओ। कटन खटन जटन होमन नाही दंड तार सुआओ, जतन पांसन तपन प्रमन अनिक कथन कथन।

पतित पावन पगत बचल पै हरन तारन तरन रहाओ। नैन तिपते दर्श पेख जस तोख सुनत करन, प्राण नाथ अनाथ दाते दीन गोविंद सरन, आस पूरन दुख विनाशन गही ओट नानक।

कनिक मंदर पात सेज सकी मोहि नाहि इन स्यों तात मुक्त लाल अनिक भोग बिन नाम नानक हात रूखो भोजन पूम सैन।

जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंकार राव जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सो जन उदरे जिसे उदारो आप बिनस जाए।

अनमोही पंच दोही उर्ज निकट बत्यो ताकि शरण साधुआ दूत संग निवार रहाओ। कोट जन्म जोन प्रम्यो हार पर्यो द्वार कृपा गोविंद पई मिल्यो नाम आधार दुलभ जन्म सफल नानक पव उतार पार। कानड़ा मैला पंजवा कर यारवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सहज सुभाए आपने आए कछु ना जानो कछु दिखाए प्रभ मिल्यो सुख बाले पोले रहाओ। संजोग मिलाए साध संगाए कथु ना जाए करें बसाए गुण निधान प्रगट्यो ए चोले चरण लुभाए आन सजाए थान सनाए सर्व समाए।

रसक रसक नानक गुण बोलै कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमित रूप अगम अगोचर रहो सर्व समाई रहाओ कहन पवन नाही पायो पायो अनेक उकत चतुराई जतन जतन अनेक उपावरे तो मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निध जन नानक संत रे नाई कानड़ा महला पंजवा माई सिमरत राम राम राम।

मृत मृत निकट निकट सदा है। हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड, बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई। कानड़ा अष्टपदिया।

मन गुरमत नाम समावे गो, नाम सुने नामो मन भावे, नामे ही तृप्तावे गो। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पात बनावे गो। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवे गो। माया पटल पटल है भारी, कर कूमन केर कुलावे गो। पाप विकार मनूर सब भारे, बिख दुख कर करे।

अज्ञान लाए सवालिया, गुर ज्ञाने लाए जगावे गो। नानक पाणे अपने ज्यो पावे, तिवें चलावे गो। कानड़ा महला चौथा, जप मन हर हर नाम तरावे गो। जो जो जपे

मिल सतगुरु नाम से आवै गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मल लह जावै गो। ज्यो लोहा तरयो संग कास्ट लग, शब्द गुरु हर पावै गो। संगत संत मिलो सत संगत, मिल संगत हर रस आवै गो। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावै गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर रस मीठ लगावै गो। खिन खिन नाम दे वडियाई, सतगुरु उपदेश समावै गो। भगत जना को सदा निव रही है।

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो जो जो भगत होए सो पूजो परमन परम चुकावे गो जात न जात देख मत परमो सुख जनक पगी।

होए लख कोटि लख कोटि कोट से आवे गोराओ सहस फनी जप्यो सेख ना गए हर जपत्या अंत ना पावे गो तू अथाओ अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावे गो जिन तू जप्यो तेई जननी के हर जप्यो कौ

सतगुर बचन बचन है सतगुर पादर मुक्त जनावे गो शासन सास सास बल पाई है ने शासन नाम से आवे गो गुर प्रसादी हो मैं बूझे तो गुरमत नाम समावे गो सतगुर दाता।

मन गुरमत चाल चलावे गो, ज्यो मैगल मस्त दी जय तल कुंडे, गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो रहाओ। चल तो चले चले दह दह दिस, गुर राखे हर लिवलावे गो, सतगुर शब्द दे रिद अंतर, मुख अमृत नाम चुआवे गो। बिसियर बिसु परे है पूरन, गुर गरुड़ शब्द मुख पावे गो, माया पुयंग तिस नीड़ नावे, दिख चार चार लिवलावे गो। स्वान लोभ नगर में सबला, गुरखिन में मार कडावे गो, सत संतोख धर्म आन राखे, हर नगर

हर हर हर हर हर सर सेवे तीन दरगे मान दिवावे गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिलावे गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचय नाम दियावे गो हर हर रूप हर रूपो होवे हर जन को पूज करावे गो साकत नर सत

बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड भाग दर्शन पाए मिल साधु नित पजै नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए सत संग पाये, हर से आये बहुर दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन पूर बांचे, हर दर्श सहज समायन, सगले जंत पजो गोपाले, जप तप संजम पूरन घाले, नित पजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सवाया, गोविंद गाये नित ध्याये, परवान सोई आया, जप ताप संजम हर हर निरंजन, गोविंद तन संग चाले, बिनवंत नानक कर दया दीजे, हर रतन बांधो पाले, मंगल चार चोज आनंदा, कर कृपा मिले परमा।

गोविंद गोविंद गुरमत ध्याये सादर गए पाये मान। गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान। नानक गुरु गोविंद हर जित मिल हर पाया ना।

सतसंगत सतगुर तन तनो तन तन तनो जित मिल हर गुण बुलोगिया सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लोगिया। श्लोक महला चौथा। हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोय हौमे ममता नाप होए दुर्मत कड्डे धोए नानक अमदिन गुण उचरे जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा। हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए हर आपे आप वरतदा हर जेवड अवरना कोए जो हर प्रभ पावे सो थिए जो हर प्रभ करे सो होए कीमत किने न पाया बेअंत प्रभु हर सोए नानक गुरमुख हर सा लाहिया तन मन शीतल होए पौड़ी। सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना सब त्यावे तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाते सब मंग मंगना सेवक ठाकर सब तू है गुरमती हर चंग चंगना सब कहो मुखो रिखी केस हरे जित पावे सब फल फलना। श्लोक महला चौथा। हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान जो इच्छे सो फल पाए सी गुर सब दी लगे ध्यान किल विख पाप सब कटी है चुके गुमान गुरमुख कमल विगस्या सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा।

गुरु मेले मुख गुरु मुख हर समझावनी सब बोलो राम रमो श्री राम रमो जित दालद दुख भुख सब ले जावनी। श्लोक महला चौथा हर हर अमृत नाम रस हर अमृत हर उर्धार विच संगत हर प्रभु वर्तदा बुज्जो शब्द विचार। मन हर हर नाम से आया दिखाऊ मैं कगी मार जिन हर हर नाम न चेते हो तिन जुए जन्म सबहार गुरु तुफे हर

महला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल जुग करनी सार मत गुरु मत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार वड पागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर पंडार बिन नावे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर जल हस्ती मलना वाली है फिर भी फिर पावे चार हर मेलो सतगुरु दया कर मन वसै एकंकार जिन गुरुमुख सुन हर

गुरुमति हर निरंकारा, सब चवो मुखो जगन्नाथ, जगन्नाथ जग जीवनो जित पव जल पार उतारा। श्लोक महला चौथा, हमरी जेबा एक प्रभ, हर के गुण अगम अथाहा, हम क्यों कर जपे ए आनिया, हर तुम बड अगम अगाहा। हर देव प्रभु मत ऊतमा, गुर सत गुर के पग पाहा, सत संगत हर मेर प्रभ, हम पापी संग तराहा।

पंचे शब्द वजे मत गुरमत बदभागी अनहद वजिया अनद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आद जुगाद वे सहर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर भरे वहन जिना सतगुर मन्या जन नानक वड पाग लहन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वर्णिय किस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चट साल है जिस

था, हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुरु भाए, हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए, हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए, हर दरगे जन पैनायन जिन हर मन वस्याए, जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन भाए, महला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए, जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए, तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए, नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए, पौड़ी हों वारिया तिनको सदा सदा, जिना सतगुरु मेरा प्यारा देखिया, तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया, हर अगम दियाया गुरमती तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया, गुरु बचन से आया जिना अगम हर ते ठाकुर सेवक रल एकिया, सब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे, हर लाहा हर भगत विशेखिया, श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे रम रामो राम रमीत, कट कट आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत, हर निकट वसे जग जीवना परगास कियो गुरमीत, हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले जिन लिखिया तुर हर प्रीत, जन नानक नाम ते आया गुर बचन जपियो मन चीत, महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लो पाग वसे वड पाग, गुर पूरे देखा लिया नानक हर लिवलाग, पौड़ी तन तन सुहावी सफल करी।

मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजाने हर मेल दिखाए आप हर गुरबचनी नाम समाने तिन विट्टो नानक वारिया जो जप दे हर निर्वाणी श्लोक महला चौथा हर प्रभ रत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुरुदे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले।

सब जाए नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे वसगत कीता एक मन मुख कर हारायन एक नामेल गुरु तिना जीता हर ऊतम हर

कोई काट काट अंतर रव रया जप्यो जन कोई सगल जपो गोपाल गुण प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा गुरुमुख मिले से सज्जना हर प्रभ पाया रंग जन नानक नाम सलाए तू लुड लुड दर गए वंज। महला चौथा हर तू है दाता सब सदा सब जी तुम्हारे सब सुदैनो आराध दे दान दे प्यारे हर दाते दातार हथ कढ़िया।

रामा राम राम मैं अंक न पाया, हम बार कृत पारे तुमरे, तू बड़ पुरुष पिता मेरा माया रहाओ। हर के नाम असंख्य अगम है, अगम अगम हर राय।

जन को कृपा करो मधुसूदन। हर देवो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है। जन नानक गुरुमुख पाया कल्याण महला चौथा। हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत। तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा गुर के पग सिमरो दिन राती। मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी। सस चंदन जग ससिया हर जन हर हर हर निवलाई। सब साकत खोज पया ज्यो किरत संजोग चलियो। नर निंदक पग नागन छो जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया। कहां भया दैत करी बखीली सब कर कर चर परिया। जे तेजी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर।

मेरे मन जप जप जगन्नाथे, गुरु उपदेश हर नाम ते आयो, सब किल बिख दुख लाथे रहाओ। रसना एक जस दाए न साके, बहु की जय बहु रसनते, बार बार खिन पल सब गावे, गुन कह ना सके प्रभु।

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन को क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प अरापो, कोई मिले प्रभ मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत होबा, हम कुछ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभ सुमरे, जन नानक के प्रभ समरथे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अतत सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई, रहाओ, सो हर हर नाम से आवे हर जन, जिस बद भाग मथई, जह दरगे प्रभ लेखा मांगे, तह छुटे नाम से आए थई, हमरे दोख बहु जन्म जन्म के, दुखों में मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल नावाए, सब किल बिख पाप गथई, जन के रिद अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम पज थई, जह अंति अवसर आए बनत है, तह राखे नाम साथई, जन तेरा जप गावे हर हर, प्रभ हर जपियो जगन्नाथ थई, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पात्र रख बुढ़ थई, कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जाने, और कोई निंद करे हर जन।

हर सेवा से काल जोए न साके, चरनी आए पवे हर जाने, जा को राख ले मेरा स्वामी, ताको सुमत दे पहकाने, ताको कोई अपर न साके, जाकी भगत मेरा प्रभु माने, हर के चोज विदान देख जन, जो खोटा खरा एक निमक पछाने, ताते जन को अनंद भया है, रिद

खुद मिले खोटे पछताने। तुम हर दासे समरथ स्वामी, एक मांगो तुझ पासो हर दाने। जन नानक को हर कृपा कर दीजे, सद बसे हृदय मोहे हर चराने। कल्याण महला चौथा, प्रभ की जय कृपा निधान। हम हर गुण गावेंगे, हों तुमरी करो नित आस प्रभ। मुहे कब गल लावेंगे रहाओ, हम बारिक मुग्ध ज्ञान पिता समझावेंगे। सुत खिन खिन फूल बिगाड़ जगत।

सफल सफल सफल दर्शरे परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिए हीर हीर विदाइए। कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा सद नव तन मन रंगी शोभा रहाओ ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा भगत दान जस मंगी योग ज्ञान ध्यान सेख ना गए सगल जपे तरंगी कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभु के सत्संगी। कल्याण महला

जोग जुगत ज्ञान पुगत सुरत शब्द तट देते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन विद ताकी कहां करो तर्क ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे।

गोविंद नानक आसरो कल्याण महला पंजवा। मन तन जापिए भगवान गुरपुरे सो प्रसन्न भये, सदा सुख कल्याण रहाओ सर्व कार्य सिद्ध भये। गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे, नाथिया दुख काल कर कृपा प्रभु मेरिया, करो दिन रहन सेव। नानक दास।

सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन कर

मनो मुक्त जुगत अनेक सुख हर भगत लवै ना लावनो प्रभ दर्श लुभत दास नानक बहुड़ जोन ना तावनो कल्याण महला चौथा अष्टपदिया इको अंकार सतगुरु प्रसाद रामा राम रामो सुन मन पीजे हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पी जय रहाओ कास्त में ज्यो है बैसंतर मत संजम काड कटी जय राम नाम है जोत सबाई सतगुरु।

हम निर्गुणी मनूर अत सीखे मेरे सतगुर पारस की जय रहाओ। सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछे नित आशा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे मिल दर्शन तृप्त मन दी जय। माया मोह सबल है भारी मोह कालक दाग लगी जय। मेरे ठाकुर के जन

काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा, दिक छेद छेद रखती जय, आन आन समदा बहु कीनी, पल बैसंतर पसम करी जय, माँ उगर पाप

सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवि जय, अंतर रतन जवे हर मानक, गुर कृपा ते ली जय, मेरा ठाकुर वड़ा वड़ा है।

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय। जो जल मीन जलन जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय। माँ अपाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर न पी जय। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे।

मन तन अर्प करो सब आगे रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय रहा ब्रह्म नाम गुण साफ तरोवर नित चुन चुन पूज करी जय आत्म देव देव है आत्म रस लागे पूज करी जय।

पहुँचे जो पीप पलास खाई ली जाए। सब नर में प्राणी उत्तम होवे, राम नाम में बास बसी जाए। निर्मल निर्मल कर्म बहु कीने, नित साखा हरी जड़ी जाए। परम फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया, बेकार बास जगदी।

नाम बिना नचते नर देखो तिन पस पस नाक वडी जाय साकत नर अंकारी कही है बिन नाम है त्रिग जीवी जाय जब लग सांस सांस मन अंतर तप बेगल शरण परी जाय नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखी जाय कल्याण में है।

ज्यो सूरज किरण गव्या सर्ब ठाई, सब कट कट राम रवि जय। साधु साध मिले रस पावे, तप निज पर बैठिया पी जय। जन को प्रीत लगी गुर सेती, ज्यो चकवी देख सुरी जय। निरखत निरखत रैन सब निरखी, मुख काढे अमृत पी जय। साकत स्वान कहिए बहु लोभी, बहु दुर्मत मैल भरी जय। आपन स्वाय करे बहु बाता, तिना का विसाहु क्या की जय। साधु साध शरण मिल संगत, जित हर अस काढ कदी जय। पर उपकार बोले बहु गुनिया, मुख संत भगत हर दी जय। तू अगम दयाल दया पत दाता, सब दया तार रख ली जय। सर्व जी जग जीवन एको, नानक प्रतपाल करी जय। कल्याण महला चौथा, रामा हम दासन दास करी जय। जब लग सास हुए मन अंतर, साधु तूर कवि जय रहाओ। शंकर नारद शेख नाग मुन, पूर साधु की लोची जय। पवन पवन पवित्र हो है सब, जय साधु चरण धरी जय। ताज लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रही जय। कर्म राय की कान चुकावे, दिख दुबदा काड कडी जय। परम सुके बहु उबसुक कही है, मिल साधु संग हरी जय। काते बिलम पल टिल न की जय, जय साधु चरण लगी जय। राम नाम कीर्तन रतन वत, हर साधु पास रखी जय। जो बचन गुर

सुख नित लोड़ो ता सतगुर शरण पवी जाए। जेवड भाग होए अपनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जाए। सब माया मोह बिकुन जग तरिए सहजे हर रस पीजे। माया माया के जो अधिकारी विच माया पचै पचीजे। अज्ञान अंधेर महा पंच बिखड़ा अहंकार पार लग लीजे। नानक राम रम रम रम रम राम ते गप कीजे। सतगुरु मिले ता नाम दृढ़ाए राम नाम रले मिली जय। छक्का पहला।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज करवाती विपास महला पहला चौक दे कर पहला माए

सगल ली जय कोय त्यो संसार सगल विकार तेरा नाम दारू अवर नास्त करणहार अपार रहाओ पाताल पुरिया एक पार होवे लाख करोड़ तेरे लाल कीमत ता पवे जा सिरे होवे होर दुखा ते सुख उपजे सुखी होवे दुख जित मुख तू सालाई है सित मुख कैसी भूख नानक मूर्ख एक तू हवर पला सहसार जित तन नाम न उपजे से तन होए कुवार प्रभाती महला पहला जय कारण वेद ब्रह्म उचरे शंकर छोड़ी माया जय कारण सिद्ध तय उदासी देवी मर्म न पाया बाबा मन साचा मुख साचा कहिए करिए साचा होई दुश्मन दुख न आवे नेड़े हर मत पावे कोई रहाओ अगन बिंब पवने की बाणी तीन नाम के दासा ते तस्कर जो नाम ना लेवे वासे कोट पंचासा जे को एक करे चंगियाई मन चित बहुत बसावे एते गुण एतियां चंगियाईयां दे न पछोतावे तुझ सलाहन तिन तन पल्ले नानक का तन सोई जे को जियो कहे ओना को जम की तलब न होई प्रभाती महला पहला जा कह रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा सतगुरु मिले निरंजन पाया तेरे नाम है निवासा औदू सहजे तत विचार जाते फिर ना आवो सहसार रहाओ जा कह कर्म नाही धर्म नाही नाही सुतमाला शिव ज्योत कन्नो बुद्ध पाई सतगुरु रखवाला जा कह बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई गत अवगत की चिंत नाही सतगुरु फुरमाई जा कह आस नाही निराश नाही चित सुरख समझाई संत को परम संत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला कांका तहया दर परवान दिख अमृत दोय समकर जान क्या कही है सर्वे रहया सुनाए जो किछ वर्त है।

सो जन जान साची दरगे पावे मान कहना सुनना अकथ पर जाए कपनी बदनी नानक जल जाए प्रवासी महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अष्ट तीरथ संग गहे गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह गुरु समान।

और न करना जाए रहा। जैसे हर हट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर परियत है, तैसो ही यो खेल खत्म का, ज्यो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर परगासी। मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, कौन गिरही कौन उदासी, जिसकी आशा तिस ही सौंपते इहो रहा निर्वाण, जिससे होआ सोई कर मान्या, नानक गिरही उदासी सो करवाण। प्रभाती महला पहला, दिष्ट बिकारी बंधन बांधे, हौ तिस कै बल जाई, पाप पुन की सार न जाने, फूला फिरे अजाई। बोलो सच नाम करतार, सुन बहुर ना आवन।

परवान ताको समझावन जाइए जे को भूला होई आते खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई नाव पर भाते सब त्याइए छोड़ो दुनी परीता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता परवाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस्कर शब्द निवारिया मगर उठा साबास जा तू राखे राख ले साबत हो वै रास ऐसा नाम रतन निध मेरे गुरमत देह लगो पग तेरे रहाओ मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार कट कट एक वखाणिए कहो न देखिया जाए फोटो पूठो रालिए बिन नावे पच जाए जा तू मिले ता मिल रहा जा तेरी होए रजाए जात जन्म ने पूछिए सब कर ले हो बताए सा जात सा पत है जे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटी है नानक छूट सुनाए प्रभाती महला पहला जागत बिगसे मूठो अंधा गलफाही सिर मारे तंदा आसा आवे मनसा जाए पुरजी ताणी किछ ना बसाए जागस जीवन जागन हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहा कहो ना बूझे अंग ना सूझे।

छोड़ न पावे जब लग दूजी राई। एनिस जिया देख संभाले सुख दुख पूर्व कमाई। कर्महीन सच पीखिया मांगे नानक मिले वडाई। प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया। अधिक बको तेरी लिव रहिया फूल चूक तेरे दरबार। नाम बिना कैसे आचार ऐसे झूठ मुठे संसारा। निंदक निंदे मुझे प्यारा रहाओ जिस निंदे सोई बिद जाने। गुर कै सबदे दर निशाने कारण नाम अंतर्गत जाने। जिसनो नजर करे सोई बिद जाने। मैं मैलो उजल सच कोए उत्तम आख न ऊंचा होए। मनमुख खूल महा बिखाए गुरमुख होए सोरा चैनाए। अंधो बोलो मुग्ध गवार हीनो नीच बुरो बुरियार। नीदन को तन नाम प्यार यो तन सार होर बिख्याचार। उस तक निंदा शब्द विचार जो देवे किसको जयकार। तू बक्से जात पत होए नानक कहे कहाँ वै सोए। अरवाती महला पहला खाया मैल वधाया पेंदे कर की हान। बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान। बाबा ऐसा बिखन जाल मन वासिया बिबलो चाग सहज परगासिया। रहाओ बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए। जम दरबा दे मारिए छूट सा चैनाए। जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए। मन मुख मूल गवाया दरगे मिले सजाए। जग खो तो सच निर्मलो गुर शब्दी विचार। ते नर बिरले जानिए जिन अंतर ज्ञान मुरार। अजर जरे नीजर चरे हमर अनंत स्वरूप। नानक जल को मीन से थे पावे राखो प्रीत। प्रभाती महला पहला गीत नाद हर्ष चतुराई। रहस रंग सुरमाइस पाई पैनन खाना चीत न पाई। साथ सहज सुख नाम वसाई। क्या जाना क्या करे करावे नाम बिना तन किसना सुखावे। रहाओ जोग विनोद स्वाद आनंदा मत सत पाए भगत गोविंदा। कीरत करम कार निज संदा अंतर्गव तो राज रविंदा।

पुकारी, त्रिपुट तरंग तट बिचारी, अकथो कथो क्या मैं जोर, तगत करी कराहे मोर, अंतर वसे चूके मैं मोर, किस से भी दूजा नहीं होर, गुर का शब्द महारस मीठा, ऐसा अमृत अंतर जीठा, जिन चाख्या पूरा पद होए, नानक प्राप्यो तन सुख होए, परवाती महला पहला, अंतर देख शब्द मन मान्या, और न रांगन हारा, एनस जिया देख संभाले, तिस ही की सरकारा, मेरा प्रभु रांग कणो अत रूड़ो, दीन दयाल प्रीतम मनमोहन, अत रस लाल सगूड़ो, रहाओ, ऊपर कूप गगन पनिहारी, अमृत पीवन हारा, जिसकी रचना सो विधि जाने, गुरमुख ज्ञान विचारा, पसरी किरण रस कमल बिगासे, सस्कर सूर समाया, काल बिंदु से मन सामन मारी, गुर प्रसाद प्रभु पाया, अति रस रंग चलू ले राती, दूजा रंग ना कोई, नानक रसम रसाए राते, रब रहया प्रभु सोई, परवाती महला पहला, बारे में रावल खप जावे, चहो छह में सन्यासी, योगी का पड़िया सिर खूथे, बिन शब्द गल फासी, शब्द रते पूरे बैरागी, औ हथो हस्त में पीछिया जा।

दुख पाए। शब्द मिले से सूचा चारी साची दरगह माने। हम दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने। सगले कर्म कर्म सुख संजम जप तप तीरथ शब्द वसे। नानक सतगुरु मिले मिलाया दुख पराचित काल नसे। प्रवासी महला पहला संता की रेण साध जन संगत हर की रत कर तारी। कहां करे बपुरा जन बरते गुरमुख हृदय मुरारी। जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली। गुरमुख आवे साध मना रहाओ गुर उपदेश साथ सुख जाको। क्या किस उपमा कही है लाल जवेहर रत्न पदार्थ खोजत गुरमुख लही है। चीने ज्ञान त्यान तम साचो एक शब्द लिवलावे। निरालंब निरहार नह केवल निरपौता लीलावे। सायर सपत करे जल निर्मल उल्टी नाम चरावे। बाहर जा तो ठाक रहावे गुरमुख से समावे। सो गिर ही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछानिया। नानक कहे अवर नहीं दूजा साथ शब्द मन मानिया। राग प्रभाती महला तीजा चौपदे इको अंकार सतगुर प्रसाद। गुरमुख बिरला कोई बूझे सब दे रहा समाई। नाम रते सदा सुख पावे साथ रहे लिवलाई। हर हर नाम जपो जन भाई गुर प्रसाद मन अस्थिर होवे। हम दिन हर रस रहा अघाई रहा। हम दिन पवित्र करो दिन राती इस युग का लाहा भाई। सवा जन निर्मल मैल न लागे सत नाम सितलाई। सुख सिगार सतगुरु दिखाया नाम वड्डी वड्याई। अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे सदा हर सेवो भाई। आपे करता जिसनो देवे तिस वसे मन आई। नानक नाम ते आए सदा तू सतगुरु दिया दिखाई। प्रभाती महला तीजा निर्गुणी आरे को बख्श ले स्वामी। आपे लेहो मिलाई तू बेअंत तेरा अंत ना पाया सब दे देहो बुझाई। हर जियो तुद विटो बल जाई तन मन अर्पी तुद आगे राखो। सदा रहा शरणाई रहाओ अपने पाने विच सदा रख स्वामी। हर नामो दे वड्याई पूरे गुर ते पाना जापे हम दिन सह समाई। तेरे पाने भगत जे तुद भावे आपे बख्श मिलाई। तेरे पाने सदा सुख पाया गुर कृष्णा अग्न बुझाई। जो तू करे सो होवे करते अवर न करना जाई। नानक नावे जेवड अवर न जाता पूरे गुर ते पाई। प्रभाती महला तीजा गुरमुख हर साल आया जिन्ना तीन साल आए हर जाता। विचों परम गया है दूजा गुर कै शब्द पछाता। हर जियो तू मेरा इक सोई तुद जपी तुद ऐसा लाही। गत मत तुझते होई रहाओ गुरमुख सालान से साध पाएन।

हो न सके जमकाल तेरी शरणाई सच्ची हर जियो ना हो कटे न जाए जो हर छोर दूजे पाए लागे ओ जमे ते मर जाए जो तेरी शरणाई हर जियो तिना दुख पूख किछ नाए नानक नाम सलाए सदा तू सच्चे शब्द समाए परवाती महला तीजा गुरमुख हर जियो सदा ते आओ जब लग जी प्राण गुर शब्दी मन निर्मल होआ चूका मन अभिमान सफल जन्म तिस प्राणी केरा हर के नाम समान मेरे मन गुर की सिख सुनी जय हर का नाम सदा सुखदाता।

होई। गुर के शब्द कमल पर गासिया सौ में दुर्मत खोई। सब नाम एक को सच वरते विरला बूझे कोई। गुरमति मन निर्मल हुआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वस्या। विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुर अपनी विटो जित आत्म राम पछाने। मानस जन्म सतगुरु न सेविया बिरथा जन्म गवाया। नजर करे ता सतगुरु मेले सहजे सहज समाया। नानक नाम मिले वडियाई पूरे भाग से आया। प्रभाती महला तीजा आपे पांत बनाए बहुरंगी। शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया कर कर वेख करे कराए। सर्व जियानो रिजक दिया कली काल में रव्या राम। कट कट पूर रहा प्रभे को गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहा। गुप्ता नाम वर्त विच कल जुग कट कट हर पर पूर रहा। नाम रतन तिना हृदय प्रगटिया जो गुर शरणाई पग पया। इंद्री पंच पंचे वस आने खिमा संतोष गुरमत पावे। सो तन तन हर जनवड पूरा जो कह बैराग हर गुण गावे। गुर ते मोह फेरे जे कोई गुर का कहया ना चित धरे। कर आचार बहु संतोष संचय जो किछ करे सो नरक परे। एक को शब्द एक को प्रभु वर्ते सब एक स्ते उत्पत्तल है। नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले। प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सालाए। पूरा पाग हो गए मुख मस्तक सदा हर के गुण गाहे रहा। अमृत नाम भोजन हर दे कोट मदे कोई विरला ले। जिसनो अपनी नजर करे गुर के चरण मन माए वसाए। दुख अनेरा अंदरों जाए आपे फाचा ले मिलाए। गुर की बाणी सो लाए प्यार एथे ओथे एव आधार। आपे देवे सृजनहार सच्चा नराए अपना भाणा। सोई तगत सुगड़ सुजाना नानक तिसके सब कुर्बाना। प्रभाती महला चौथा विपास एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। रसक रसक गुण गावे गुरमत लिव उन मन नाम लगान। अमृत रस पिया गुर शब्दी हम नाम विटो कुर्बान। हमरे जग जीवन हर प्राण हर उत्तम रिद अंतर भायो। गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर नाम बखान। कित विद क्यों पाई है प्रभ अपना मोको करो उपदेश हर दान। सत संगत में हर हर वस्या मिल संगत हर गुण जान। वड्डे पाग सत संगत पाई गुर सतगुर परस भगवान। गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा भारी हर नाम दियो खिन गान। प्रभाती महला चौथा उगवे सूर गुरमुखर बोले सब रैन संभाले हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करें प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु तूर जवाल हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा। गुर पद चारे हम बाल रहाओ। साकत को दिन रैन अंधारी मोय फाते माया जाल। खिन पल हर प्रभ हृदय न वस्यो ऋण बादे बहु विदबाल। सत्संगत मिल मत बुध पाई हौ छूटे ममता जाल। हर नामा हर मीठ लगाना गुर की ये शब्द निहाल। हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल।
दिख पौ जल डुबदे काड लियो प्रभ गुरु नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपा धारी गुण गाए रस प्रतीक गावत सुनत बहु पै मुक्ते जिना गुरमुख खिन हर पीक मेरे मन हर हर राम नाम रसतीक गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस जीक राव जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिना मस्तक उजल टीक हर जन शोभा सब जग ऊपर ज्यो विच उडवा सस पीक जिन हर हृदय नाम नौस्यो तिन सब कारज फीक जैसे सिगार करे दे मानुख नाम बिना नकटे नकीक कट कट रमैया रमत राम राय सब वर्ते सब मैं एक जन नानक को हर कृपा धारी गुरु बचन ते आयो करी नीक। प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभधारी मुख हर हर नाम हम कहे पतित पावन हर नाम ध्यायो सब किलबिख पाप लहे जप मन राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ पाया नगर नगर हर बसयो मत गुरमत हर हर सहे शरीर सरोवर नाम हर प्रगत्यो कर मंदल हर प्रभ लहे जो नर परम परम उद्याने ते साकत मूड मुहे जो मृग ना भी बसे बास बसना त्रम त्रम्यो चार गहे तुम वड अगम अगाद बोध प्रभ मत देवो हर प्रभ लहे जन नानक को गुर हाथ सिर करयो हर राम नाम रव रहे। प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम हर हर जप्यो हर प्रभु वडपा सतगुरु बचन सुखाने हीरे हर तारी हर प्रभु कृपा मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा हर हर दान दियो गुरपूरे हर नामा मन तन बसा रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर जप शोभा गुरमुख करपफा हलत पलत जन पै सुहेले मुख उजल गुरमुख तरफा अनपौ हर हर हर लिव लागी हर उर्धार्यो गुर निमखफा कोट कोट के दोख सब जन के हर दूर किए एक पलफा तुमरे जन तुम ही ते जाने तब जान्यो जन से मुखफा हर हर आप करयो हर जन में जन नानक हर प्रभ इकफा। प्रभाती मैला चौथा। गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जपबा तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा दिख दुख दे बाह दे कडबा जप मन राम नाम हर धाबा उपजंप उपाय ना पाये कतहु गुरपूरे हर प्रभ लाबा रहाओ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रसदा लो मनूर कंचन मिल संगत हर उर्धार्यो गुर हरवा हौ मैं बिखिया नित लोग लुवाने पुत कलत मोह लुबा तिन पग संत ना सेवे कबहु ते मन मुख पूंगर परदा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम करे हार तुम शरणवा ज्यो जानो त्यो राखो स्वामी जन नानक दास तुम नवा। सत्ता पहला। प्रभाती विपास। करताल महला चौथा। इको अंकार सतगुरु प्रसाद। जप मन हर हर नाम निधान हर दरगे पावे मान जिन जपिया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठ अठ न जान
सुन मन गुरुमुखता में मान, जप मन परमेश्वर प्रधान, खिन खोवे पाप कुटान, मिल नानक हर भगवान। प्रभाती महला पंजवा विपास इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत् रच जोत निवाजिया, सेजा तरत बर्तन को पानी, निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुरु सेव होए परम गते, हरख सोगते रह निरारा, का तू पावे प्राण पते रहा। कातड़ पोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कुटंब सगल बनाए, रिजक समाहे जल फल मीत, सोहर सेवो नीता नीत। कहा सखाई जय कोई न होवे, कोट अपराध एक खिन में धोवे, बात करे नहीं पछोतावे, एक का बक्से फिर बहुर ना बुलावे।

गुर मिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहो मुरार, करवाती महला तन्यवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन के पंडार, गुण गावे प्रभ दर्श प्यार, तुमरी पगत प्रभ तुम्हें जनाई, काट जेवरी जन लिए छुड़ाई रहा, जो जन राता प्रभ के रंग, तिन सुख पाया प्रभ के संग, जिस रस लाया सोई जाने, तेक तेक मन में हैराने, सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जा के हृदय वसिया प्रभ सोए, सोई नेचर आवे न जाए, हम दिन प्रभ के हर गुण गाए, ताको करो सगल नमस्कार, जाके मन पूरन निरंकार, कर कृपा मोय ठाकुर देवा, नानक उदरे जन की सेवा, करवाती महला तन्यवा, गुण गावत मन होए आनंद, हाथ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कलमल जाहे, इस गुर की हम

सीधा सगल त्याग नाम हर गीदा। इस गुर कै सदा बल जाइए, हर सिमरन जिस गुर ते पाइए। बूढ़त प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोह नहीं माया। हलत पलत जिन गुरे सवारिया, इस गुर ऊपर सदा हो वारिया। महा मुगते किया ज्ञानी, गुर पूरे की अकट तवानी। पार ब्रह्म नानक गुरुदेव, वडे पाग पाये हर सेव। प्रभाती महला तन्यवा, सगले दुख मिटे सुख दिए। अपना नाम जपाया, कर कृपा अपनी सेवा लाए। सगला दुर्त मिटाया, हम बारिक शरण प्रभु दयाल। अवगण काट किए प्रभु अपने, राख लिए मेरे गुरु गोपाल राव। पाप पाप बिन से किन भीतर, तहे कृपाल गुसाई। सास सास पार गम अरादी, अपने सतगुर के बल जाई। अगम अगोचर बेअंत स्वामी, ताका अंत ना पाये। लाहा खाट हुई है तनवंता, अपना प्रभु ध्याई है। आठ पैर पार ब्रह्म त्याई, सदा सदा गुण गाया। कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, पार ब्रह्म गुर पाया। प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किल बिक सगना से। सच नाम गुर दीनी रासे, प्रभ की दरगे शोभा वंते। सेवक सेव सदा सोहंते, हर हर नाम जपो मेरे भाई। सगले रोग दोष सब बिनसे,

कलेस जो तिस पावे सो फल होस तिस गुर को हो सब बल जाई जिस प्रसाद हर नाम दियाई ऐसा गुर पाये वडवागी जिस मिलते राम लिवलागी कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल गटा के अंतर जामी आठ पैर अपनी लिवलाए जन नानक प्रभु।

पाए भगत हर स्यों मन माना, सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगै अतोले, सदा सदा प्रभ गुण निध गाय, कहो नानक वड पागी पाय। प्रभाती महला पंजवा, से तनवंत सोई सत साहा, हर की दरगै नाम विसाहा, हर हर नाम जप।

गुर पूरा पाये वडभागी, दर्शन को जाये पुरबान रहाओ। किलगित में तो सबद संतोख, नाम आराधन हो आजोग, साध संग हो आपरगास, चरण कमल मन माए निवास, जिनकी आकिन लिया राख, प्रभ पूरा अनाथ का नाथ, जिसे निवाजे कृपाधार, पूरन कर्मता के आचार, गुण गावे नित नित नित नवे, लख चौरासी जोर न भवे, इहा उहा चरण पुजारे, मुख उजल साचे दरबारे, जिस मस्तक गुर तरिया हाथ, कोट मदे को विरला।

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोभ मोह बिन सुजाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बालक कछु ना जाने, राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। रहाओ प्राण आधार दुख बिगार, दैनहार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखनहार, मन आराध प्रभु मेक। संत ऋण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक।

जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रहत सच्चा सुख पाए, सुख दाता दुख नेता हारा, अवर न सूजस भी जी कारा, तन मन तन हर आज्ञा राख्या, नानक कहे महारस चाख्या, प्रभाती महला पहला, निवली करम पुलंगम पाथी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किछ सोजी नाही, पर में पूला बूढ़ मरे, अंधा परया पर पर कोवे, अंतर की मलक दे ना लहे, नाम बिना फोकट सब कर्मा, ज्यों बाजीगर परम पुले, खट कर्म नाम निरंजन सोई, तू गुण सागर

प्रसाद ओ परम पूले मरो न कोई सतगुरु से सदा सुखोई बिन सतगुरु मुक्त किने न पाई आवे जाए मरे मर जाए तो शरीर है त्रै गुण तात किसनो व्यापे शोक संताप।

पयाल जाए क्यों चलिए, जे बल रूप पचाने राजा जनमे जादे मती। ब्रज व्यास पराया इनका जग अठारे काए, कीर्तना चले चलाया गणत न गनी हुकम पछाना। बोली पाए सुवाई जो किस वर्ते तुरे सवाही, सब तेरी वडियाई गुरमुख अलपत लेप कदे न लागे। सदा रहे शरणाई मनमुख मुगद आगे चिते नाही, दुख लागे पछताई आपे करे कराए करता। जिन ए रचना रचिए हर अभिमान ना जाई जियो, अभिमानी पे पचिए फुलन विच किया सब कोई, करता आप ना।

अंतर झूठा क्यों सुच होए, सब दी तो वै विरला कोए, गुरमुख कोई सच कमावे, आवन जाना ठाक रहावे।

गुरु का शब्द कर्म है सार, हर जस कर्म धर्म पत पूजा, काम क्रोध अग्नि में पूजा, हर रस चाख्या तो मन पीजा, प्रणवत नानक अवर न दूजा, प्रभाती महला पहला, राम नाम

समाए एक तीर्थारत सतगुरु दिए मुक्तियाना हर पद चीन पहे परदाना मन तन शीतल गुरु बूझ बुझाई प्रभ निवाजे किन कीमत पाई कहो नानक गुरु बूझ बुझाई।

जब लग शब्द ना जाने भूख प्यासा जग पया तृप्त नहीं बिन सतगुर पाए सहज सहज मिले सुख पाइए दरगे पैदा जाए दरगे दाना बीना एक आपे निर्मल गुर की बाणी आपे सुरता सच विचार आपे बूझे पद निर्माणी जल तरंग अग्नि पवने फुन।

ज्ञान रतन प्रगट होए। मनमुख मूल न जाननी मानस हर मंगल न होए। हर मंगल हर जियो साजिया रखिया हुकुम सवार। तुर लेख लिखिया सो कमावना कोई ना मेकन हार। सबद चीन सुख पाया सच्चै नाए प्यार। हर मंगल सब दे सोहना कंचन कोट अपार। हर मंदर एहो जगत है गुरबिन कोरंतार। दूजा पाओ कर पूज दे

हर मंदिर में मन लोहत है, मोया दूजे भाई, पारस पेपे कंचन भया, कीमत कहीं ना जाए। हर मंदिर में हर वसे, सर्व निरंतर सोए, नानक गुरमुख बन जिए, सच्चा सौदा होए, प्रभाती महला की जा, कह पाए जागे।

जित मार घर पाइए, मन से ही कर्म कमाए रहाओ, गुरुमुख सहज तुम उपजे, दुखों में विच्चों जाए, हर नामा हर मन वसे, सहजे हर गुण गाए, गुरुमति मुख सोने, हर राख्या उर

वेश ना पाइये महा दुखियारी, बोले नाही हुए बैठा मोनी, अंतर कल्प पवाई है जोनी, अंते रहता दुख देही सहता, हुकुम ना बूझे व्याप्या ममता, बिन सतगुर किने न पाई परम गते, पूछो सगल वेद सिमरते, मन मुख कर्म करे अजाई, जो बालू कर ठौर न ठाई, जिसनो पै गोविंद दयाला, गुर का बचन तिन बांधियो पाला, कोट मदे कोई संत दिखाया, नानक तिन कै संग तराया, जे होवे पाग का दर्शन।

हर प्रेम भगत मन सन सदराता, प्रभु जनाया तब ही जाता, कट कट अंतर रविया सोए, तिस बिन भी जो नाही कोए, बैर विरोध छेद ते परमा, प्रभु पुन आत्मे कीने धर्मा, महातरंग ते कांदे लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा, जब तब संजम नाम समा लिया, अपने ठाकुर नगर निहालिया, मंगल सुख

जय सेवक गोपाल गुसाई प्रभु सो प्रसन्न तय गोपाल जन्म जन्म के मिटे विताल होम जग उर्द तप पूजा कोट तीर्थ स्नान करीजा चरण कमल निमख हृदय धारे गोविंद जपते सब।

कला प्रीतम भरपूर, मात पिता हर प्रीतम नेरा, नीत साजन भरवासा तेरा, कर गए लीने अपने दास, जप जीवे नानक गुणतास, विपास

जो जन जान बजे पुरखोत्तम काची अवगत बाणी नामा कह जब जीवन पाया हृदय अलख बिडानी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत न जानिया सर्व निरंकर राम रहा रव ऐसा रूप बसानिया गोविंद गाजे शब्द बाजे अमद रूपी मेरो रामैया रहाओ बावन भीखू बाने भीखे

रतन लाल नामा साच समायला करभासी अकुल पुरख इक चलत उपाया कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया जी की जोत न जाने कोई तैने किया सो मालूम होई राव जो पर

रिद अंतर कर तल काती, ठग दुष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा, कल भगवत बंद चिरामं, क्रूर दुष्ट रता निष्बादं रहाओ, नित प्रत स्नान शरीरं, दो तोती कर्म मुख खीरं, हृदय चुरी संध्यानी, पर दर्द हिरन की बानी, सिल पूजस चक्र गणेशं, निस्जागस पगत परवेशं, पग नाचस चित अकर्मं, एलं पट नाच अधर्मं, मृग आसन तुलसी माला, कर उजल तिलक कपाला, हृदय कूर कंठ रुद्राथं, रे लंपट कृष्ण अवाखं।

राम भज जन्म सिरात है, कहो कहां बार बार, समझत नहीं क्यों गवार, बिनसत नहीं लगे बार, पूरे समगात है रहा, सगल परम डार दे, गोविंद को नाम ले,

अवसर भी हाथ है। जय जावंती मेला नामा। रे मन कौन गत हुए है तेरी, ए जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान।

विनोद सुत कतंच भात मीट हित बंध कतंच मोह कुटुंबते कतंच चपल मोहनी रूपं ते खंते त्यागं करोत रहं।

प्राप्तम धर्म लखन नानक जैसो परसन माधवे निर्तमोहं अलप बुद्धन रचंत बनता विनोद साहन जो बन बेह कर्म कनक कुंडले बचित्र मंदर शोभंत बस्त्र।

धरे। दयाल एक भगवान पुरखे, नानक सर्व जीव प्रित पालके। अनित्य वित्तं अनित्य चित्तं अनित्य आशा बहुविध प्रकारं, अनित्य हेतं अहम् भं अहम् बंधं।

अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अघ खंडने हृद बसंत बह भीत दूते कर्म करत महानिर्मले जन में मरण रहंत स्रोता सुख समूह।

श्याल हरे विखम स्थान मन मोह मदर महा असाद पंच तस्करे हित मोह भय भर्म।

परम बादन आवर्त एते सुत अक्षणे गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन्मतन बलवंत बलात् कारणे चरण कमल लय भजंत तृण समान धिग

करे न चित्तो, जाता अस्थल तोल अमितो, सोई नानक सखा जी संग कितो। अप जसन मिटंत सत पुत्र सिमर तवर गए गुरु मंत्रणे।

आस्ते आसी तेज सो कंत विछाई हर हां मस्तक होवे भाग का साजन पाई है सती काजन।

ऊपर बने आकाश तले धर सोहती, दैदिस चमके भी जल मुख को जो हती। खोज

जप तप संयम हरक सुख मान महत अर गर्बे मूसन निमक के प्रेम पर वार वार देव सरबे मूसन।

अंबर कन हर छाया बर्फ परे सरताल चात्रिक ज्यों तरसत रहे तिनको कौन हवाल कबीर चके जो निस

काल पाछे कछु न होए बात जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जंत इक देखिया जैसी तोई लाक, दिसै चंचल बहुगुना मत हीना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध को जम ना।

ताबत रखे ता राम भजे नाहे ता विनती बात। कबीर केसो केसो कुकिया ना सोए सारे।

कबीर राम रतन मुख को तेरी तारक आगे खोले कोई आए मिले दो गाती ले दो महंगे मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं पाल्यो कटक कुटुंब संदेही में मर गयो बाहर पई न बंब। कबीर आखी केरे मात के पल पल गई बिहाए मन जंग।

उपकारी जीवन के पंछी चले दिसावरी बिरखा सुफल कलंक। कबीर साधु संग परापति लिखिया होए लीलात मुकुट पदार्थ पाये खाक न अवगत काट। कबीर एक करी आदि हूं ते आदे अगतन।

खेलत खेलत हाल करे जो कुछ होए ता होए। कबीर जो तुह खाद तिरंगी ताके से खेले काठी सरसों।

नबी वाके छप्पड़ तू मैं क्या हो चिकर डुबे हाथ फरीदा नंदी संत नारावियो वड्डी सी मोई आके।

हंस न कोदरा खाए। चल चल गईया पंखियां जिनी वसाए तल, फरीदा सर परिया की चलसी थके कवले कल। फरीदा इत सिराने तोए सवन कीड़ा लड़े मास केतड़े।

फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माही मंदा किसनो आखिए है जा किस दिन कोई नाही फरीदा जे दिह नाला कपया जे गल कपे दुख पवन ना इकी मामले सहा ना इकी दुख चबन चलन रतन से सुनियर गह गए हेरे मिट्टी पाके जानी चल गए फरीदा बुरे दा पला कर गुस्सा मन न हंडा।

जो जन पीर निवाजिया तिना अंक न लाग। महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुवनड़ी देहे विरले के पाये ने जिना प्यारे ने। कंदी रहन ना चाहे तो भी लेखा देवना जे कर रब रजाए वैंसदाओ गौ करे। फरीदा दुखा से पी दियो गया सूला से पी रात खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा पत्थर वात। लम्बी लम्बी नदी वह कंदी के रहे बेड़े में।

कमल आखी से था बंदगी चलन अज के कल फरीदा मोतैदा बन्ना एवें दिसे ज्यो दरिया वैता अगे दोजक तपिया सुनिए हूल पवे कहा इतना नू सब सोजी आई इक फिर देवे कर।

रावणे जिना विसारे नाओ कैसे दुख कनेरिया अगे थौर न छाओ फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जीवन दरो मोयो ए जे तें रब विसारिया ता रब ना विसरियो ए महला पंजवा फरीदा कंक रंगावला वड्डा ने मुहताज।

क्या चलै किस नाल इक जा बंदे नाल हैं कितना कुत्तियां दे उठाल तू देंदीए सुहाग को तौ तन काई कोर जिन्ना नाव सुहागनी तिन्ना छाप न होर सबर मंज कमान ए सबर का नीहनो

कंठ कै तनूर ज्यों बालन हद बलन कैरी थका फिर जुला जेहू तिरी मिलन। तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन हड ना बाले फिर कैरी क्या फेड़िया अंदर तिरी निहाल। हौकू देंदी सज्जना सज्जन नैंदे नाले नानक अलख न

सिर तल उत्तर पाओ। मैं जानिया बड़ हंस है ताने की पासंगे, जो जाना बग बकुड़ा जन्म न पेड़ी अंग। क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे, जे किस पावे नानका सागो हंस करे। सरवर पंखी हे करो फाही वाल पचास, केतन लहरी गद किया सच्चे तेरी आस। कम को अखर कम गुण कम को मणिया मंत्र, कम को वे सोहा करी जितवस

निपाणा अणहोंदे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए एक सिक्का ना गालाए सब नाम सच्चा तई याओ न कही ठाए मानक सब अमोल वे सबना मन

आन नहीं तुम भरे हर अंत नहीं पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुले ब्रह्म संसार एक दिन क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार अमृत प्रवास हर अतुल भंडार भर परे ही ते परे अपर अपार पर आपनो भावन कर मंत्र न दूसरो धर उप तो कर लो एक निमक तो भर आन नई समसर उजियारो निर्मल कोट करा छते जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दल कुल ब्र

जन नानक भगदर तुल ब्रह्म समसर ए जी क्या बसन है हाके बल बल बल बल।

हर भवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं।

जय कृपाल हर हर भयो, हर गुरु नानक जिन परसो, से जन्म मरण दो ते रहो। सत सत हर सत सत सत सत भणिए, दूसर आन न आवर पुरखे, पुरातन सुनिए। अमृत हर को नाम लेत मन सब सुख पाए, जे रसन साखो तै जन तृप्त अधाए। जे ठाकुर सो परसन भयो, सतसंगत तै प्यार, हर गुरु नानक जिन परसो, तिन सब कुन कियो उधार। सच सभा दीवान सच सचे तै धरयो, सचे सत निवास सच तपावस करयो। सच सुन जो स

हर तारन तरन समरथ सवैद कुल समूह उधारन सो चित चेत अचेत जान सत संगते भरम अंधेर मोयो कत भो मूरत घड़ी सापल सिमरन राम नाम रखना संगला होतो काज अलग सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख भाव सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरों रंच करेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूझन की सब सोज परी बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निकट।

नानक काट भरम भरी, रे मन मूस बिलावे गर्वत, कर्तव करत महाम भुना। संपत धौल धूल संग झूलत, माया मगन भरमत घुगना। सुत बन का साजन सुख बंदते, तासु मो बड़ो सुघना। बोयो बीज अहं मम अंकुर, बीतक औध करत अधना। मृत मंजार पसार मुख निरखते, भुंचत भुगत भूख भुखना। सिमर गोपाल दयाल सतसंगत, नामिक जगे जानत सुपना। देहे न देहे नने ननीता, माया मत कहालो मादारो। देहे न देहे नने ननीता, माया मत कहालो गारो। छत्र न पत्र न चौर न चावर, बैठी जात हृदय न विचारो। रथ न अश्व न गज सिंहासन, छिन में त्यागत नांग सिधारो। सूर न वीर न मीर न खानम, संग न को दृष्ट निहारो। कोट न ओट न कोस न छोटा, कर्त विकार दो कर झारो। मित्र न पुत्र कल्प साजन सुख, उल्टत जात बिरख की छारो। दीन दयाल पुरख प्रभु पूरन, सिन सिन सिमरो अगम अपारो। श्रीपत नाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो। प्राण मान दान मग जोहन, चीत चीत दे ले ले तारी। साजन सैन मीत सुत भाई, ताऊ ते ले रखी निरारी। धावन पावन सूर कमावन, एहद करत औद तन जारी। करम धर्म संजन सुख सुचनेमा, करम धर्म संजन सुचनेमा। चंचल संग सगल बिदहारी, पस पंखी बिरख अस कावर। बौबिंद जौन भम्यो अस भारी, छिन पल चसा नाम नहीं सिमर्यो। बीना नाथ प्राण पत सारी, खान पान मीठ रस भोजन, अंत की बार होत कत खारी। नानक संत चरण संग उधरे, और माया मगन चले सब डारी। ब्रह्मागत शिव छंद मुनि सर, रसक रसक ठाकुर गुण गावत। इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरत, धरण गगन आवत फुन धावत। सिद्ध मांस

कर कृपा संत आप करो है, गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आसमारी। औषध मंत्र तंत्र पर दुख हर, सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मद सर तृष्णा, बिन सजाए हर।

नानक दास सदा बलहारी। आवत तत्यो न जात प्रेम रस चरण कमल सन, दामन बंधयो न जात विधे मन दर्श मग, पावत जरो न जात रहो जन धूर लग, नींद न साकस बोर चले हर पंथ मगे, नानक रोग दोख अगमो छिदे हर नाम खग, उदम कर लागे लौ भाकी बिचरे अन शास्त्र बौ खटुआ, भस्म लगाए तीरथ बौ घमते सूखम दे बंधे बहु जटुआ, बिन हर भजन सगल दुख पावती, ज्यों प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ, पूजा चक्र करत सोम पाका अनक भात फाटे कर खटुआ, स्वये मले तले ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक मन पुरख दयाय वरदाता, संत सहार सदा दिखयाता,

गंभीर भीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान भरे गांग राज भगत प्रहलाद आत्मराज

कारण चार खट दर्शन ब्रह्मागत सिमरंत गुणाम गावे गुण शेष सहस जेदा रस आद

भगत दीन गुण रही सहज आत्म रंग माणे, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ और न जाए। सुखदेव परिखत गुण रहे गौतम रिख जस गायो, कब कल सुजस ना।

सतसंगत सहज सारे जागे ले गुर बिचारे निमरे भूत सजीव परम प्यारे कौ तीर्थ कल सहारे सतत दीप मझारे लेना जगत गुर परस मुरारे तै तोड़ियो नाम अपारे बिमल जास बिखारे साधक से

आज दर दिन किया अनुमान, हर हर दर्श समानी आत्मावंत ज्ञानी, जाने अकलगत गुरु परवान, जाकी दृष्टि

लैणा जगत गुरु पर समुरार। दृष्ट भरत तम हरन दहन अघ पाप परासन। सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन। लोभ मोवश करण शरण जाचिक प्रतपालन। आत्मरत संग्रहण कहन अब

गरल नाश थन न थियो अम्यो अंतरगत पियो रिद बिनास जागयो अलग पल धरी जुगंतल सतगुर सहज समाद रहो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिखंते कलमल प्रसन्न सब रंग सहज कल उचरे जस जमतो लेने रसने नाम औखद नाम आधार अर नाम समाज सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम सो कल नाम सुर नरे बो है नाम परस जन पायो सत प्रगटो रवलो दर्शन परसे गुरु कै असठ मजन हो सच तीर्थ सच स्नान और भोजन भाव सच सदा सच भाषंत सो है सच पायो गुरु सबर सच नाम सुगंती बो है जिस सच संजम वर्त सचे कब जन कल्व खाने दर्शन परसिए गुरु कै सच जन्म परवाणी अमे दृष्ट शुभ करे हरे अघ पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोवश करे सवै बल सदा सुख मन वसै दुख सन

तीरथ रव फिर प्रगण संसारे सात सरोवर मवल सराब। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम जय जयकार जपंत नरा। हर नाम रसन गुरुमुख बरदायो उल्ट गंग पर

सोईनाम अचल भगते भवतार अमरदास गुरु को पुरिया। चित नाम लागते तुलसी धयावे जखन कपी सर।

गंभीर गुरु मत सत कर संगत उदरिया। सोई नाम अचल भगत भाव तारन अमरदास गुरु को पुरिया। नाम कित संसार किरण रहो सुर कर साथे उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस भाके। जन्म तयो सके अत जित नाम हर दे निवासे सुर नर गण गंधर बुछे दर्शन आशा से। भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर ध्यायो सोई नाम भगत भव जल हरन गुर अमर।

सुख पायो अमर गुर की खोजो। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी। धन सतगुण सेवे जिस पसाए गत

हृदय बसो अत हो सोए रस नहीं जातो। मुखों भगत उतरे अमर गुर इत रंग रातो। मस्तक निशान सचो करम पल जोए कर भायो। परसो गुर सतगुरु तिलक सर्व इच्छ तिन पायो। चरण तपर सकत चरण गुर अमर पवल ले। हथ तपर सकत हथ लगे गुर अमर पे। जी तपर सकत जी गुर अमर भरजे।

करवणी गुर अमर सुन जय सत सोहियो जित ही बसे गुर अमरदास निज जगत पिते सत्यत सो सुर जालक भणे जो सुर ने गुर अमर निते ते नर दुख ने दुख ते नर निधन नौ ते नर शोक नौ हुए ते नर से अंत न ले।

गुर अमर रास निज भगत है, देश दर्श पावो मुकते। गुर अमर दास परसिए कहुं पाठक विनाशे, गुर अमर दास परसिए सिद्ध साधक आशासे। गुरु अमर

आनूल है जाल पा पदार्थ इतने गुरु अमरदास जिथे मिले सच नाम करतार सुदृढ़ नानक संग्रह हो ताते अंगद

जप तप सत संतोख तिक दर्शन गुर सिखे सरण परे ते उबरे छोड़ जमपुर की लिखे भगत भाए भरपूर हृदय उचरे करतारे गुरु गौहर दरिया पलक डूबंते तारे नानक कुल निमल अवतरे गुण करतारे उचरे गुरु अमरदास।

क्रोध वस करे पवन उदंत न घावे। निरंकार के वसे देश हुकम बोझ विचार पावे। कल माए रू

सागर को दंड तरंग अंत को पावे। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन भल उन्हें जो गावे।

ਅਬਲਾ ਸੇ ਅਬਗਤ ਦਿਆਇਓ। ਇਸ ਭੂਤੇ ਦਾਰਿਦ੍ਰ ਨ ਚਮਤੇ ਕਲ ਸਹਾਰਤਾ।

नाम निरंजन उर धरया। हर नाम रसक गोविंद गुण गाहते, चाहत तत समत सरे, कब कल ठकर हर दास ने, गुरु राम दास सर अबर भरे। छूटत परवा अमे अमरा तत,

निरंजन खरेला। सतगुरु दयाल हर नाम दिलाया, इस पर साधवस पंच करे। कल कल ठाकुर हरदास तनी, गुरु राम दास सर अभर भरे। अनुभव अनुमान अकल लेवे लागी, पारस भेटिया सहज घरे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत भाए भंडार भरे। मेटिया जन्मांतर मरण भव, भागा चित लागा संतोष सरे। कब कल ठाकुर हरदास तने, गुरु रामदास सर अबर भरे। अबर भरे पायो अपार अंतर धारियो, दुख भंजन आता

प्रेम भरत परवा के तुम पुबली न होते सतगुर शब्द अथाओ अम्यो धारा रसगुत्ते मत माता।

अतगुरु नाम एक निव मन जप दृष्टि जन दुख पाप पौखत हो जियो तारण करण छिन मात्र जाको दृष्ट धारे सब विरुद्ध विचारे काम क्रोध खोवे जियो जीवन शब्द दाता अगम जा

पाए। गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवे जियो। सतगुरु नाम एक लिव मन जते, जितन जन दुख पाप को।

सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाती सबद सार एक लिव लाई है। सुन जाने को तेरा अपारे निर्भव निरंकारे अकथ कथन हारे तुझे बुझाई है। भर्म

नाम सो अपार सार दीनो गुरुद धरे नल कौ पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुबास जास सिमरत अन करे जाके दे

अर पाव तैनीर सर अवर अनल अनाद कियो। सकल खनिस सूर दिन सैल करो फल फूल दियो। सुर नर सपत सम

ज्ञानियों शब्द हर हर जपे नाम नवनिध आपे रसन ऐनित रसे सत कर जानियों सुनु प्रेम रंग पाइए गुरमुखे ध्याइए अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियों वचन गुरु हृदय धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत

गुरु जप सत कर अगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐनक करो बचन गुरु हृदय धर सुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुरु सिख करो नाम सत रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपे प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरु मुख भजो गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप सत कर।

उदत गुर गहर गवीर बेअंत हर नाम नगे हीर मन मिलत लेवलाये उन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरते शब्द गुरु ध्याये अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सर संत।

गुरु मिलत मुन जन रे तरे नार दाद सन काद हर गुरु मुखे तरे एक नाम लग तजो रस।

कृपा सतयुग दिन धूपर श्री प्रहलाद भगत उदयन हस्त कमल माथे पर धरियं अनख रूप जी लख न जाई साधक सिद्ध।

जग जन्म मरण भगाए आई ही ये परतीत ही ये आई जिन जन के

का ब्रह्म भरम सुब छुटका, अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटका, दिव दृष्ट कारण करण सतगुरु गुरु सेव अलख गत जाकी, श्री राम दास तारण तरण। परताप सदा गुर का घट घट परदास भया

ध्यान करें प्रभात शुद्ध मन गुरु पूजा विद सहित करन। कंकन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपे ध्यान धरन। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद बरन। सतगुरु गुरु सेव अल

तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन इक में जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडली सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन

गुरु सत जियो गुर के आमाने निज निधाने सच जान मंत्र एह नित बासुर स्वयान लहे परम गत जियो काम क्रोद लोभ मोह जन जन सो तार धो होमे का फल काट साध संग रत जियो देह गे ते सने चित बिलास जगत एओ चरण कमल सदा सेओ दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही धार तजनिकार मन

पाता। गुरमुख संगत सबे विचारो, वाओ वाओ का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन पयाल पूर रहा, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मा विक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाए परमार्थ, सत्संगत से ती मन खचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत आ

गुर समरथ गए किरिया धू बुद्ध समत समारन को उन धम दुजा फैरंत सदा अग पुंज तुरंग निवारन को मथुरा जन जान कही जे सासु और कछु न विचारन को हर नाम बहुत बड़ो कल में भव सागर पारे उतारन को संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है ब्रह्म पंथ धर्यो धर्मी धर आप रहे ले उदाहरण।

मन इच्छत ही फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सुधास पर पूरन सब त्रंग प्रगट तिन आगर, गहर गंभीर अथायत वन सुबर सदा सब विदरत नागर। संत मराल करे कंतु हल तिन जम त्रास मिट्यो दुख।

ध्यान धरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परगास को। वेद बाणी सहते ग्रंथ जस गावे जाको शिव मुन गहना सजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप गदा झूठ देख किए फिरत उदास को। सोतन सतगुण सुख भाए कृपा।

अंतर्गत तेज कुंचे लोक प्रजा से देखत दर्श भटत भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभते अल समूजों कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप

जाके बसीस धर्यो गुर हथे। तीन भवन भरपूर रहो सोई, अपन तरस क्यों ना जगत कोई। आपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे, असुरे नर गण गंधर्व को जंत फिरे। अविनाशी अचल अजौनी, संभो पुरखो तुम आपार परे। करण कारण समरथ सदा सो।

पायो सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोविंद दियो अंगद अनंत मूरत निज धारी अगम ज्ञान रस रस हियो गुरु अमरदास।

तन हर परम पद पायो। नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा खुब भगत हर के जुगण, अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा और कबीर भणन। तिनको अवतार

ज्ञान प्रगत पुजारो दुख दरिद्र अंधियार को नाशे। कब कीरत जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। ज्यों अंगद अंग संग ना

जै तिखत अत होए रहत मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानो, तीनी भगत प्रेम लिवलाई। सांते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद की

बिमल बुद्ध सतगुण समान्यो आजो नी संभयो सो जस कल कवियन वखान्यो। गुरु नानक अंगद वरो गुरु अंगद।

दम भर सहता भय बंजन पर पीर निवारण कल संहार तुए जस भगता कुल सोदी गुरु रामदास तन धर्म भुजा अर्जन हर भगता।

گر ارجن کل چرائے تے جن تے کلس دے پایو سورٹھے گر ارجن

जह देखा कह एक है गुरमुख प्रगट होए। दुख निसारण शब्द है जे मन वसाए कोए, गुर कृपा ते मन वसै कर्म प्राप्त होए। नानक हो करते खप मोए खूहन लख असंख, सतगुर मिले सोबरे साचे शब्द अलंख। जिना सतगुर इक मन सेविया तिन जन लागो पाए, गुर शब्दी हर मन वसै माया की पुख जाए। से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाए, नानक होर पाप।

बौरस साल में सवार दी खटवस मीठे पाए। क्यों बाणी पदक सला दे हर नामे चित लाए। मन तन तन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए। तै पगती पगत बहु लोच दे।

चुप पासे हर गुण गाए, तन तन कर जुग नानका जे चले सतगुरु भाए। सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो उधार, तिग तिना का जीविया चित आए संसार। गुरमति पौ मन पवे ता हर रस लगे।

0: नाम रतन प्रकाशिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन नक्के फिरे बिन नावे बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सकै कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर कै शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे भंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़या दसवें आकाश, तिथे ऊंग न पुख है हर अमृत नाम सुखवास। नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम प्रगास। काम क्रोध का चोलड़ा सब गल आए पाए, एक उपजे एक बिनस जाए हुक्मे आवे जाए। जम्मन मरण न चुक रही रंग लगा दूजे भाए, बंधन बंद भवायन करना कछु न जाए। जिनको कृपा धारियन तिना सतगुर मिलिया आए, सतगुर मिले उल्टी भई मर जीव्या सह सुवाए। नानक भक्ति रतिया हर हर नाम समाए, मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई। कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए न पाई, पुन दान जो बीज दे।

उत्कलत मोहेत है अंत बेली को न सिखाए, सतगुरु सेवे सो सुख पाए, नाम वसै मन आए, नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाए। मनमुख नाम ना चेतनी, बिन नामे दुख रोए, आत्मा राम ना पूजनी, दूजे क्यों सुख होए, हौ मैं अंतर मैल है, शब्द ना काढे तोए, नानक बिन नावे मैलिया मोए, जन्म पदार्थ खोए। मनमुख बोले अंग ले, तिसमें अग्नि का वास, बाणी सुरत न बुझनी, शब्द न करे प्रगास, ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं, गुरु वचन ना करे विश्वास, ज्ञानिया अंदर गुरु शब्द है, नित हर लिव सदा विकास, हर ज्ञानिया की रखदा।

आए बिख का मारण हर नाम है गुर गरुड़ शब्द मुख पाए जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए मिल सतगुरु निर्मल होया बिख हो मैं।

सतगुरु पुरख निर्वैर है, नित हृदय हर लिवलाए, निर्वैर नाल वैर रचाएंदा, अपने कर लूकी लाए, अंतर क्रोध अहंकार है, अंदिन जले सदा दुख पाए, कूड़ बोल बोल नित पौंक दे, बिखा दे दूजे भाए, बिख माया कारण परम दे, फिर कर कर पत गवाए, बेसवा के रे पूत ज्यो पिता नाम तिस जाए, हर हर नाम न चेतनी करते आप खुआए, हर गुरुमुख कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए, जन

जन की टेक हर नाम हर बिन नाम है ठवर न ठाओ गुरमति नाव मन वसे सहजे सह समाओ वडपागी नाम ते आया एह निसलागा पाओ जन नानक मंगे तूर तिन हो सद कुरबाने जाओ लख चौरासी मेदनी तिसना जलती करे पुकार ए मोह माया सब पसरिया नाल चले नांती वार बिन हर शांत ना आवे किस आगे करी पुकार वड पागी सतगुरु पाया बूझया ब्रह्म विचार तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर उरदार असी खते बहुत कमाम दे अंत ना पारावार हर कृपा करके बख्श ले हो हों पापी वड गुनहगार हर जियो लेखे वार ना आवे तू बख्श मिलावन हार गुर तुठे हर प्रभ मेलिया सब किल कट विकार जिना हर हर नाम ते आया जन नानक तिन जयकार विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के पै पाए जन्म मरण नहीं चल भये गुरमुख नाम ते आए गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लवन नानक लाल अमोल का गुरमुख खोज लहन मनमुख नाम ना चेत्यो तिग जीवन तिग वास जिस दा जित्ता खाना पहनना सो मन ना वस्यो गुणतास ए मन शब्द ना पेदियो क्यों होवे करवास मन मुखिया दोहागनी आवन जान मोयास गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास हर हर नाम उरधारिया हर हृदय कमल प्रगास सतगुर सेवन आपना हो सद बलिहारी तास नानक तिन मुख उजले जिन अंतर नाम प्रगास शब्द मरे सोई जन सिजे बिन शब्द मुक्त न होई पेख करे बहु कर्म विगुते पाए दूजे परज विगोई नानक बिन सतगुरु नाव ना पाईए जेसो लोचे कोई हर का नाव अत वड ऊंचा ऊंची हु ऊंचा होई अपड़ कोई न सकई जे सो लोचे कोई मुख संजम हच्छा ना हो वही कर पेख पवे सब कोई गुर की पौड़ी जाय चढ़े कर्म प्राप्त होई अंतर आए वसे गुर शब्द विचार है कोई नानक शब्द मरे मन मानिए साचे साची सोए माया मोह दुख सागर है बिख दुत्तर तरे आना जाए मेरा मेरा कर दे पच मोए हों मैं करत विहाय मन मुखा उरवार न पार है अद विच रहे लपटाए जो तुर लिखिया सो कमावना करना कछु न जाए गुरमति ज्ञान रतन मन वसे सब देखिया ब्रह्म सुवाए नानक सतगुरु बोझै वड पागी चढ़े ते पौजल पार लंगाए बिन सतगुरु दाता को नहीं जो हर नाम दे आधार गुर कृपा ते नाव मन वसे सदा रहे उरधार तिसना बुझे तिपत होए हर कै नाए प्यार नानक गुरमुख पाईए हर अपनी कृपा धार बिन शब्द जगत बर लिया कहना कछु न जाए हर रखे से उबरे शब्द रहे लिव लाए नानक करता सब कित जानदा जिन रखी बनत बनाए होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण बिख माया मोह न मिटई विच हों मैं आवन जान सतगुरु मिले मल उतरी हर जपिया पुरख सुजान जिना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सतगुरु बाण माया मोह बहु चितव दे बहु आशा लोभ विकार मन मुख अस्थिर नाथिय मर बिनस जाए खिनवार वड पाग होवे सतगुरु मिले हों मैं तजै विकार हर नामा जब सुख पाया जन नानक शब्द विचार बिन सतगुरु भगत न हो वही नाम ना

मन आवन जान ना सुजई ना सुजै दरबार माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार तब नर्क पा जा गया सिर डंड लगा बहु पार गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार नानक आप ओह उदरे सब कुटुंब तरे परिवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे हर दरगे गुर सब जापे बिन शब्द मुआ है सब कोए मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम न चेते अंत दुख रोए नानक करता करे सो होए गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ज्ञान ओए सदा आनंद विवेक रहे दुख सुख एक समान तिना नगरी इको आया सब आत्म राम पहचान मन मुख बालक बिरद समान है जिना अंतर हर सुरत नाही विच हो मैं कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कह शब्द सुवाए ओना मैल पतंग ना लग गई जे चलन सतगुरु भाए मन मुख झूठ ना उतरे जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलिया।

नानक गुरमुख मन च्यों लुजै, जिना सतगुर पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार। ओए मानस जून ना आखियन पशु टोर गावार, ओ ना अंतर ज्ञान ना ध्यान है हरसों प्रीत ना प्यार। मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार, जीव दियानो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार। नानक गुरमुख सोने सिद्ध सच्चे दरबार, हर मंदर हर साजिया हर वसे जिस नाल, गुरमति हर पाया माया मोह पर जाल। हर मंदर वस अनेक है नव निज नाम समाल, तन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल। वड पागी गढ़ मंदर खोजिया हर हिरदे पाया नाल, मन मुख दे दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार। माया मोह

सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार हर हर नाम से आए मन हर दरगह पावे मान किलविक पाप सब कटिए हो मैं चुके गुमान गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम तनासरी तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए तन मन सौंपे जी सो भाई लय हुक्म फिराओ जय बैसावे बैसे भाई जय पे जय तय जाओ एवड तन होर को नहीं भाई जेवड सच्चा नाओ सदा सच्चे के गुण गावा भाई सदा सच्चे के संग रहाओ पैनन गुण चंगियाईया भाई अपनी पथ के साथ आपे खाए तिसका क्या सालाई है भाई दर्शन को बल जाए सतगुर विच वडियां वडियाईया भाई कर्म मिले ता पाए एक हुक्म मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिराए संगत तोई ना मिले भाई बैसन मिले ना थाओ नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ तिन विटो हो वारिया भाई तिन को सद बलिहार रह जाओ से दाड़ियां सचियां जे गुर चरनी लगन अंदिन सेवन गुर आपना अंदिन अनदरहन नानक से मुंह सोहने सच्चे दर दिसन मुख सच्चे सच दाड़ियां सच बोले सच कमाए सच्चा शब्द मन वस्या सतगुरु माहे समाहे सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे सच्ची दरगह बैसना सच्चे माहे समाए नानक बिन सतगुरु सच ना पाईए मन मुख भूले जाए बाबीहा प्रयोग प्रयोग करे जल निध प्रेम प्यार गुरु मिले शीतल जल पाया सब दूर।

रते से जे मुखना मुड़ान जिनी सिंजाता साईं चार चार पौधे कच्चे बिरही जिन्ना कारना आए तने विहूना पार सितंबर पाही सेती जाले तूड़ी विचलो डंडड़ी सोहा नानक सहसे नाले गुर कै शब्द अराधिये नाम रंग बैराग जीते पंच बैराया नानक सफल मारू एहराग जामू इक ता लख तौ जिती पिनने दर कितड़े बामन बिरथा गयो जन्म जिनकी तो सो विसरे थोरठ थोर पीजिए कबू न फीका हुए नानक राम नाम गुन गाये दरगह निर्मल सोए जो प्रभ रखे आप तिन कोए न मारे अंदर नाम निदान सदा गुण सारे एका टेप अगम मन तन प्रभ धारे लगा रंग अपार को न उतारे गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारे नानक नाम निधान हृदय उरहारे करे सुचंगा मान दुई गणत लाहे अपनी नजर निहाल आपे लहो लाए जन देहो मति उपदेश विच्चों परम जाए जो सुर लिखिया लेख सोई सब कमाए सब कष्ट दे वस दूजी नाही जाए नानक सुख आनंद भये सब की मन रजाए गुर पूरा जिन सिमरिया से भय निहाल नानक नाम आराधना कारज आवे रास पापी कर्म कमाव दे कर दे हाए हाए नानक ज्यो मथन माधानिया क्यों मथे धर्म राय नाम से आए साजना जन्म पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवे कीतो पवन पुनीत खुबड़ी कुथाए मिट्टी जलन कुमंत्रिया।